हर एक आसन, हर एक प्राणायाम का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन उस महत्व को और भी विस्तार रूप से बताने के लिए और भी उसको दीर्घ करने के लिए एक शब्द की उत्पत्ति हम करते हैं। हर बार की तरीके से आज भी जो हम एक आसन कराने जा रहे हैं, जो है वाय आसनों में से एक। वाय आसनों में जैसे आता है चक्की चलाना, तो आज चक्की चलाने के आसन के आगे हम शुरू करने जा रहे हैं एक शब्द लगा करके, जो कि है पुंज। दोस्तों, पुंज का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि पुष्प के बीच में अंकुरित एक पुष्प होता है, जिसे हम पुंज कहते हैं। खास तौर पर हमने पुंज का नाम जो है वो कई बार हमने अपने बच्चों का रखा है, या फिर हमने कई बार ऐसे शब्दों को कई बार सुना है। पुंज का वास्तविक जो अर्थ होता है वो पुष्प के बीच में पाया जाने वाला एक बहुत ही महीन सा धागा, जो कि पूरे पुष्प की कलियों को जोड़े रहता है, पुष्प की पत्तियों को जोड़े रहता है। पुंज का मतलब ही यही हुआ कि पत्तियों को एकत्रित करके एक साथ उस धागे में पिरो करके रोकना। तो आज जिस आसन को हम कराने जा रहे हैं, वह भी एक ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रहता है, जिसका नाम है चक्की चलाना। आमतौर पर चक्की चलाने का अर्थ हम यूं समझ सकते हैं कि पहले के जमाने के घरों में चक्की हुआ करती थी लोहे के दो पार्टों के बीच में, जिसमें महिलाएं गेहूं पीसा करती थी, चावल को पीसती थी, दाल पीसती थी, बेसन बनाती थी। लेकिन आज के युग में कहीं ना कहीं वो पार्ट चक्की कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। तो आज जो चक्की आसन हम आपको कराने जा रहे हैं, कुछ उसी से मिलती जुलती है। सबसे पहले चक्की चलाएंगे हम किस तरीके से, दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर। तो आइए हम पुंज चक्की आसन आज करने जा रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा आसन हमें एक साथ जोड़े रहता है, जिस तरीके से हमने पुंज का मतलब बताया। पुंज हर एक पुष्प के अंदर पाया जाता है, कोई भी ऐसा पुष्प नहीं है जिसके अंदर पुंज की उत्पत्ति ना हुई हो। तो आइए आज हम पुंज की उत्पत्ति के साथ साथ हम एक नए आसन को भी जोड़ेंगे, जो कि है चक्की चलाना, और वह है वाय आसनों में से एक। वाय आसनों में से एक इसलिए है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसनों में से एक है, जो कि पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रहता है। तो सभी मिलकर के तैयार हो जाएं, हम आज करने वाले हैं पुंज चक्की आसन। तो आइए अब हम उस वातावरण में आसन को करेंगे जो कि बहुत ही एक सुंदर और शांतिप्रिय रहने वाला है। वातावरण को थोड़ा सा सुगंधित भी कर सकते हैं अगरबत्ती या धूप जला करके, तो योग की महत्व और भी बढ़ जाती है। योग मैट या हम कोई चद्दर बिछा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद पद्मासन की स्थिति में सबसे पहले बैठेंगे और एक से दो बार ओम का उच्चारण करते हुए तत्पश्चात हम शुरू करते हैं अपना पुंज चक्की आसन। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें, दोनों पैरों को पंजे एक साथ जोड़ लेंगे, यानी पैरों के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अब दोनों हाथों को सामने रख करके हाथों की हथेलियों को मुट्ठी बांध लेंगे। अब मुट्ठी बांधने के बाद हम चक्की की प्रकृति में आएंगे, यानी चक्की को हम करेंगे कुछ इस तरह। जैसे मान लीजिए जब हम चक्की चलाते थे तो दाएं से बाएं की ओर पूरा का पूरा हाथ गोल आकार में घुमाते हुए, पीछे की तरफ थोड़ा सा घूमते हुए, फिर आगे की तरफ दोनों हाथों को हथेलियों को आपस में जोड़ करके पैर को, यानी पैर के जो पंजे हैं उसको भी क्रॉस करते हुए पूरा गोल गोल हाथों को घुमाना है और पीछे होते जाना है। इस प्रक्रिया को हमें कम से कम प्रारंभिक अवस्था में 2 से 2.5 मिनट आपको करना है। यह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी कि उल्टा और सीधा। सबसे पहले हम दाएं तरफ करेंगे 3 से 4 बार, या हम 5 बार भी कर सकते हैं। तत्पश्चात हम सीधा इसका उल्टा, यानी कि 5 से 6 बार भी हम चक्की आसन को करने वाले हैं। इस आसन को करने की महत्व हम आपको आज बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुंज चक्की आसन करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ तो पेट के लिए होता है, जो कि पेट से संबंधित सभी चीजें ठीक होती हैं। जिनका बेली फैट निकला होता है उन्हें भी आराम मिलता है, जिनके थाइस में प्रॉब्लम होती है, हिप्स में दिक्कत होती है, उन्हें भी यह आसन करना चाहिए, बहुत ज्यादा इससे लाभप्रद होता है। चक्की आसन करने से आपको काफी हद तक

इसका लाभ मिलता रहता है यदि आप इसको अपने रेगुलर रूटीन में इसको अगर आप अपनाएंगे तो। चक्की आसन करने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर सर्च किया हुआ है। लोग सोचते हैं चक्की आसन करने से केवल पेट पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। जी नहीं, आज हम बता रहे हैं आपको कि चक्की आसन करने के लिए पेट पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ हिप्स पर, आपकी जांघों पर और कंधे पर, हाथों की हथेलियों पर, पैर के पंजों पर, सब पर इसका महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा असर होता है। वाय आसनों में से महत्वपूर्ण आसन जैसा कि है चक्की चलाना, यह बहुत ही अनुपम स्थिति में पाया गया है। बहुत ही अच्छा आसन है और इस आसन को हमें हमेशा से करते रहना चाहिए। तो हर बार की तरीके से इस बार भी एक नए शब्द के साथ जोड़ करके आज हम लोगों ने किया पुंज चक्की आसन, जो कि वाय आसनों में से एक है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ में, एक नए आसन के साथ में। लेकिन अभी हम करेंगे ध्यान, जो कि है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। 15 मिनट का ध्यान, उसके बाद हम फिर कल मिलेंगे एक नए आसन, एक नए शब्द के साथ में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

हेलो दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए आज दोस्तों हम बात करेंगे अर्ध हलासन के बारे में। यह वह प्राणायाम है जो कि हमारी भागम भागी लाइफ में समय में जो भागदौड़ की भरी जीवन शैली और असंतुलित खान पान की वजह से लोगों को सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं हो रही हैं। भागदौड़ भरी जीवन शैली और असंतुलित खान पान ही डायबिटीज जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन रही हैं। ऐसे में शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, योग का अभ्यास, संतुलित खान पान अपनाना बहुत ही जरूरी होता है। योगासनों का नियमित अभ्यास व सिर्फ आप अपने शरीर को फिट रखने का काम करता है, बल्कि कई बीमारियों से बचाव भी उपयोगी होता है। शरीर को चुस्त, तंदुरुस्त और फिट बनाने के लिए कई तरह के योगासनों का अभ्यास किया जा सकता है। तो आज हम आपको अर्ध हलासन योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अर्ध हलासन के नियमित अभ्यास से आपके पेट और पीठ की समस्याओं में बहुत फायदा मिलता है। पेट के भीतर मौजूद अंदरूनी अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए अर्ध हलासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद है। अर्ध हलासन को जो कि हम साथ में करेंगे और उसके फायदे भी बताएंगे। इसके नियमित अभ्यास से आपके शरीर की मांसपेशियों में भी बहुत ज्यादा विस्तार और अच्छा सा फायदा होता है। मेन हम बताएंगे कि अर्ध हलासन जो है वो पेट और पीठ की समस्याओं को दूर करने में अर्ध हलासन बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले अर्ध हलासन के फायदे जान लेते हैं, बेनिफिट्स होते हैं अर्ध हलासन करने के। मोटापे की समस्या आजकल आम तौर की लाइफ में बहुत बढ़ती जा रही है। जो खान पान है वो नियमित रूप से ना होने पर और ऐसे कई जगह पर जो कि आज की न्यू जनरेशन है, एक जगह बैठकर जॉब करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी वजह से भी उनका शरीर बढ़ता जाता है। फिर वो शाम को अपना एक जिम अपनाते हैं, यानी जिम की तरफ भाग दौड़ करते हैं। तो आज हम इसी सारी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही नियमित रूप से और सरल रूप से इस प्राणायाम को, इस व्यायाम को करेंगे घर पर ही बैठ करके, तो हमारी ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। मोटापे की समस्या से जो भी लोग आजकल के ग्रसित हैं, उनके लिए अर्ध हलासन योग का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका नियमित अभ्यास करने से आपके पेट और पीठ से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं और साथ में आपको फिट रखने के लिए भी बहुत ही जरूरी है यह प्राणायाम। पेट की समस्याओं से अर्ध हलासन का अभ्यास बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसका अभ्यास शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए भी फायदेमंद होता है, यानी कि सिर्फ हम एक्सटर्नली नहीं हम अभ्यास के लिए जुड़ेंगे, हम इंटरनल भी जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता है कि वह स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ, तो उन सारी चीजों को भी फायदे दिलाने के लिए अर्ध हलासन बहुत ही आवश्यक है। जान लेते हैं कि अगर हम अर्ध हलासन करेंगे तो उससे हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे दूर होंगी। तो नंबर वन यानी सबसे पहला फायदा है इसका पेट और पाचन तंत्र के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम दिन भर में कई ऐसी चीजें खाते हैं जिसको खाने के बाद में ऐसा होता है कि कई बार हमारे पेट में दर्द होने लगता है, पेट की जो चर्बी है वो बढ़ने लगती है। तो इन्हीं सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए यह जो प्राणायाम है जिसका नाम है अर्ध हलासन, तो आइए हम बताते हैं। अर्ध हलासन को रोजाना अभ्यास करने से आपके पेट को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए अर्ध हलासन योग बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसका अभ्यास करने से आपको पेट से संबंधित यानी कब्ज, अपच की समस्या, भूख न लगने की समस्या से आदि बहुत फायदा मिलता है। यह योगासन आपकी भूख को भी
ठीक तरीके से काम करने में यानी सुचारू रूप से ठीक करता है। दूसरा आता है इसी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए बेहतर। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना अर्ध हलासन का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। नियमित रूप से अर्ध हलासन योग का अभ्यास आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को बाहरी बीमारियां और संक्रमण से बचाने का भी काम करता है। तीसरा दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा पीठ के लिए फायदेमंद अर्ध हलासन। अर्ध हलासन का रोजाना अभ्यास करने से पीठ की मांसपेशियां मजबूत और हेल्दी होती हैं। कमर दर्द की समस्या और पीठ से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो अर्ध हलासन अभ्यास करने से बहुत ही उपयोगी होती हैं और वह जल्द ही ठीक होती है। अगर आपकी भी पीठ से जुड़ी समस्याओं हैं, आपकी समस्याएं हैं और उनकी आप शिकार हैं, तो रोजाना इस योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। चौथा है शरीर का रक्त प्रवाह सुधारने में उपयोगी। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन असंतुलित होने पर कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से आपको ब्लड का यानी शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में काफी हद तक मदद मिलती है। पांचवा इसका जो कि हमारा मुख्य उपयोगी है वो है वजन कम करने में। आज के समय में असंतुलित खान पान, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापे की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है। मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए न जाने कितने लोग कई कई दवाइयां, कई कई ऐसे योग अभ्यासन को अपनाते हैं जिसको करने के बाद में उन्हें फायदा तो मिलता है लेकिन कुछ ही समय के लिए। अर्धहलासन ही एक मुख्य रूप से फायदेमंद प्राणायाम है जो आपको जल्दी से वजन कम करने के लिए सुचारू रूप से सहायक सिद्ध होता है और अच्छी डाइट के अलावा रोजाना अर्धहलासन का अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट थे कि आपको किस तरीके से आसन की जो विशेषताएं हैं, जो उपयोगिताएं थी वो हमने बताई। आइए अब हम बात करते हैं अर्धहलासन जो कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और आपके पेट से संबंधित सभी जो कि छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। तो आइए दोस्तों अब हम बताते हैं कि अर्धहलासन हम कैसे करेंगे। विधि, अर्धहलासन करने के लिए सबसे पहले हम जमीन पर एक मैट का उपयोग करेंगे। यदि आपके पास योगा मैट नहीं है, योगा मैट उपलब्ध नहीं है, तो आप कोई भी घर की चद्दर या कोई भी घर में जो मैट हो आप उसको बिछा करके यह अर्ध हलासन प्राणायाम कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाना है, यानी पीठ आपकी नीचे रहेगी मैट पे, और हाथों को जांघों के पास रखें। उसके बाद पैरों को उठाएं, यानी आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे हवा में। इसके सिर और गर्दन कमर जमीन पर रखें, यानी सिर आपका और गर्दन कमर जमीन पर रहेगा। यदि हम देखें अपने जो कि प्राणायाम हम ये करेंगे, तो यदि हम इसका अगर कभी फोटो देखें तो आपको अंग्रेजी का एल शेप आपको समझ में आएगा कि ये एल जो कि शेप होता है, एल शेप में आपकी बॉडी दिखेगी। और पैरों को नीचे से ले जाएं, यानी कि आपके दोनों पैर ऊपर रहेंगे और अपने को पैर के बगल में यानी जहां पर हिप्स हैं वहां पे आप दोनों हाथों को रख दें और यह आसन अब पूरा हुआ। हम फिर से बता दें आपको, दोनों जांघों को ऊपर रखें यानी हवा में, गर्दन पीठ और सर आपका जमीन पे, दोनों हाथ आपके हिप्स के पास से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और दोनों पैर हवा में यानी सीधे।
श्वास मध्यम गति से लेनी है और छोड़नी है। यह अभ्यास पूर्ण तभी होगा जब हम श्वास से नियमित यानी श्वास आती जाती श्वास को महसूस करेंगे और टाइमर के हिसाब से स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट और धीरे धीरे हम अपने समय को बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको कोई भी तरह की समस्याएं हैं तो अर्धहलासन को अपने डेली रूटीन में शामिल करके सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको अर्धहलासन अगर करने में आ रही है तो आप हमें जरूर से जरूर चैट बॉक्स में आकर के, जब हमारा योगशाला प्रोग्राम सुबह आता है उसके बाद में जब आप साथ में हम योगासन कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की हलासन करने में या सूर्य नमस्कार करने में किसी प्रकार का अगर आपको कुछ ऐसी मन की वृत्तियां हैं या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो आप चैट रूम में आकर के हमसे प्रश्न कर सकते हैं और हम आप उसका आंसर भी करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का हलासन यानी हलासन प्राणायाम और आशा करती हूँ आप इसका नियमित रूप से रोज अगर आप इसको करेंगे तो आपसे आपके शरीर से संबंधित आपसे आपके पेट के संबंधित सारी समस्याएं ठीक होंगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और आऊंगी अपने नेक्स्ट यानी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आपके साथ बनी रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी समता योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि कहा जाता है, करें योग रहें निरोग। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने योगशाला में खड़े होकर किए जाने वाले प्राणायामों के बारे में और कुछ आसनों के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। उसमें सबसे पहला प्राणायाम जो है वो है ताड़ासन। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो खड़े होकर करने से ही उनका समुचित लाभ हमें मिल पाता है। तो आइए दोस्तों, हम अब स्टार्ट करने वाले हैं ताड़ासन। पैरों को एक साथ मिलाकर सावधान यानी समावस्था की स्थिति में खड़े हो, परंतु अंगूठे और एड़ियां समांतर ही रखें। अब पंजों पर जोर देते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें एवं दोनों हाथों को मिलाकर ऊपर की तरफ तान दें। इस अवस्था में घुटने एवं जांघों की मांसपेशियों को ऊपर खींचें, पेट को यथासंभव अंदर करें, सीने को आगे रखें, रीढ़ और गर्दन को भी बिल्कुल सीधा रखें, शरीर का भार सिर्फ पंजों पर रखें। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें। वापस आते समय श्वास छोड़ते हुए मूल स्थिति में पहुंचें। दोस्तों, ये ताड़ासन करने की विधि है जो हम सुबह उठकर के, जैसे हम सारे प्राणायाम करते हैं वैसे ही हमें ये आसन करना है, यानी सूर्य नमस्कार करने के बाद ही हमें ताड़ासन की स्थिति कर लेनी है। आइए जान लेते हैं कि श्वास का क्रम कैसे होगा। उठते समय श्वास लें और वापस आते समय श्वास को छोड़ें। यानी जब हम पैर की पंजों पर ऊपर उठेंगे यानी सीधे तानेंगे पैर, तो श्वास को लेंगे और जब हम वापस स्थिति में आएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। समय 5 या 6 बार करेंगे यानी 1 से 2 मिनट तक। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ताड़ासन के लाभ। बच्चों में आजकल पोषण की कमी यानी कि खान पान बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने के कारण से कई बच्चों में ये चीज पाई गई है कि लंबाई नहीं बढ़ती है।

शरीर को स्थिरता देता है, मांसपेशियां मजबूत करता है, क्योंकि आपने देखा अभी या आपने अभी सुना, ताड़ासन जब हम कर रहे हैं तो पैर की पंजों पर खड़े होकर के हमारे पैर के पिछले हिस्से की मांसपेशियां जो हैं वो खिंचती हैं, यानी हमें मांसपेशियां मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा जो कि आसन है वो है ताड़ासन। स्लिप डिस्क वाले यह आसन अवश्य करें, स्त्रियों के लिए ये लाभकारी है, खास तौर से गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में स्त्रियों के लिए विशेष लाभकारी। स्वस्थ संतान होती है, जिससे जैसे कहते हैं कि अगर स्टार्टिंग के दिनों में यानी जब प्रेगनेंसी हो तो महिलाएं यह प्राणायाम या आसन जरूर से करें। शंख प्रक्षालय की स्थिति क्रिया के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। आइए दोस्तों हम जान लेते हैं ताड़ासन की सावधानियां। दोनों पैरों के पंजों पर एक साथ वजन देते हुए क्रिया करें एवं संतुलन पर ध्यान दें। इसके पश्चात शीर्षासन से संबंधित कोई आसन करें। महत्वपूर्ण नोट हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि यदि जिन लोगों को सर्वाइकल या चक्कर आने की स्थिति होती है तो ताड़ासन की स्थिति में ना करें। महत्वपूर्ण नोट ये है कि पूर्ण आसन की स्थिति में ऊपर देखें एवं मानसिक रूप से यह विचार करें कि ऊपर कोई वस्तु रखी है और हम उसे पकड़ने वाले हैं। ऐसा करने से कई लाभ जो हैं वो स्वतः ही प्राप्त होते हैं। तो ये था ताड़ासन जो हम लोगों ने अभी साथ साथ में किया, विधि, लाभ, समय, सावधानियों।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853346।

वैसे ये सॉन्ग गा सकते हैं आप अपने लिए भी, जब आपको लगे कि भैया आज आप बहुत बेहतरीन कुछ पहन के आए हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे कि भाई कॉम्प्लीमेंट के लिए कोई वर्ड, कोई लफ्ज ही नहीं मिल रहा, तो फिर आप इस गाने को खुद के लिए गा सकते हैं कि नज़र ना लग जाए सानू, लेकिन सानू की जगह मैनू। एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुंडा में। आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान करते हैं गुड मॉर्निंग गुंडा में। सो चलिए अब वक्त है इस गाने को मुकम्मल तौर पर सुनकर अपनी नज़र बद से खुद को बचाने के लिए, और उसके बाद वापस से आकर

0: हाँ जी, तो भैया जिस वादे के साथ अभी हमने बोला था कि आने के बाद आपको बताने वाले हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, तो चलिए ये वक्त है आज के थॉट को सुनने का, समझने का और समझ लेने का। समझ लेने के बाद उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में जहां भी आपको स्पेस मिलता है वहां पर रख लेने का। सो क्या कहने वाला है आज का थॉट ऑफ द डे और ऐसी कौन सी बात है जिसको हम अपने साथ में अपने संग में रखने वाले हैं, क्योंकि हर शख्स तो हमारे लगता नहीं कि अपने मेयार का होता है जिसको साथ में रखा जाए। उसी तरह से थॉट्स भी होते हैं कि भाई वैसे थॉट्स जो सच में आपके लिए आपके काम के हो तो फिर शायद आपको देखना होता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जो आपके लिए लगता है नहीं है, है ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आज का यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर आया है इस दिन को और भी ज़्यादा ख़ास बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

बड़ा ही खूबसूरत है आज का थॉट ऑफ द डे। आप सुनेंगे तो कहेंगे वाह क्या बात है, मतलब ऐसे थॉट सच में बहुत विरले ही पैदा होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ऐसे इंसान बहुत विरले पैदा होते हैं, राइट? सो चलिए, ये तो अच्छी बात है। सो आपको बताने वाले कि आज का थॉट ऑफ द डे आपसे और हमसे क्या कह रहा है, और आखिर इस तरह के थॉट्स जो हैं वो हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं। सो यस, अब बारी है आज के थॉट ऑफ द डे की। सो आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो दरअसल कहता है कि सच में महान बनने के लिए, सच में महान बनने के लिए लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है, उनके ऊपर नहीं। सच में महान बनने के लिए लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है, उनके ऊपर नहीं। एक्चुअल में हो क्या जाता है, एक्चुअल में हो ये जाता है कि कहीं ना कहीं लोग बताते तो है कि हम आपके साथ में, लेकिन दरअसल वो आपके ऊपर होते हैं। ऊपर होने का सेंस मतलब है कि वो कहीं ना कहीं होता है कि आप वहीं दबे रहे हैं जहाँ दबे हैं। जी हाँ, अगर सीधा सीधा कहा जाए तो मुझे लगता है कि शायद इस बात को समझा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर हम किसी भी शख्स को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, किस तरह से देखते हैं और किस तरह से समझते हैं। क्योंकि अगर ये इस पर हमने गौर नहीं किया, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो शायद प्रॉब्लम हो जाती है, और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इस बात को हम आपसे कह रहे हैं, है ना? तो चलिए भाई, आज का थॉट ऑफ द डे तो यही कहता है कि अगर आप खुद को देखते हैं, जी हाँ, अगर आप खुद को देखें तो आप शायद पाएंगे कि आप महान तब होते हैं जब किसी के साथ खड़े होते हैं, किसी के ऊपर नहीं। ऊपर खड़े होने का मतलब पता है ना कि पैरों के नीचे कोई है और आप ऊपर खड़े हैं, और किसी के साथ खड़े होने का मतलब वो खड़ा है और जस्ट बगल में आप खड़े हैं। तो कभी हेल्प कीजिएगा तो साथ में खड़े होने की कोशिश कीजिएगा, या कोई अगर आपके साथ में खड़ा है तो शायद आप समझ सकते हैं, और अगर कोई आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो भी आपको समझ में आ ही जाता है। सो आज का थॉट ऑफ द डे मुझे तो बड़ा गहरा लगा, इतनी प्यारी बात कि भाई जब साथ की बात आती है तो साथ होना ही साथ नहीं होता है, किस तरह से कोई है वो बताता है साथ है या नहीं है। उसी तरह से आपके साथ कोई अगर खड़े होने की बात करता है तो आपके बगल में खड़ा है या फिर आपके ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही कहता है आज का थॉट ऑफ द डे। अगर आप सच में मानते हैं कि आप महान हैं या बनने की दिशा में जाना चाहते हैं तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये बात एकदम फैक्ट है। सो आइंदा से अगर हम लगता भी, हमको गुमान भी आता है कि हम महान जैसे हैं, तो शायद इस बात को इंश्योर करना होगा कि कहीं हम किसी के ऊपर तो नहीं खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, सच में साथ में ही है ना। और अगर सच में आप साथ में हैं तो इसमें किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, आप सच में महान हैं। जी हाँ, तो कभी किसी की गलतियों के ऊपर चढ़ ना जाना, बल्कि उसकी गलतियों के साथ उसके खड़े होना और उसके बाद उसको इनकरेज करना बेहतर करने के लिए, क्योंकि आप खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो न कितनी सारी गलतियाँ आपके खुद के अंदर होती है। उसी तरह अगर हमारे साथ कोई करता है तो हमको समझ में आ जाता है कि सच में वो हमारी कमियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है या कमियों को बता करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, हम पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, हमको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे समझ में आ जाता है कि कौन साथ है और कौन ऊपर चढ़ने की कोशिश में है। खैर, वहीं से आपके जहन में इमेज भी बनना शुरू हो जाती है कि आप सामने वाले को फिर किस निगाह से देख रहे हैं, एंड ये पूरी तरह से आपके ही हाथ में है, एंड ये पूरी तरह से आपके हिसाब से। तो अगर किसी ने चढ़ने की कोशिश की है तो वह आपकी निगाह में आप बेहतर समझते हैं कि उसको आपको क्या समझना है, और अगर किसी ने सच में साथ देने की कोशिश की है तो यस, फिर वो आपके साथ है। तो आज का थॉट ऑफ द डे मुझे लगता है ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, और इस थॉट ने मुझे तो बहुत कुछ सिखा दिया है, मुझे तो बहुत कुछ बता दिया है। अब बारी है आपकी कि आपको जो कुछ भी लगता है
वो हमको आप ज़रूर बता सकते हैं इस थॉट ऑफ द डे से। और साथ ही साथ मॉर्निंग का टाइम है, ट्यूसडे की सुबह है, तो चलिए भाई आइए और मैसेजेस भेजिए किस तरह की आपकी सुबह हुई और किस तरह से अब आप ज्ञानस्थली के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में बने हुए हैं। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: मस्करी से याद आया भैया, मस्करी करने वाले आपके आसपास हमेशा बहुत रहते हैं, मतलब लिटरली मजाक की बात नहीं है, और कभी कभी इतनी मस्करी हो जाती है कि उन मस्करियों के चक्कर में हम उनको खो देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं जो हमेशा से हमारे लिए लॉयल रहे हैं, जो सच पे जिन्होंने आपके लिए किया है। पर न जाने क्यों, शायद इंसानों को पसंद है थोड़ी सी उसकी मस्करी सुनना, थोड़ी बहुत तो चल जाती, लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है तब मसले आम हो जाते हैं, और उसके बाद आप अक्सर ऐसी चीज़ों को कर जाते हैं जो आपको फ्लो में तो लगता है कि कर दिया, लेकिन उसके बाद आपको समझ में आता है कि कहीं आप किसी मस्खरे के हाथ तो नहीं पकड़े गए थे। यस ऑफ कोर्स। सो खैर कोई बात नहीं, अब मुझे तो लगता है कि भैया ऐसे लोगों से बचकर सच में रहना चाहिए दूर, और काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, एटलीस्ट मैं नहीं ले सकता हूँ, बाकी तो हर कोई फ्री है, ऑफ कोर्स लेता भी है, तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं जिससे किसी अपने को या किसी और को जो हमेशा साथ में रहा है उसको हम शक की निगाह से देखने लगे या उस पर हम सवाल उठाने लग जाए। मैंने कहा ना, नो वन इज़ परफेक्ट, सो अगर आप भी परफेक्ट नहीं हैं तो आपको ये समझना भी पड़ेगा कि दूसरा भी परफेक्ट नहीं है, और नो वन इज़ परफेक्ट मतलब नो वन इज़ परफेक्ट। सो फिर आप अपने आप में ही ये बात खुद ही एक्सप्लेन कर रही है, इसको अलग से बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ चलिए अभी वक्त है आपके चैट बॉक्स पर आए हुए मैसेजेस को पढ़ने का, क्योंकि आप सुनते हैं हमको तीन तरह से, पहला फ्रीक्वेंसी से, दूसरा रेडियो गार्डन से, और तीसरा रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सो उसी एप्लीकेशन से सुनने वाले श्रोताओं को मिलता है चैट का ऑप्शन, और उसमें जो कुछ भी आप लिखते हैं वो गोंडा एफएम के आरजेस तक लाइव पहुंचता है। सो फिलहाल क्या कुछ लिखा है आपने चैट पर, लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो इस शो का जो पहला मैसेज आया है वो आशु जी का लखनऊ से आया है। सुप्रभात सर जी, ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी से नाराज होकर जियो जिंदगी, बस कुछ हसीन लम्हों की है, सबको खुश रखो और सबसे खुश होकर जियो। क्या बात है भाई, ये फलसफा तो सच में है। और बाई चांस आपसे कोई नाखुश है या आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है तो आजी छड्डो जी, की फर्क पैंदा है, इतना वक्त ही कहाँ है, राइट। चलिए, एंड इसके अलावा आप आगे लिखती हैं कि जिनके पास सपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं, कल ना होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। वाओ, बात तो बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है। आगे आपने लिखा है, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट आज का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ये थॉट तो वैसे भी मुझे लग ही रहा था कि आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि आज के थॉट ऑफ द डे ने हमको बता दिया कि एक्चुअल में साथ में खड़े होना क्या होता है और किसी के ऊपर खड़े होना क्या होता है। तो कहीं ये गलती हम तो नहीं कर रहे हैं, ज़रा सोचने वाली बात है आज, राइट। लिखा आपने, ज़िंदगी आसान नहीं है क्योंकि झूठ कहो तो अंतरात्मा दुखती है और सच कहो तो दुनिया को बुरा लगता है। भाई इससे तो आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी, कि अगर सच निकलने लग जाए मुँह से तो बुरे बन जाते हैं आप, और दुनिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि सच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मक्खन की जो है वो लोगों को आदत लग ही जाती है, जिससे कि फिर वो बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर आप सीधे सीधे लफ्ज़ों में बिना लगाए और लिपटाए बोल देते हैं तो शायद बुरा लग जाता है, और ये बात सच भी है। खैर, ये आपको फ़ैसला लेना है कि आप कौन से होने वाले हैं, मक्खन लगा करके जाने वाले हैं या सीधी और साफ और सच बात कहने वाले हैं। धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं, आवाज़ विकास से अदनान से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका दिन मंगलमय हो। खैर, आज तो मंगलमय ही है। उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। वाह क्या बात है, बहुत सही बात कहा बॉस। और कई बार ऐसा होता है कि हारते हारते लगता है जीत गए, एंड कभी नहीं हारते हम। एक्चुअल तो ये है कि हम शुरुआत ना करें तो बस वही एक हार है, अगर शुरुआत कर दी, अगर हम बढ़ गए हैं तो वो हार हो ही नहीं सकती। कितनी प्यारी बात आपने कही, थैंक यू सो मच टू यू। एंड यस, उन सभी का शुक्रिया जो फिलहाल फ्रीक्वेंसी रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली के 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, हालांकि वो किसी अपने काम में मसरूफ़ हैं या अभी उठे ही हैं और अपनी आंखों को मल रहे हैं, अभी उनके लिए सुबह हो रही है, सो चैट तक नहीं आए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इतना प्यार मन ही मन में आज के थॉट ऑफ द डे को देने के लिए और आज की बातचीत को लेकर। सो फिलहाल आपका फेवरेट सेगमेंट जो है, यानी आपके सिटी की अपडेट, गोंडा अपडेट्स भी आज आप तक पहुंचने वाली है, और साथ ही साथ चलिए अब थोड़ी सी मस्खरी करते हैं खुद को, क्योंकि दूसरों को तो बहुत कर लिया, लेकिन अब बारी है खुद को मस्खरी करने की और लाइफ में आगे ले जाने की।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

भाई इश्क ले डूबे ना डूबे, लेकिन अभी इधर जब पानी बढ़ा था तो सच में आसपास के गांव को ले डूबा था, जिसकी प्रॉब्लम अभी तक भी समझ में आ रही है। फिलहाल आपको हम सिटी अपडेट्स से रूबरू कराने का बोल रहे थे, तो चलिए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं और आने के बाद आपको ले चलते हैं आपके शहर की अपडेट्स की तरफ, यानी कि सिटी की अपडेट्स की तरफ, जिसका इंतज़ार आपको बखूबी रहता है हमेशा से।

0: तो भैया चलिए फिलहाल अब आपको ले चलते हैं सिटी की अपडेट्स यानी गोंडा अपडेट्स की तरफ, आपके मॉर्निंग वाले गुड मॉर्निंग गोंडा शो पे, आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

एक ग्रैंड वाली न्यूज है, लेकिन ये सबसे बाद में हम बताने वाले हैं, जो आपके काफी काम की होने वाली। लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं बीजों की बुकिंग शुरू होने की और 50% उस पर अनुदान तक की बात। सो आपको बता दें कि रबी सत्र 2026-27 के लिए कृषि विभाग ने निःशुल्क बीज मिनीकिट और जो अनुदानित बीजों की बुकिंग है वो शुरू कर दी है। सो एडीओ कृषि ने बताया भी है कि किसान कृषि विभाग की वेबसाइट, कृषि कार्यालय, बीज भंडार या फिर जनसेवा केंद्र से अपनी बुकिंग करा सकते हैं, जिसमें चना, मटर, मसूर, तोरिया, राई, सरसों, अलसी के मिनीकिट फ्री में मिलेंगे, जबकि गेहूं, जौ समेत बाकी बीजों पर नियम के हिसाब से 50% तक अनुदान मिलेगा। सो गेहूं और जौ की जो बुकिंग है वो 30 सितंबर तक होगी। दलहनी और तिलहनी फसलों के जो लाभार्थी हैं उनका सिलेक्शन ई लॉटरी से किया जाएगा। एडीओ ने किसानों से वक्त से बुकिंग कराने की भी अपील कर दी है कि भाई वक्त से इसकी बुकिंग करा लिए। दूसरी बात जो है वो आ रही है फर्जी आईडी से बने जन्म प्रमाण पत्रों की। जी हाँ, सो जन्म प्रमाण पत्रों के रिकॉर्ड की जांच में बड़ा फिलहाल फर्जीवाड़ा भी सामने आया। दो ऐसे फर्जी सीआरएस आईडी सामने आई है जिसके नाम से जिले में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित ही नहीं है। सो सैदापुर और बभन ज्योत पीएचसी के नाम से बनी इन आईडी से फरवरी में जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की जानकारी मिली थी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने दोनों आईडी बंद करा दी है। इसके अलावा हथियागढ़, मड़वा बुजुर्ग और खमहरिया पीएचसी की आईडी पर भी रोक लगा दी गई है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है ट्रांसफार्मर को लेकर, जो कि बालपुर के गुरुपुरवा में 7 दिन से बिजली नहीं मिलने से परेशान है वहां के लोग। सो बता दें आपको, ट्रांसफार्मर भी बदला गया और एक ही घंटे में फिर से फूंक गया था, जिसके बाद ये लाइट की समस्या लगातार देखी गई। इसके अलावा आपको हम बता दें कि अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट जो आ रही है वो 30 लाख की ठगी में न्यायालय के आदेश पर एफआईआर की बात सामने आ रही है। सो 30 लाख रुपए की ठगी का जो आरोप है उसमें न्यायालय के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो आपकी अपडेट सिटी से ही आ रही है वो आ रही है, ऑफकोर्स फिलहाल बताया है कि शहर से एक निजी उद्घाटन में करने पहुंचे पूर्व सांसद ने बताया है कि यूपीआई का जो मुद्दा है उस पर सरकार विचार कर रही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि फिलहाल जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया यूपीआई पर आ रही है तो इसको हो सकता हो कि भाई इस पर कोई और डिसीजन लिया जाए, ऐसा कहना है पूर्व सांसद का। एंड यस, इसके साथ ही चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट आ रही है वो गोंडा से ही आ रही है, और अगली अपडेट में हम बता दें कि भाई 13 करोड़ से 4 ड्रीम लैब की स्थापना होने वाली है। सो यस, ज़िले के विद्यार्थियों को आधुनिक और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए 4 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम लैब की स्थापना की तैयारी तेज़ हो गई है। लैब के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्कूल्स में पहुंचने शुरू हो गए हैं। तकरीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से इस्टैब्लिश होने वाली इन लैब में इंस्ट्रूमेंट्स की आपूर्ति के बाद स्थापना और परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। सो फिलहाल जिला समन्वयक उत्तम कुमार मल्ल जी ने बताया है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है गोंडा, और दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज, एंड तीसरा है राजकीय इंटर कॉलेज तालागंज ग्रंट, और इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज करनीपुर तरबगंज का सिलेक्शन हुआ है। और फिलहाल जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोंडा को हब और 3 बाकी कॉलेजेस को स्पोक के रूप में डेवलप किया जाएगा। सो ड्रीम लैब में जो है स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, ऑटोमेशन, 3D डिज़ाइनिंग, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, CAD, CAM और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसी तकनीकी का है जो प्रशिक्षण मिलने वाला है, और डिजिटल क्लासरूम और स्टूडियो के लिए भी जो उपकरण हैं वो लगाए जाएंगे। हर एक स्कूल में नोडल शिक्षक जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स की सुरक्षा, उसका प्रशिक्षण और लैब की जो एक्टिविटीज़ है उससे कोऑर्डिनेट करेगा। सो ये फ़िलहाल 4 जो लैब स्टैब्लिश होने वाले हैं ड्रीम लैब्स, उनको लेकर के ये बात सामने आ रही है।
इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट है वो है आज सुबह 9 बजे से परसपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर टीचर्स को FLN का प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रशिक्षण हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें सुबह 11 बजे से वजीरगंज ब्लॉक परिसर में अन्नपूर्णा मॉडल प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन DM प्रियंका निरंजन करने वाली है। एंड साथ ही साथ इटिया थोक के जनता इंटर कॉलेज में अटेवा टीम की तरफ से पेंशन संगोष्ठी का भी आयोजन सुबह के बाद दोपहर में यानी 2:30 बजे किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें अगली अपडेट की तरफ आ रहे हैं, और अगली जो अपडेट आ रही है उससे हम आपको रूबरू करा देते हैं। सो फिलहाल गोंडा के डॉक्टर देवेंद्र का जो है वो कुल सचिव के पद पर सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, सो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के UPSC प्रयागराज की तरफ से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुल सचिव के पद पर 17 और 18 सितंबर को आयोजित इंटरव्यू के बाद चुने अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसमें गोंडा की आज़ाद नगर कॉलोनी के निवासी डॉक्टर देवेंद्र का अनारक्षित श्रेणी में कुल सचिव के पद पर सिलेक्शन हुआ और इनकी सफलता से परिवार के साथ खुशी का माहौल है। सो ये एक अगली अपडेट थी। इसके बाद आपको हम बता दें जो प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, उस प्रदर्शनी से जुड़ी हुई जहां पर काफ़ी लोगों ने महिला स्वास्थ्य और परिवार का संदेश से संबंधित कई सारी चीज़ों को देखा, जांचा और परखा। एंड इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट हमने बताया था कि हम लास्ट में आपसे बताने वाले हैं, और वो है कि भाई अब देश प्रदेश के लोग भी चखेंगे गोंडा की कचौड़ी और दही बड़े का टेस्ट। जी हाँ, सो बता दें कि भाई ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 तक ऑर्गेनाइज हो रहा है UPITS 2026। सो गोंडा की कचौड़ी और दही बड़ा का जो स्वाद है वो अब ग्रेटर नोएडा में भी टेस्ट किया जाएगा। शहर के बाजारों से सालों से पहचान बना चुके ये जो यहाँ के पारंपरिक व्यंजन हैं, इनको 25 से 29 सितंबर तक होने वाले UPITS 2026 में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही ज़िले के मक्का और मिलेट्स से तैयार खाद्य के जो उत्पाद हैं वो भी देश प्रदेश से आने वाले कारोबारियों और जो आने वाले विजिटर्स हैं उनके लिए होंगे। इसके लिए मैसर्स गोंडा कचौड़ी जंक्शन का सिलेक्शन कर दिया गया है। सो ये सच में काफ़ी अलग है, और आपको हम बता दें क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारे यहाँ के कुछ डिशेस हैं वो सच में काफ़ी दूर तक फेमस हैं, यानी कोई खाता है तो कहता है भाई हमारे यहाँ भी बनता है, लेकिन वो बात नहीं आती। तो बात तो सही है कि वो वाली बात नहीं आती, तो वो वाली बात अब मिलेगी लोगों को दूर तक, यानी ग्रेटर नोएडा तक पहुँचेगी। फिलहाल मुझे लगता है कि ये सच में काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ थी। बट इन सारी अपडेट्स को सुनने के बाद आपको कैसा लगा, अपनी सिटी अपडेट्स को जान लेने के बाद आप भी ऑफ कोर्स कमेंट करके बता सकते हैं। वापस से आने वाले हैं, और आने के बाद पता है ना आपको कि भाई ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो है, तो कितनी सारी बातें हैं जो हम आपसे वैसे भी करने वाले हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

सुबह उस दोस्त के लिए जो चाय नहीं पीता है, लिटरली उस दोस्त के लिए जो चाय नहीं पीता है। तो लाइन कुछ यूं है कि कितनी बड़ी त्रासदी है, कितनी बड़ी त्रासदी है तुम चाय जो नहीं पीते हो, चाय में बिस्किट के संग हम तुम गम अपने डुबो देंगे, चाय में बिस्किट के संग हम तुम गम अपने डुबो देंगे, और सुखों को करके साझा शक्कर सरीखे घोल लेंगे, और सुखों को करके साझा शक्कर सरीखे घोल लेंगे, तो चलो उलझे उलझे दिन चाय की महक से सुलझाते हैं। सो भाई ये वो चाय की महक है जो आज की सुबह से ही आ रही है, और सुबह की चाय जिसका इंतज़ार इतना ज़्यादा रखता है, ऐसा लगता है कि सच में सिर्फ चाय चाय ना हो करके बल्कि कोई एहसास है ना। कई सारी बातें सिर्फ चाय के बहाने हो जाती है, जब कुछ भी नहीं अच्छा लगता तो कहते हैं चलो चाय पीने निकलते हैं। सो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ चाय पे ही हो पाती हैं, और चाय ही उसका बहाना होती है शायद, और किसी में ना इतनी हिम्मत होती है सुन पाने की, और ना ही इतना किसी से लगाओ जितना कि कुछ भी ना समझ में आने पे सिर्फ चाय ही समझ में आती है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसको आपने भी रियलाइज़ किया है, हमने भी किया है, एंड ये बात आप भी मानते हैं और ये बात हम भी मानते हैं। सो है ना चाय वाली बात, यस। तो चलिए भाई, ये चाय तो चाय की तरह चलती रहेगी, लेकिन बात अब आती है कि हम और आप किस तरह से चाय को चाय के एहसास तक ले जाते हैं। फ़िलहाल चाय में खुद ब खुद एक एहसास है जो चाय तक ही सीमित रहता है, और इसीलिए ये चाय हम लोगों की इतनी ज़्यादा फेवरेट बन जाती है, इतनी ज़्यादा मतलब शायद जिसकी हद भी ना हो। हाँ बिल्कुल, जिसकी हद भी ना हो। तो चलिए भाई इस चाय को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ, जो बड़ा ही खूबसूरत है और आपके लिए आ रहा है आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान। स्टे ट्यून्ड।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां जिन्हें

किसी एक दिन अगर अचानक से आप किसी छोटी सी बच्ची के हाथ में एक ट्रॉफी देखें, तो जाहिर सी बात है ट्रॉफी बड़ी ही आम सी बात है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब आप उसी ट्रॉफी को गौर से देखें और वो ट्रॉफी आपको दिखाई दे वर्ल्ड फेमस ऑस्कर अवार्ड की, और वो बच्ची कोई और नहीं भारतीय बच्ची हो, तो क्या आएगा जहन में?

0: अच्छा, कई सारे सवाल आ रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। अच्छा तो चलिए भाई, कैसे पॉसिबल हुआ और हम आखिर किस बच्ची की बात कर रहे हैं और आखिर कैसे ऑस्कर अवार्ड की बात कर रहे हैं, उस बच्ची के हाथ तक ऑस्कर अवार्ड कैसे आया, है ना। इंटरेस्टिंग सी कहानी जो कि रियल लाइफ वाली है। सो यस, ले चलते हैं आपको पूरी कहानी की तरफ आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको बता दें कि भाई यूपी के एक छोटे से गांव की इस बच्ची के हाथ में जिसको हम बताने वाले हैं वो कोई खिलौना नहीं बल्कि ऑस्कर अवार्ड है। और इसके के पीछे की जो कहानी है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। होता क्या है ना कि जब हमारे जिस्म में हमारे शरीर पर कुछ जख्म होते हैं या किसी अंग की बनावट बाकियों जैसी नहीं होती तो शायद समाज की निगाह में उस शख्स को छिपना पड़ता है, बचना पड़ता है। फिलहाल ये बात आई उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली पिंकी सोनकर को, क्योंकि इस बच्ची के होंठ कटे थे जिसकी वजह से इसे दुनिया से छिपना पड़ता था। गांव के लोग इसे आम बच्चों से अलग मानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बच्ची एक दिन अपनी मुस्कान से ऑस्कर ले आएगी। यकीन नहीं हो रहा ना, चलिए फ्लैशबैक में ले चलते हैं आपको 2013 में। 2013 में एंडी मुरे और नोवाक जोकोविच के बीच हो रहे विंबलडन फाइनल मैच में एक भारतीय बच्ची को बुलाया गया। उसने सिक्का उछाल करके टॉस किया, लेकिन वहां मौजूद जो दर्शक थे उनके मन में बस यही बात थी कि ये बच्ची आखिर है कौन। हाथ में ऑस्कर अवार्ड लिए और विंबलडन में टॉस करने वाली ये बच्ची है पिंकी, जो कि अपने ही भारत के, अपने ही उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ग्लोबल स्टेज तक पहुंची। और पिंकी के साथ गांव में अलग चूंकि बिहेव किया जाता था, क्योंकि इसकी जो पैदाइश हुई थी वो क्लेफ्ट लिप यानी कि कटे हुए होंठों के साथ हुई थी। सो एक दिन सोशल वर्कर के ज़रिए पिंकी के फैमिली को पता चला कि इस मेडिकल कंडीशन का इलाज हो सकता है, तो ये लोग एनजीओ की मदद से वाराणसी के जीएस मेमोरियल हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह ने इसकी सर्जरी की। ये पूरा सफ़र अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मेगन मेलन। ये भारत आकर के ग्रामीण भारत में क्लेफ्ट लिप के साथ जिंदगी जी रहे बच्चों की कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। सो पिंकी की कहानी उनकी डॉक्यूमेंट्री स्माइल पिंकी का मेन पार्ट रही। सो पिंकी की मुस्कान से दुनिया भर का इसने दिल जीता और स्माइल पिंकी 2009 में एकेडमी अवार्ड तक पहुंची भी। इसे शॉर्ट सब्जेक्ट पर बनी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया। इस तरह सिर्फ 6 साल की उम्र में पिंकी ने ऑस्कर को थामा, सिर्फ 6 साल की एज में। सो जिस बच्ची को कटे होठों की वजह से ताने दिए जाते थे वही अब पूरे गांव की पहचान बन गई। उसे दुनिया भर से प्यार और बहुत सारी इज्जत मिली और इसी से उसकी जिंदगी भी बहुत बेहतर हुई। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी जिस पर फिल्म बनाई गई है। जी हाँ, अपने ही उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की रहने वाली पिंकी की कहानी है। मुझे लगा ही था कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा अलग महसूस कराने वाला है। होता है ना, ये जो कमियाँ कई बार हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग जिसको लेकर के ताने मारते हैं, कई बार ये इतना शानदार होता है कि हमें खुद उसका अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही पिंकी के साथ भी हुआ। आई होप कि आपको ये बिहाइंड द स्टोरी ज़रूर समझ में आई होगी। और अब आप भी पिंकी की स्माइल देखने के लिए उसको इंटरनेट पर सर्च ज़रूर करने वाले हैं, और स्पेशली ये डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका अभी हमने जस्ट जिक्र किया, स्माइल पिंकी। सो स्माइल पिंकी डॉक्यूमेंट्री अगर आप देख सकेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होने वाली है। तो चलिए फिलहाल आपको ले चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। लेकिन फिलहाल आपको पिंकी की रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी बताइए कमेंट करके।

वैसे अगर मैं डर के बारे में कहूँ तो डर क्या है आपके लिए और आपने अपने डर को किस तरह से भगाया है? चलिए, अगर अभी तक आपने अपने डर को भगाने का सही मेथड खुद ही नहीं अंदाज़ा लगाया है तो हम आपको तो बताएंगे, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि आपने अपने डर को कैसे भगाया तो आप भी चैट बॉक्स पे फटाफट से लिखिए और इस गाने के उस पार वापस से हाजिर होकर के बताते हैं कि आखिर क्या तरीका और हो सकता है अगर डर आपको बहुत ज़्यादा डरा रहा है तो क्या हो डर जा रहा है? नहीं, क्या करना है यही तो बताने वाले हैं।

0: सो चलिए हम भी मिल गए हैं तो हमें भी आपसे है कुछ बताना, डर के बारे में और किसके बारे में। ऑफकोर्स अक्सर हम रोज़मर्रा की लाइफ में डर रहे हैं यार, कोई करियर को लेकर डर रहा है तो किसी शख्स को लेकर डर रहा है, कोई रिलेशनशिप को लेकर के डर रहा है तो कोई अपने पड़ोसी से डर रहा है तो कोई अपने खुद से ही डर रहा है। मतलब इतना सारा डर और आखिर इस डर का करना क्या है, सोचने वाली बात है ना कि इतना सारा डर आखिर हम लेकर के जाने कहाँ वाले हैं, आखिर इतना भी क्यों डर आ रहा है। तो मैंने पूछा ना कि आपका कोई तरीका होगा जिससे आप अपने डर को शायद निकालते हो, अलग करते हो, हटाते हो। सो तरीके तो कई सारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है कि डर तब तक ज़्यादा डराता है जब तक आप उससे डरते रहते हैं। भाई डर का काम ही है, जैसे किसी का कोई बिजनेस है तो वही बेचेगा ना, तो डर का बिजनेस है वो अपने डर को बेचेगा। और क्लाइंट कौन है? हम खरीदार। डर बहुत सारा खरीद लेते हैं, कम पड़ता है तो एक्स्ट्रा रख लेते हैं कि भाई इसको रख दो आगे के लिए काम आएगा लेकिन हम चाहते भी हैं निकलना इस डर से। तो फिर आखिर क्या ऐसा है जो हम अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं, पता है ना? नहीं पता, चलिए हम है ना आपको बताने के लिए। सो एक्चुअल में जब डर की बात आती है, सो डर को अक्सर हम उससे भागने की कोशिश करते हैं कि भैया जहाँ डर लग रहा वहाँ से निकलो। सो डर को जो है भगाने की कोशिश नहीं करना है, तो फिर आखिर करना क्या है, सवाल तो ये भी आता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भागना नहीं है तो डर को करना क्या है, डर का यानी होना क्या है। लेट्स गो।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अर्थान।

अंबुज, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। अंबुज ने लिखा है, गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग टू यू। और साथ ही अंबुज लिखते हैं, भय से खुद को शांत करना है। बिल्कुल सही कहा अंबुज कि भय से खुद को शांत करना है, लेकिन सवाल यही ना कि आखिर कैसे करते हैं, राइट? फिलहाल प्रीति जी ने बहराइच से पिंकी की स्टोरी को सुनने के बाद कहा है कि सभी के लिए प्रेरणादायक स्टोरी पिंकी की, क्योंकि कमियों को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनानी चाहिए। थैंक यू। एंड यस, भय से खुद को शांत करना, चलिए हम बताते हैं कि एक्चुअल में डर के साथ करना क्या है। देखिए, डर को भगाने की कोशिश कभी मत करिए कि डर को भगाओ, डर को डांटो, यहाँ से निकलो, नहीं और डरा देगा, कहने की भी ताकत नहीं बचेगी। बल्कि डर को करना है कि उसका हाथ पकड़ करके सामने लाना आपने और पूछना है, बताओ क्या हो जाएगा। उसकी डर से पूछना है कि बताओ, बताओ मुझे क्या हो जाएगा। डर कहेगा कयामत आ जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपको पूछना है कि एग्जैक्टली क्या होगा, मुझे ये बताओ। और यही जो है आपके सच्चे ज्ञान की पहचान है कि आप उससे ये कहेंगे कि गोल गोल बातें नहीं, साफ साफ बताओ, प्रलय आ जाएगी यानी क्या, कयामत आ जाएगी मतलब क्या कयामत आ जाएगी। दरअसल आपको अपने डर को लिखना है, लिखना है कि आखिर डर किस बात का है। यकीन मानिए, बिलीव करिए, मैं इसी पल कह रहा हूं कि जिस पल आपने अपने डर को लिखना शुरू किया अपने कागज पर, अपने आसपास किसी नोटबुक पर, आप देखेंगे कि डर आपका जितना जितना आप लिखते जा रहे हैं उतना उतना वो मिटता जा रहा है। पता है क्यों? बहुत सिंपल सा सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और उसका उतना ही सीधा सा जवाब है, क्योंकि ना जानना ही डर है। क्योंकि ना जानना ही डर है, यानी जब तक आप चीजों को नहीं जानते थे वही आपका डर था। जिस पल आपने डर को जान गए कि आखिर डर क्या है, किस चीज का है, उस पल से वो डर खत्म हो जाता है। और जब तक नहीं पता होता है तब तक भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, चलता ही रहता है। सो इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई डर से भागना नहीं है, ना डर को भगाना है, बल्कि हमें तो बस इतना सा करना है कि डर को ही जान लेना है, उसका ही हाथ थाम करके। कैसी लगी बात बताइए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में, क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

यू आर सो स्वीट। सो फिलहाल कई बार ऐसा होता है कि हमारे चेहरे पर, हमारे गालों पर पिंपल्स निकल आते हैं और हमको लगता है ओ हो ये तो हार्मोनल चेंज है, जिसका रिएक्शन ये हुआ है कि भाई हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट से प्यारे प्यारे से गालों पर जो है वो पिंपल्स निकल आए हैं। पर क्या सच होता है कि हर बार हार्मोनल चेंज की वजह से ही गाल पे हमारे पिंपल्स चेहरे पे हो जाए? सच कहें तो नहीं, हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हार्मोनल चेंज हो, क्योंकि कई बार हमारे गंदे तकिए भी इसकी वजह बनते हैं। जी हाँ, आप सोचेंगे गंदे तकिए कैसे वजह बनते हैं? अच्छा, गंदगी से? नहीं नहीं, खैर मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस सॉन्ग को एंजॉय करिए, वापस से आते हैं, फिर बताते हैं कि हर पिंपल हार्मोनल चेंज से नहीं होता, बल्कि कुछ होते हैं गंदे तकिए से भी, यानी हमारी स्किन को बिगाड़ सकते हैं ये गंदे तकिए।

0: बात तो सही है भैया, तकिया के बिना तो गुजारा भी नहीं होता है। मतलब सोना है तो तकिया चाहिए होता है, लेकिन अगर तकिया गंदी है तो कहीं ना कहीं स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि हर पिंपल्स जो है वो आपके हार्मोनल चेंज की कहानी नहीं बताते, कुछ इंडिकेट करते हैं साफ सफाई को लेकर के। तो भैया क्या है बात पूरी आई है आप तक हम ज़रा पहुँचा देते हैं विस्तार से, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो यार, या मतलब आप हमारे खास हो इसलिए।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

तो ये तो आपको पता चल गया कि भैया हर जो पिंपल है वो हार्मोन की वजह से नहीं होता है, बल्कि कई बार गंदे तकिए की वजह से होता है। तो फिर करना क्या है? जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए ऐसा है या इस प्रॉब्लम से बचना है तो आखिर किन बातों का ध्यान रखना होगा? सो आपको बता दें कि तकिए के कवर पर जो है वो सीबम, पसीना और डेड स्किन जमा हो सकती है, और ऐसा होता भी है। सो लंबे वक्त तक गंदा कवर जो है इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर गंदगी और ऑयल का कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ सकता है। फिर क्या है, रफ़ फैब्रिक से लगातार फ्रिक्शन जो है वो आपके स्किन में जलन बढ़ा सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, ये आपको हमेशा समझ में आना चाहिए। सो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको हर दिन यानी हर कुछ दिनों में पिलो कवर बदल करके साफ रखना है, और अच्छी हाइजीन आपकी आदत होनी चाहिए। सो आपको हर कुछ दिन पे, 4-5 दिन पे आपको एक बार अपना पिलो कवर ज़रूर चेंज करना चाहिए। सो सोने से पहले मेकअप अगर आप करती हैं, फीमेल हैं, तो उसको हटाकर जेंटल क्लेंजर से चेहरा साफ करना होता है, क्योंकि मेकअप लगा रहने की वजह से भी ये पिंपल्स हो जाते हैं। इसलिए क्लेंजर लगा करके उस मेकअप को दूर करना होता है आपके चेहरे से। सो बालों को चेहरे से दूर रखने से भी ऑयल और हेयर प्रोडक्ट्स का कॉन्टैक्ट कम हो सकता है। जी हाँ, यानी बालों और चेहरे से दूर रखने से भी आपका ऑयल और हेयर प्रोडक्ट्स का कॉन्टैक्ट कम हो सकता है। सो ये अगर बहुत छोटी सी बात है, इसका ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं हाइजीन की प्रॉब्लम से हो जाते हैं पिंपल्स, या फिर स्किन की कोई भी डिज़ीज़, त्वचा रोग हो जाता है ना, तो उससे बच लिया करेंगे। और बहुत छोटी छोटी सी बात है कि भाई टाइम टू टाइम उसको धो लेना है, और अगर मेकअप है तो उसको क्लेंजिंग से क्लीन कर लेना है। बस इतना ही, 2-4 चीज़ों का ख्याल रखना है, तो हमारे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दाने निकल आते हैं, ये ख़त्म होंगे, और आप भी समझ पाएंगे कि अच्छा, इसके पीछे की वजह ये था। मैं तब से ढूंढ ढूंढ के परेशान था कि भैया क्या है क्या है, आज मिली है वजह, आज हमारे हाथ में आई है, और फिलहाल ये है सॉल्यूशन। तो चलिए, आपको हमने बता ही दिया है कि आखिर करना क्या है, एंड आई होप कि आप समझ भी गए हैं और इस बात को आप अमल में भी लाने वाले हैं कि भाई किस तरह से आप जो है वो इस स्किन डिजीज़ से ख़ुद को बचाने वाले हैं। सो आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो मैं भी रेडी हूँ।

So, इतनी सारी बातों के बीच में कैसी बात जो आपके दिल को कहीं अलग ले जाने वाली है और आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, बताए वो बात क्या है? वो बात इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इतनी ज्यादा दिल के नजदीक है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। यानी अगर हम पहाड़ों के बीच बने उस देश की बात करें जहाँ सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है और 7000 फीट ऊंचाई पर दौड़ती है ट्रेन, तो शायद आप यकीन कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसा सच में है। और ऐसा है और कहाँ है ये भी हम आपको बताने वाले हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। सो बने रहिए और वापस से आते हैं तो आपको ले चलते हैं उसी देश में जहाँ 7000 फीट ऊंचाई पर दौड़ती है ट्रेन, सिर्फ और सिर्फ आपकी मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में वीडियो मॉर्निंग जॉक आरजे अंदान।

भारत में रेलवे का नेटवर्क जितना बड़ा है उसका इतिहास भी इतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो कहीं ट्रेनें मैदानों से होकर गुजरती है तो कहीं पहाड़ों के बीच हजारों फीट ऊंचाई पर पहुंचती है। सो आपको पता है कि देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां ट्रेन समुद्र तल से तकरीबन 7000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचती है, पहाड़ों के बीच बादलों के करीब से दिखने वाला ये स्टेशन घुमावदार ट्रैक पर बना रेलवे का एक अनोखा हिस्सा है। जी हाँ, चलिए बताते हैं विस्तार से आखिर हम बात किस चीज की और किस स्टेशन की कर रहे हैं जो हमारे भारत का ही है। जी हाँ, हमने कहा था ना एक ऐसा

0: देश कोई और नहीं भारत है, इतनी विविधताओं वाला देश। कौन सा है ये रेलवे स्टेशन जहां पर 7000 फीट की भी ज्यादा ऊंचाई पर चलती है ट्रेन, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो यहाँ तक पहुँचने वाली ट्रेन की जो यात्रा है वो भी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अलग ही एग्जाम्पल दिखाती है। सो रेलवे या बाकी कई सारे एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ में तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स से भी इस तरह से जीके के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हम बताते हैं भारत की ये सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आखिर कौन सा है, कहाँ मौजूद है, इसे इतनी ऊंचाई पर कैसे आखिर बनाया गया है ना। चलिए सो आपको हम बात करें ऑफकोर्स घूम की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में मौजूद है ये घूम। जी हाँ, रेलवे के RDSO की ऑफिशियल वेबसाइट यानी RDSO.IndianRailways.gov.in के हिसाब से यहाँ रेलवे की ऊंचाई 7,407 फीट तक पहुँचती है। सो यूनेस्को के रिकॉर्ड में घूम की ऊंचाई जो है वो 2,257.65 मीटर दर्ज की गई, जबकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज डिटेल में लगभग इसे 2,258 मीटर बताया गया है। सो घूम स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हिस्सा है और ये करीब 88.48 किलोमीटर लंबी 2 फीट गेज का रेलवे लाइन है जो न्यू जलपाईगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ती है और ये देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। सो दार्जिलिंग जिला प्रशासन के हिसाब से इसे लोकप्रिय रूप से टॉय ट्रेन कहा जाता है, यानी वहाँ का प्रशासन इसे टॉय ट्रेन कहता है। अब वैसे तो सुनने में लगता है खिलौने वाली ट्रेन, अब खिलौने वाले में 8 बना होता था उसी पे हम लोगों की ट्रेन दौड़ती थी जो खिलौना आता था, है ना, चाबी भरने के बाद में, सेल लगने के बाद में। हालांकि ये वो नहीं है, टॉय है, लेकिन आपको टॉय जैसा, खुद ही आप टॉय जैसा फील करने वाले हैं उस ट्रेन में बैठने के बाद। सो दार्जिलिंग हिमालयन का रेलवे का जो निर्माण है वो 1879 से 1881 के बीच हुआ था। सो पहाड़ी एरिया में रेलवे लाइन बिछाने के लिए इंजीनियर्स ने सीधी खड़ी चढ़ाई लेने के बजाय ज़िगज़ैग, रिवर्स और लूप का इस्तेमाल किया। सो DHR में 6 ज़िगज़ैग्स और रिवर्स और 3 लूप हैं। इन टेक्निकोलॉजीज़ का ट्रेन को धीरे धीरे ऊंचाई पर हासिल करने में मदद मिलती है। सो घूम इस रेलवे लाइन का सबसे ऊंचा जो है वो एक स्पॉट है, इसके बाद लाइन जो है दार्जिलिंग की तरफ नीचे उतरती है। सो RDSO के हिसाब से उसके ऑफिशियल अगर हम दस्तावेज़ की बात करें तो उसके मुताबिक घूम की ऊंचाई 7,407 फीट है, जबकि दार्जिलिंग स्टेशन के लगभग 6,812 फीट पर ऊंचाई पर है। यानी ट्रेन जो है दार्जिलिंग पहुंचने से पहले घूम में अपनी सबसे हाईएस्ट पहुंच पर होती है। एंड इवन एक ऐसी ट्रेन जिसपे आप ट्रेन पर चलते हुए बादलों को सामने से देख पा रहे होंगे। जी हाँ, सो पश्चिम बंगाल पर्यटन विभाग के हिसाब से घूम स्टेशन समुद्र तल से 7,407 फीट ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचते ही दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का सफ़र जो है वो सामान्य जो मैदानी रेल यात्रा इससे बिल्कुल अलग नज़र आता है। पहाड़ी ढलानों, घने जंगलों और बदलते मौसम के बीच ट्रेन आगे बढ़ती है। कई बार यहाँ धुंध और बादल और पहाड़ी इलाकों के आसपास छाए नज़र आते हैं, जिससे ट्रेन का सफर ऐसा होता है कि मानो वो बादलों के बीच से गुजर रही हो। अब जरा सोचिए, सुनकर ही उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, इन बादलों में कहीं, एंड बादलों में वो भी कैसे, ट्रेन से। ओह माय गॉड, मतलब कितना अमेजिंग सा नजारा सोचकर ही लग रहा है। वैसे आपको बता दें कि 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, और अगर DHR के बनने की बात करें तो 1889 में ये शुरू हुआ था और 1881 में इसे पूरा कर लिया गया था, यानी लगभग 3 साल का सफ़र इस पे रहा। तो क्या और क्या है इसके बारे में, ऑफकोर्स ये जो है ये घूम किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, और घूम किस ज़िले में है, तो ये ज़िला जो लगता है वो दार्जिलिंग ज़िला लगता है। सो घूम के बाद रेलवे लाइन किस मेन स्टेशन की तरफ उतरती है, तो वो दार्जिलिंग की तरफ उतरती है। तो ये आपको हमने कुल मिलाकर के बताया एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो बादलों के बीच में से होकर गुजरती है, और इसको आज माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया का हिस्सा और ऐतिहासिक रेलवे की तरह इसको जाना जाता है, और आज भी ये वैसा ही चल रहा है। एंड आई होप कि कभी कभी आपका पश्चिम बंगाल जाने का मन किया, ये कभी घूमने का मन किया और आपको लगे कि कुछ कुछ बहुत अलग सा देखना है, कुछ बहुत अलग सा महसूस करना है, तो दार्जिलिंग इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब आप जाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही अलग महसूस करने वाले हैं। एंड यस, जब भी जाइएगा बताइएगा ज़रूर भाई कि आपका खुद का अनुभव
कैसा रहा, और अगर आप जा ही चुके हैं तो फिर बताने में देरी किस बात की। अगर आपने भी दार्जिलिंग जा करके टॉय ट्रेन की सवारी की है तो आप भी हमको बता सकते हैं कि आखिर आपको कैसा महसूस हुआ था और आपको इस ट्रेन की यात्रा आखिर कैसी लगी थी। यस, बता सकते हैं क्योंकि हम आपको सुन रहे हैं और हम आपके मैसेजेस भी पढ़ रहे हैं आपके चैट बॉक्स पर। सो यस, सुनते रहिए फिलहाल अपना गोंडा एफएम रेडियो 11.89.6 एफएम का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
7: कई बार तो हमको भी लगता है कि भैया ये जो है हमारी पीढ़ी फिलहाल थोड़ा सा व्यस्त इस वक्त ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है सुबह आंख खुलने से पहले फोन जो है वो जग जाता है। अरे हम बात अलार्म कर रहे हैं, अब आप सोचेंगे अब जाने के वक्त हम अलार्म की बात क्यों कर रहे हैं। भाई अलार्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलार्म सिर्फ फ़ोन में नहीं होता जो हमें रोज़ जगाता है, बल्कि हमें लाइफ में अपने उन कामों की भी लिए जागना होता है जो हमने खुद से वादा किया है कि इसको हम मुकम्मल करेंगे, पूरा करेंगे। इसलिए भी तो जागना ज़रूरी है। यस ऑफकोर्स, इसलिए भी जागना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कोई भी वादा आपने खुद से किया है तो जागिए और उस काम को करना शुरू करिए, क्योंकि आपके करने का ऑफकोर्स वक्त आ गया है और अब आप उस काम को वापस से करने वाले हैं, वो भी बिना स्नूज किए हुए। बस 10 मिनट और 5 मिनट और, ये अलार्म में तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर हम सचमुच की लाइफ के अलार्म में भी अगर ये करने लग जाते हैं तो चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो इसलिए अब जिस पल और जिस मोमेंट आपको लगे कि अब शुरू करना चाहिए, उसको बिल्कुल भी अगले पल के लिए टालिएगा नहीं, बल्कि वही पल आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा फौरन का फौरन उसे शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। प्रॉब्लम ये कि हम करते ही नहीं हैं। जिस वक्त जिस लम्हे से हम करना शुरू कर देते हैं, हमको दिखना और समझ आना सब कुछ शुरू हो जाता है। फिलहाल ये दिमाग है, डराता बहुत है, फिर वही डर की बात आ गई। वैसे कुछ मैसेजेस उसके बाद आए थे, चलिए हम बताते हैं किसने किसने लिखा है। सो हमारी गीता श्रीवास्तव जी का मैसेज उसके बाद आया, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग स्पेशल शो में। अंबुज ऑफकोर्स आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और आपने लिखा था कि हर समस्या का समाधान है, डर के आगे जीत है, भूत से डर लगे तो हनुमान चालीसा का प्रयोग करें, दैट्स गुड। हमारी सविता दुबे जी आपका स्वागत करते हैं, और आप लिखा है, सर मैं बहुत डर गई थी अपने तबीयत को लेकर, लेकिन कुछ भी छोटी तकलीफ थी अब सही हूँ, सुप्रभात। आपको भी सुप्रभात, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं सविता जी, बहुत बहुत सारी दुआएं। महेंद्र देपन जी हैं फ्रॉम राजस्थान, लिखा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू महेंद्र, आपका स्वागत है, वेलकम है। एंड नगेश्वर भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश से, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं नगेश्वर। सो आप सब लोगों को ज़रूर मज़ा आया होगा, और काफ़ी कुछ आज आप लोगों ने सुन लिया, और मुझे तो लगता भाई अपने डर पर आपकी अपनी जीत भी हासिल हो गई है, और ये खुशी की बात है। तो खुशी की बात को हमेशा हम क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को इस व्यस्तता के बीच में निकाल निकाल कर जिए, आखिर बुराई ही क्या है, है ना। तो चलिए ये वक्त आ गया है कि वापस से इसको जी लिया जाए। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया था गोंडा एफएम, सुनते रहिए अपना गोंडा एफएम, और मुझे दीजिए फिलहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता गांव की गूंज का एक नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें हर बार की तरह मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वह श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर आवाज में है और उसका साथ देने आ रहे हैं जिमी, श्वेता और समता। आज हम आपको ले चलने वाले हैं हमारे गोंडा के ही एक पर्यटक स्थल यानी कि बलरामपुर की ओर, जहां पर आप सभी को पता है कि पर्यटक स्थल होने के साथ साथ वहां पर एक माता जी का भव्य मंदिर भी है। तो आइए दोस्तों, हम गांव की गूंज का जो ये एपिसोड है, इस बार हम आपको ले चलने वाले हैं एक नए और एक बहुत ही प्यारे से पर्यटक स्थल की ओर। अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है, उफ श्वेता भी अभी नहीं आई है, गांव भी जाना है। किरण दी तो अभी आते ही बस शुरू ही हो जाएंगी। चलो चलो, क्या कर रही हो सब?
6: राधे राधे समता जी, क्या हाल है? बहुत गुस्से में दिख रही है, आखिर बात क्या है?
5: अरे पूछो मत श्वेता, देख नहीं रही कितनी गर्मी है और इतने पसीने गिर रहे हैं। मैं तो इस गर्मी से परेशान ही हो गई हूँ।

0: अरे सब लोग रेडी हो भाई, किरण दी आती होंगी। और आओ सब लोग रोटी सब्जी खा लो, बस अभी गरम गरम बनाई है।
1: मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, पर किरण दीदी आ जाती तो सब एक साथ मिल के खा लेते और मजा ही आ जाता।
2: सच्ची कहा श्वेता, पर किरण दी आज कहाँ रह गई भला, गांव भी तो निकलना है। श्वेता देखो जरा फोन लगा के किरण दी को।
1: ओके।
3: हाँ श्वेता, मैं रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। और सुनो, ड्राइवर भैया रास्ते में मिल गए हैं, तो मैं गाड़ी से ही आ रही हूँ, और सब बिल्कुल मुझे तैयार मिलो।
0: हाँ दी, आप आइए, तो हम सब बिल्कुल रेडी हैं। किरण दी आइए, आज मैंने रोटी और कटहल की सब्जी बनाई है, चलिए सब मिलकर खा लें, फिर सब चलते हैं।
3: ठीक है, आओ सब कटहल की सब्जी और रोटी खाते हैं।

0: किरण दी, इस बार हम लोग बलरामपुर चल रहे हैं ना? बलरामपुर के किस गांव में?
1: हम लोग चल रहे हैं बलरामपुर के बैरिया सुरजनपुर गांव में, और पता है जहां पर जिम्मी की नानी रहती हैं और उनकी नई नई बहू आई है, उसी को देखने चल रहे हैं। चलो सब लोग।
2: और जानती हैं समता दी, हमारी नानी जी अपने बहू बेटे दोनों से बहुत प्यार करती हैं। अभी आप जैसे उनके सामने पड़ेंगी वो अपने बहू के गुणगान गाने लगेंगी।
3: जो बहुओं के गुण गाती है वो

0: अभी कितनी दूर है गांव? जिमी, तुम्हारी नानी का घर तो बहुत दूर है।
1: अरे श्वेता दी, बस आने वाले हैं ड्राइवर भैया, थोड़ा आराम से चलिए, इधर का रास्ता बहुत खराब है।
2: पर काफी हद तक सड़कें अच्छी हो गई हैं अब।
3: जिमी, यही है ना बैरिया सुरजनपुर गांव? जरा बताती हुए चलो, रमेश को रास्ता पता नहीं है।
1: हाँ किरण दी, मैं बताते हुए ही चल रही हूँ, इसीलिए तो मैं ड्राइवर भैया के बिल्कुल बगल वाले सीट पे बैठी हूँ। भैया इधर से दाहिनी मोड़ लीजिए, और वो देखिए भैया, सामने वाला जो दो मकान है पीले रंग का, आगे छप्पर छाया हुआ है, बस वही है नानी का घर।
2: वो जो चारपाई पर बैठी है वही है क्या तुम्हारी नानी, वो जो बूढ़ी सी है?
1: हाँ हाँ समता दी, वही है हमारी नानी जी। चलिए सब लोग उनको राम राम बोलते हैं।
4: राम राम नानी जी।
3: कैसी हैं आप नानी जी, क्या हाल चाल है? नानी जी, भैया और भाभी सभी ठीक है ना? कहाँ हैं सब लोग?
5: सबका राम राम बहनी, जियो नी के रहाओ। कहाओ बहनी जिम्मी, काओ हाल है? तोहरे मम्मी पापा केर का हाल है बहनी? आज नानी कहाँ याद कैली हो बच्चा हमार? ये सब तोहर के हो सखी सहेलर हो? आओ आओ सभी जने बैठो, आओ बैठो।
1: हाँ हाँ नानी, ये सभी हमरे साथे काम करती, सखी सहेली समझो नानी।
2: जिमी, तुम्हारी भाभी आ रही है क्या? वो देखो सामने, और शायद भैया भी साथ में हैं।
6: लगता है नानी अपने बहू और बेटे से बहुत प्यार करती हैं।
5: नानी, ज्यादा लाड प्यार ना करो अपने बेटे का, नहीं तो बिगड़ जाएंगे भैया।

0: अरे बच्चा यक्के जने हैं ये, तब मोहाइत है इनका, अब का करी बहनी, यक्के तो हमार बिटीवा बाटे।
1: किरण दी, हमारा मन कह रहा है कि नवरात्रि चल रही है तो हम लोग इधर से ही देवी पाटन मंदिर के दर्शन करते हुए चले।
2: हाँ दी, हम लोग दर्शन करके ही चलेंगे, चाहे जितनी देर हो जाए। नानी जी आप भी चलिए और भैया भाभी आप भी चलिए, गाड़ी तो हमारे पास है ही, बहुत मजा आएगा।
0: अब ये दुल्हन कहाँ जाई है दादा, घाम बहुत है और तनी ये पैदल चले, मैं कमजोर ही बच्चा हमार, डरात ही कि घमाम चली तो करिया ना हो जाई।
2: अरे नहीं अम्मा, ये बात

0: अरे नानी जी, अब बहू और बेटी में कोई फर्क वर्क नहीं करता है और न करना चाहिए। आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू बनेगी। बहू को बेटी की तरह ही रखिए और प्यार करिए।
1: हाँ नानी जी, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी जी को खुश रखने के लिए ही घर में लक्ष्मी जी आती हैं। अब दिवाली आ रही है, लक्ष्मी जी आने ही वाली हैं।
2: अरे हमारी नानी जी बहुत अच्छी हैं। देखो कितनी सुंदर हैं और बहू को बहुत प्यार करती हैं। अरे इतनी पढ़ी लिखी बहू मिली है आपको, तो आपको किस बात की चिंता है, क्यों नानी?
3: अरे बहनी, हम तो इनका बहुत मोहाई ले, लेकिन ये जब देखो तब यह कहत ही कि तुहार लड़कवा हमारे साथ है बहुत मनमानी करत है, हमार कौनो कदर नाई की हिस। आप बताओ का करी।

0: अरे भाई, झगड़ा लड़ाई कहाँ सुनी, सब बंद करिए और चलिए हमें दर्शन करा तुलसीपुर पाटन देवी मैया का।
1: चलिए नानी जी, मामी जी, दादी, आप सब लोग तैयार हो जाइए, हम लोग मंदिर चलते हैं, मैया के दर्शन करेंगे।
0: चलो चलो, मैंने ही कहा था मंदिर चलने के लिए, चलो सब लोग मंदिर चलते हैं।
2: आओ आओ सब लोग, चलो गाड़ी में बैठो।
0: अरे भैया संभाल के जरा, आराम से चलिए। नानी जी आप आराम से बैठी है ना?
2: हाँ हाँ बच्चा बैठी हैं, नीक यक बैठी हैं दादा।
1: चलो चलो सब आराम से उतरना, नीचे मंदिर आ गया, देखो नवरात्र चल रहा है तो कितनी भीड़ है। अरे राम रे,
0: आराम से उतरो, भीड़ बहुत है।
2: आओ चलो एक माता जी का गीत गाकर हम लोग अपनी अर्जी लगा देते हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम वेलकम और वॉर्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही प्यारा वाला मोटिवेशनल वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और ज्ञान असली लाइव यानी कि हम आपको देते हैं एंटरटेनमेंट और उसके साथ मोटिवेशन, और मोटिवेशन के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। यही तो खासियत है हमारी ज्ञान असली लाइव की कि जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, मोटिवेशन भी मिल जाता है और उसके साथ में एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि हम मस्ती वाली बातें भी करते हैं, थोड़ी सी आपकी काम आने वाली बातें भी करते हैं और थोड़ी सी मोटिवेशनल भी, ताकि आपका दिन जो है वो बेहतर बने। कहीं ना कहीं हम सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हम सभी को लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए लगता है ना कि थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकें। और हमारे मूड को लाइट रखने के लिए हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, और ख़ुद को बेटर की तरफ ले जाने के लिए इन्फॉर्मेशन भी, जो कि हम आपको तीनों देते हैं। तो आइए, कैसे हैं आप सभी, स्वागत स्वागत स्वागत, तहे दिल से स्वागत, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं और जो हमें एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, उन सभी का करती हूँ तहे दिल से मैं यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं और आज की शुरुआत करते हैं। आज की जो हम शुरुआत करने वाले हैं, वो आज हम बात करेंगे हमारी पर्सनैलिटी पर, पर्सनैलिटी यानी कि हमारा व्यक्तित्व। आज हम इसी पर बात करते हैं, करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो डेवलप होती है। धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, लेकिन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि व्यक्तित्व जो है आपका, वो कहीं ना कहीं एक आईने की तरह होता है, जिसमें आप सब कुछ आप नज़र आ जाते हो। आपसे पहले आपकी पर्सनैलिटी नज़र आती है, और जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है, जैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही हम भी बन जाते हैं। यानी कि अगर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तो हमारे अंदर भी निखार आता है। कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व हमारे लिए एक आईने की तरह होता है, इसलिए व्यक्तित्व को बेहतर करना यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं, आपका व्यक्तित्व सबसे पहले देखा जाता है कि कैसे इनका व्यक्तित्व है, कैसे बात करने का तरीका है, कैसे उठने बैठने का तरीका है, सब कुछ। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज है ट्यूसडे और आज हम बात करते हैं पर्सनैलिटी को लेकर, और आज जो मैं बात करने वाली हूँ पर्सनैलिटी को लेकर के, वो है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मेरे पास आज 5 टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। अलग अलग हैं लेकिन बहुत ही बेहतर हैं। सबसे पहले आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी हिस्सा है। आप कैसे बात करते हैं, इसी से आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन बन जाता है। बात करने का तरीका यानी कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। हम कैसे किसी से बात करते हैं, किस तरीके से बातों को समझते हैं। कई बार क्या होता है ना लिसनर्स, कि बातें वो होती नहीं है जिनका जो मतलब हम निकाल लेते हैं। सामने वाला कहना कुछ चाहता है और हम उसका मतलब कुछ और ही समझ लेते हैं। इसलिए अगर आप एक बेहतर पर्सनैलिटी चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छे उससे कम्युनिकेट करें। हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक, हम ये कह लें कि कहीं ना कहीं पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, जिसमें कि सब कुछ आ जाता है। कम्युनिकेशन स्किल जब हमारी अच्छी होती है, तो हम चीज़ों को समझ पाते हैं, बातों को जान पाते हैं, अपनी राय को बेहतरी से रख पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी काफ़ी बेहतर हो। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल में आता है कि एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग यानी कि सिर्फ बातों को कहना नहीं होता है, एक्टिव लिसनिंग में हमें हमारी बातों को, दूसरे की बातों को सुनना होता है। अपनी बातों को कहने से पहले आपको दूसरों की बातें सुननी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेट अगर आप किसी से भी करना चाहते हैं, किसी के भी साथ बैठे हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले फोकस के साथ उसकी बातें सुनना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बातों को सही तरीके से सुनेंगे, फिर ही हम आंसर दे पाएंगे। अगर हमने सामने वाले की बात को आधा सुनकर आंसर दिया, तो वो आंसर भी गलत होगा। इसलिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए ज़रूरी है कि आप एक्टिव लिसनिंग करें। सेकेंड आता है कि हमेशा अपनी आवाज़ की टोन को सही रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आवाज़ की टोन को सही रखने का मतलब है कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हमारी आवाज़ की टोन पे डिपेंड करता है कि हम सामने वाले से क्या कहना चाहते हैं। कई बार आप बहुत अच्छी चीज़ कहना चाहते हैं सामने वाले से, लेकिन जो कि हमारी आवाज़ की टोन वैसी नहीं होती, इसलिए सामने वाले को उसकी मीनिंग कुछ अलग चली जाती है। शब्द बहुत मैटर करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन टोन और भी ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, आप वहाँ बैठ जाएंगे प्लीज़, चलो वहाँ बैठो, दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए कहते हैं कि जैसी आपकी सिचुएशन है, जैसी आपकी बात है, वैसे ही आपकी टोन भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कोई खुशी की बात बतानी है, तो हमारी टोन भी वैसी ही होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम चिल्ला कर किसी को खुशी की बात बताएंगे तो उसे क्या लगेगा कि आप खुशी की बात बता रहे हैं। जैसी आपकी सिचुएशन है, वैसे ही टोन भी होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम बात तो अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट इतनी चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं कि सामने वाले को लग रहा है कि ये पक्का लड़ाई ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जैसी आपकी सिचुएशन हो, जैसी आप न्यूज़ दे रहे हैं, वैसी ही आपकी टोन भी होनी चाहिए। जिस भी पॉइंट पर आप बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आपकी टोन उस बात, उस टॉपिक से मेल खाती हुई होनी चाहिए। इसलिए हमें हमारी आवाज़ की टोन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, और हाँ, साथ ही साथ हमारे शब्दों पर भी। थर्ड पॉइंट आता है कि खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए। किसी भी टॉपिक पर अगर बात हो रही है तो आपको बिना डरे अपनी बात रखनी चाहिए। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि ये टॉपिक है और इस पर आप अपनी राय बताएं, तो बिना डरे हुए अपनी बात को रखें और हर बार अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा निखारें। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारी अंदर की बातें होती हैं, जो हमारी राय होती है, वो बाहर आती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। इसलिए जब भी आपसे किसी भी टॉपिक पर राय मांगी जाए, तो आप खुलकर वही कहें जो आपको सही लगता है। अपनी राय को खुलकर देने से हमारे पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और हमें लगता है कि हाँ, मैं भी ये कर सकती हूँ। इसलिए हमेशा अपनी राय को महत्व देना बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से ब्रेक की तरफ, यानी कि एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। लिसनर्स, बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद पसंदीदा प्यारा प्रोग्राम, जो आपको मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन तीनों ही देता है, जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून।
1: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
2: पहले कनेक्शन तो एक हो जाए।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9816 9817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9976 9216 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही प्यारा प्रोग्राम, जो आपको देता है मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, जिसका की नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पर, जो कि आज हमारा सेशन चल रहा है कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर, और जिसमें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होती है। हम बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं, ऐसी होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं परफेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हमारी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए आज हम कुछ टिप्स आपको बताना चाहते हैं। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह रखेंगे तो इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज में आता है कि आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है। बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखकर बात करनी चाहिए, इससे आपका आत्मविश्वास झलकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही एक बड़ी बात है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आई कॉन्टैक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि सामने वाले की आंखों में देखते हुए हम बात करें, जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता है और सामने वाले को ऐसा नहीं फील होता है कि आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या ढंग से उसकी बातों को सुन नहीं रहे। कई बार क्या होता है कि हम जब हम सामने वाले की आंखों में देखकर यानी आई कांटेक्ट से बातें नहीं करते तो सामने वाले को लगता है कि ये मेरी बातों को नहीं सुन रहा है या मेरी बातों पे कंसंट्रेट नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए जब भी कोई आपसे बात कर रहा हो या अगर आप भी किसी से बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। आई कांटेक्ट रखें और फिर ही बात करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आता है कि आपकी प्यारी सी स्माइल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप किसी से अभी बात कर रहे हैं तो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ज़रूर रखें, क्योंकि चेहरे पर हल्की सी और प्यारी सी जो स्माइल होती है ना, वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। होता है ना, जब हम किसी से मिलते हैं और गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग या कुछ भी ऐसे विश करते हैं, तो हम उसे स्माइल कर विश करते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। तो जब हम स्माइल करते हैं ना, तो वो सिर्फ हंसी नहीं होती है, वो दो लोगों के बीच में बात करने के लिए, मिलने के लिए एक ब्रिज बन जाती है। जब आप किसी को स्माइल देकर रिप्लाई करते हैं, तो सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करके रिप्लाई करता है। तो वो जो एक हंसी होती है, आपकी चेहरे की स्माइल होती है, वो एक ब्रिज की तरह काम करती है, दो लोगों को जोड़ देती है। फिर वो हमारे पास आते हैं, हाँ हमारा मन करता है, हम बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी किसी से भी मिलें तो हमेशा स्माइल करते हुए मिलें, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में किसी से मिल रहे हैं या जब भी किसी से मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, मान लीजिए कि काफ़ी दिनों बाद आप किसी से मिल रहे हैं, तो हमेशा स्माइल करते हुए मिलना चाहिए। ये एक पॉजिटिव साइन होता है, इससे लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होती है जब हम किसी से स्माइल करके मिलते हैं। सेकेंड आता है कि पोस्चर बहुत ज़रूरी है, हमेशा सीधे खड़े होकर या सीधे बैठकर ही बातें करनी चाहिए। झुक के बैठना, ये हमारे कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर देता है, इसलिए कभी भी झुक कर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सीधे खड़े होकर बात करें, और अगर बैठकर आप बात कर रहे हैं तो सीधे बैठकर ही बात करें। कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए, आँखें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, और ना ही हमें अपने कंधों को कभी लूज़ रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाती हैं। जब हम किसी के सामने झुक कर बैठे होते हैं, तो ये बॉडी पोस्चर जो होता है, ये हमारे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। सामने वाले को लगता है कि डर रहा है, घबरा रहे हैं। तो जब सामने वाला, मान लीजिए आप नहीं भी डर रहे हैं, नहीं भी घबरा रहे हैं, आप में पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप झुक कर बैठे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, आप सामने वाले को नहीं देख रहे हैं, आप सीधे खड़े नहीं हैं, झुक कर खड़े हैं, या बैठे हैं तो सीधे नहीं बैठे हैं, झुक कर बैठे हैं, तो इससे सामने वाले को ये साइन जाता है कि लगता है इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा कम है। हो सकता है ये मुझसे डर रहे हैं बात करने में, या घबरा रहे हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, तो अपनी बॉडी पोस्चर को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए लिसनर्स, अब चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हमारा वेट कर रहा है, उसे सुन लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद ही प्यारा प्रोग्राम जो कि है ज्ञानश्री लाइव, जो आपको देता है एंटरटेनमेंट, मोटिवेशनल, और मोटिवेशन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी। तो आइए चलते हैं, इस प्यारे से सॉन्ग को सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आपका अपना बेहद ही प्यारा प्रोग्राम जो कि है ज्ञान असली लाइफ। तो आइए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और आगे आपको जो हम बताने वाले हैं वो है हमारा थर्ड पॉइंट हमारा है पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छी पर्सनालिटी की ज़रूरी होता है कि आप खुद पर भरोसा करें। आपको खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ हमें हमारी स्किल्स की पहचान होना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, बस आपको अपनी उस खास आदत को, अपनी उस खास स्किल को जानना होता है और उस पर फुल कॉन्फिडेंस भी रखना होता है। हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि अगर कॉन्फिडेंट हैं आप तो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कॉन्फिडेंस खुद पर ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। हम हमेशा सुनते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर हमने खुद पर भरोसा किया हुआ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने खुद पर भरोसा नहीं किया है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव हो, तो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, वो काम करें जो आपने पहले कभी ना किया हो। नए कामों को करने की कोशिश करनी चाहिए और छोटी छोटी कहीं ना कहीं चुनौतियां हमें लेते रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। छोटे छोटे जो चैलेंजेस होते हैं वो हमें आगे जाने के लिए और बेहतर बनने के लिए कहीं ना कहीं हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं और इसी के साथ हमारे कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा डेवलप करते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप हमेशा छोटे छोटे चैलेंजेस अपनी लाइफ में रहते रहिए, हर दिन को एक नया चैलेंज बनाइए। हो सकता है कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं, आप बस यही लेकर के चलिए कि मुझे मेरे अंदर की हर कमी को एक दिन पूरा करना है। एक दिन है जिस दिन मैं अपने अंदर की इन कमियों को पूरा करूँगा। दूसरी चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कई बार आपको ये चीज़ बताई है कि उम्मीद जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमारे पास उम्मीद नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम हमेशा हर दिन, मान लीजिए एक दिन आपकी लाइफ का ख़राब था, एक दिन कुछ ख़राब चीज़ें हुई, लेकिन दूसरे दिन हम उसी उम्मीद के साथ

0: सोल्यूशन नहीं है और मैं पूरी तरीके से फंस गया हूँ। एक सिचुएशन ऐसी हमारी लाइफ में आती है जब हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी जो आशावादी होते हैं, जो अच्छी सोच होती है, उन्हें कुछ ना कुछ रोशनी की, कहते हैं ना कि रोशनी करने के लिए सूरज की एक किरण बहुत होती है और उन्हें वो एक किरण कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मिल जाती है। वो उसे ढूंढ लेते हैं और क्यों ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर आशा होती है। इसलिए खुद के अंदर सबसे पहले उन आशाओं को जगाना होगा। हो सकता है एक दिन आपके साथ बुरा हो, दो दिन आपके साथ बुरा हो, तीन दिन आपके साथ बुरा हो, लेकिन अगर आप अच्छा होने की उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे तो एक ना एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हम बात करें तो आप सभी जानते होंगे लिसनर्स कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, उनके पिता जो थे वो एक नाविक थे, यानी कि नाव चलाते थे। और कलाम साहब जो थे वो दिन में न्यूज़पेपर बेचते थे और फिर पढ़ाई करते थे। उनके लिए भी उम्मीदें बहुत कम थी। किसने सोचा था कि एक वो लड़का जो न्यूज़पेपर बेचता है और किसी तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा करता है, वो एक दिन मिसाइल मैन की पदवी पाएगा और पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ करेगी, उनकी मिसालें देगी और उनसे मोटिवेट होगी। लेकिन आज हम उनसे मोटिवेट होते हैं ना, उनकी मिसालें देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल तो किया। वो हमेशा बताते थे कि उन्होंने स्ट्रगल तो किया, लेकिन स्ट्रगल करने के साथ साथ उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन होता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, किसी दिन उनके पास पढ़ाई के लिए बुक्स नहीं होती थी, बुक्स होती थी तो वो स्कूल प्रॉपर नहीं जा पाते थे काम की वजह से, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि वो एक दिन बेहतर बनेंगे और वो बेहतर बने। इसलिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर उम्मीद को बनाए रखना चाहते हैं तो उसे बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर, हमारे अंदर जो स्किल है, हम उस पर काम करें, अपनी पॉजिटिव सोच पर काम करें। लेकिन बात आती है कि चीज़ें पॉजिटिव कैसे हों, क्योंकि जब हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, सब हमारे साथ मान लीजिए बुरा ही बुरा हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कैसे उम्मीद रखें और कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। तो हमेशा याद रखिए कि आपके पास जो कुछ भी है और आपके साथ जो कुछ हो चुका है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान गिर गया है, गिरना जो था वो उसकी हाथों में नहीं था, वो गिर गया, लेकिन उठना उसके हाथों में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में उम्मीद मिले, आगे बढ़ने के लिए आप कुछ एक पॉजिटिव सोच मिले, तो उसके लिए हमेशा जो हो चुका है उस पर नहीं, बल्कि आप जो कर सकते हैं उस पर सोचना चाहिए। एक उम्मीद के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए और हमेशा बेहतर करने के लिए कभी प्रॉब्लम पर नहीं सोचना चाहिए, हमेशा प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर सोचेंगे तो खुद ब खुद उम्मीद भी मिल जाएगी और खुद ब खुद सब कुछ बेहतर भी हो जाएगा। बस हमें करने, सोचने और समझने की देर होती है। तो आइए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद ही प्यारा प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव। स्टे ट्यून।
1: दीदी, आप उसे भूल जाइए, इसी में उसकी भलाई है, बाबा नहीं मानेंगे।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

बेहद ही पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्वाइए अब बात कर लेते हैं, चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले जो दो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ, यानी कि दो पॉइंट्स हैं और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं। देखिए इमोशनली कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को संभालना और दूसरों की भावनाओं को समझना, ये एक मैच्योर पर्सनैलिटी की निशानी होती है। आपने देखा होगा ना, किसी किसी को हम कहते हैं तुम बहुत मैच्योर हो, कितनी मैच्योरिटी से डिसीजन लेता है, कितना मैच्योर है, कितना गंभीर है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में जो गंभीरता होती है, हमारी सिंसियरिटी होती है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा किसी किसी का व्यक्तित्व कैसा होता है कि वो हर बात को मजाक में ले लेते हैं, ऐसा व्यक्तित्व हमारा नहीं होना चाहिए कि हम हर बात को मजाक में लें। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार अपने चीज़ों को संभालना हमें ही होता है। जहाँ आपको लगता है कि आपको सिंसियर होने की ज़रूरत है वहाँ आपको सिंसियर होना चाहिए, जहाँ आपको लगता है कि आपको हंसी मजाक करने की या चंचल हम कहते हैं ना जो एक पर्सनैलिटी होती है उसकी ज़रूरत है तो आपको वो होना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा एक मैच्योर पर्सनैलिटी की तरफ ही जाना चाहिए और अपनी भावनाओं को हमेशा संभालना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको ये लगे कि आपको तेज़ गुस्सा आ रहा है लेकिन वो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप उस सिचुएशन में गुस्सा कर सकें, तो वहाँ पर आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमें हमारी उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है सिचुएशन ऐसी ना हो। तो इमोशनल आपके जो इमोशंस हैं उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम एक्सप्रेस करें, यही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि अपने भावनाओं को कहीं ना कहीं संभालना। और सेकंड जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है कि सिंपैथी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि सहानुभूति, खुद को और दूसरों की जगह रखकर हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और रिश्ते मजबूत होने के साथ साथ आपका व्यक्तित्व भी निखरता है। मुश्किल या ऐसे प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो तो उसमें खुद को शांत रखना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए और अपने कहीं ना कहीं अपने पर से कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। कई बार क्या होता है ना लिसनर्स कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है तो हम हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। शांत रहना है और सोचना है कि हम किस तरीके से इससे निकल सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होती हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले पॉइंट पर, जो कि है हमारा फिफ्थ पॉइंट कि कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ केयर, यानी कि लगातार सीखते रहना चाहिए और खुद का ख्याल रखना, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपकी नॉलेज, अच्छा रहन सहन ही आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं चार चांद लगाता है, यानी कि हमारे पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और सेल्फ केयर होनी चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन सारी ही स्किल्स के साथ जो मैंने अभी आपको फोर्थ पॉइंट बताए, आपके पास अच्छी लर्निंग होगी और अच्छी लर्निंग के साथ सेल्फ केयर होगी यानी खुद का ख्याल रखना, तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी को और ज़्यादा डेवलप कर देता है। जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि हर रोज़ कुछ नया पढ़ें, हर दिन कोई नई स्किल सीखें, अच्छे पॉडकास्ट सुने और हाँ हमेशा अपनी जो भी नॉलेज है उसको और ज़्यादा बढ़ाते रहिए। लिसनर्स हमेशा कहते हैं कि पढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती, आपने बहुत सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब आप बुक्स उठा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। हर दिन कुछ नया पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, हर दिन कुछ नया अपनी पर्सनैलिटी में जोड़ते रहिए, इससे हमारी पर्सनैलिटी ज़रूरत से ज़्यादा डेवलप होती है। दूसरा आता है कि कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, अपने काम को पूरा समय देना चाहिए और हमेशा टाइम का पंचुअल रहना चाहिए। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, मान लीजिए हमें कहीं भी जाना है, आपको किसी फंक्शन में जाना है, आप ऑफिस वर्क में जाना है आपको, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है। क्या होता है कि मान लीजिए हमें 10 बजे कहीं जाना है और हम 10:30 वहाँ पहुँचे, हो सकता है आपकी ऑफिस में आपकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन आप 10 मिनट या 20 मिनट लेट पहुँचे, तो इससे आपके बॉस के ऊपर, बाकी कलीग्स के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो गलत पड़ता है कि अरे ये तो टाइम का पंचुअल ही नहीं है, इसे तो टाइम की कोई कद्र ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, टाइम मैनेजमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ किसी किसी दिन आपको 2-4-5 मिनट देर हो जाती है तो वो समझा जा सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से हमें लेट हो गया,
लेकिन जहाँ तक हो सके हमें हमेशा टाइम का पंचुअल होना चाहिए, टाइम का ख्याल रखना चाहिए, हर काम टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही करना चाहिए। अब देखिए, आपको अगर एयरपोर्ट हमें अगर एयरपोर्ट जाना होता है फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि फ़्लाइट से की टाइमिंग से 2 घंटे पहले निकलते हैं कि हमें एयरपोर्ट जाना है। हम उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करते हैं कि इतना समय जाने में लगेगा, इतना समय मुझे वहाँ पहुँचने में लगेगा, इतने में मेरी सामान की चेकिंग होगी, इतना टाइम मुझे लगेगा और इतने बजे मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे 2 या 3 घंटे पहले निकलना है। या अगर हमें सुबह 10 बजे ऑफ़िस जाना होता है, तो हम टाइम उसको कहीं ना कहीं जोड़ते हैं कि ठीक है, अगर मुझे 10 बजे ऑफ़िस जाना है, तो अगर मैं 9:30 बजे निकलूँगी तो मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगी, जैसी आपकी दूरी हो। इसलिए टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर हमें हमारा काम करना है तो उसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे इतने से इतनी देर में मेरा काम करना है और इतनी से इतनी देर में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप पूरा दिन काम करते रहें, 24 घंटे काम करते रहें, 24 घंटे पढ़ाई करते रहें, लेकिन आपको आए कुछ भी नहीं, और ठीक उसी तरह कि बिल्कुल आप काम में झुके हुए हैं, 24 घंटे आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल खोए हुए हैं अपने काम में, आपने पूरी तरीके से खुद को अपने काम में झोंक दिया है, लेकिन फिर भी आपका काम टाइम पर करके आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि आपका टाइम मैनेजमेंट गलत है। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं। इसलिए हमेशा खुद का एक सेट रूटीन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि किस काम में कितना टाइम लग रहा है, कहाँ कितना हमारा टाइम जा रहा है, उस हिसाब से एक शेड्यूल के तहत ही हमें हमेशा काम करना चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। तो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, और इस सॉन्ग के उस पार आते हैं कुछ और नई बातों को आपसे बताने के लिए, शेयर करने के लिए। तब तक के लिए आइए इंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान स्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और हमारा जो टाइम है उसने कर दिया है इशारा कि समय हो रहा है जाने का। लेकिन जाने से पहले आज मेरे पास एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो सिर्फ एक पैराग्राफ की है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो रिलेटेड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ से। ये बहुत ही एक छोटी कहानी ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लाइफ का बहुत ही मोटिवेटिंग हिस्सा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब इसरो में थे, तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया और वो सैटेलाइट मिशन फेल हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और यही सोच रहे थे कि मैं क्या जवाब दूंगा दूसरों को। वो अपनी असफलता से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी समय उनके प्रोफेसर सतीश धवन ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम एक बार फेल हो गए हो तो इससे तुम्हें अपने कदम पीछे नहीं हटाने, बल्कि और बेहतरी से कोशिश करनी है। अपनी गलतियों को सुधारो और कोशिश करो और अपनी गलती की जिम्मेदारी लो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ठीक ऐसा ही किया। जो भी कमियां रह गई थी उन्हें सुधारा और अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद ली। और फिर जब उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट का कहीं ना कहीं परीक्षण किया तो वो सफल हो गया। फिर आगे जाकर सतीश धवन ने कहा कि अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ का ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं हमें ये सिखाता है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो कहीं ना कहीं अगर असफल भी हो जाए तो कभी हमेशा अपनी टीम की ढाल बनकर आगे खड़ा रहता है और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। क्योंकि रोहिणी सैटेलाइट जब बहुत ही अच्छे से लॉन्च हो गया तो डॉक्टर APJ कलाम ने इसका पूरा का पूरा श्रेय जो था वो अपनी टीम को दिया, और जब उस टाइम पे वो नहीं हो पाया था तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद पर सारा कुछ लिया था कि सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन उसमें मेरी टीम की कोई गलती नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व बेहतर तभी बनता है जब हम जिम्मेदारी लेते हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें समय रहते पूरा करें और अपनी गलतियों को सुधारें। तो आइए लिसनर्स, इन्हीं बातों के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, रेडियो ज्ञान असली को सुनते रहिए। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अब आपसे मैं मिलूंगी आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो में जिसका कि नाम है सुन सहेली। तब तक के लिए बाय बाय।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की दूर करेंगे बहुत से भ्रम सीखेंगे सिखाएंगे पैसे भी अपने बचाएंगे बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार रहेंगे रोग मुक्त जीवन रहेगा खुशहाल अब खत्म हुआ इंतजार आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है
2: पैरों में सूजन बुखार थकावट ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण लेकिन घबराइए मत बचाव मुमकिन है
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से फाइलेरिया दूर भगाओ स्वस्थ जीवन अपनाओ फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए
2: बस याद रखिए जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं
1: फाइलेरिया से डरना नहीं दवाई से लड़ना है एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत
3: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की सुनते रहिए 89.6 FM गोडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा टीबी को हराएं जीवन को जिताएं 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन
4: कहावत है सेहत है तो सब है वरना सब कुछ होकर भी कुछ नहीं तो स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो पर रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और शो का नाम है सेहत सही लाभ कई दोस्तों आज का विषय है एक ऐसी बीमारी जो सुनने में पुरानी लगती है पर अब भी गांव-गांव गली-गली में मौजूद है बीमारी का नाम है फाइलेरिया जिसे लोग हाथी पांव भी कहते हैं देखो बीमारी का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है डर तो तब है जब हम चुप रहें इलाज ना करवाएं और बचाव की दवा ना लें और एक और कहावत है कि समय रहते जो सावधान बीमारी भागे जैसे शैतान तो चलिए आज की चर्चा में हमारे साथ हैं गांव-गांव घूमकर लोगों को सेहत का पाठ पढ़ाने वाले हमारे प्यारे सेहतिया सिंह भैया
5: नमस्कार भाइयों और बहनों कहते हैं बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी अनदेखी मत करो मैं हूँ आपका अपना सेहतिया सिंह आज हम बात करेंगे फाइलेरिया से कैसे बचें अगर हो जाए तो क्या करें और सबसे जरूरी बात अफवाहों से कैसे बचें
4: पर भैया सबसे पहले साफ साफ बताइए ये फाइलेरिया है क्या
5: देखिए फाइलेरिया एक बीमारी है जो कि एक छोटे से कीड़े फाइलेरिया वर्म से होती है ये कीड़ा हमारे शरीर में तब पहुंचता है जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काट कर फिर से किसी और को काट लेता है
4: यानी मच्छर इधर से उधर बीमारी ले जाने वाला चालक डाकिया है
5: बिल्कुल ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है कई बार सालों तक कोई लक्षण नहीं आते लेकिन अंदर बीमारी बढ़ती रहती है
4: लेकिन भैया श्रोता कैसे पहचानेंगे कि उन्हें फाइलेरिया है
5: शुरुआत में हल्का फुल्का बुखार बार बार होना हाथ पैर में हल्की सूजन त्वचा पर लाल या बड़े धब्बे थकान और कमजोरी और आगे चलकर हाथ पैर या अंडकोश में स्थायी सूजन सूजन वाला हिस्सा भारी हो जाना रोजमर्रा का काम करने में परेशानी ये सब लक्षण होते हैं फाइलेरिया के
4: अच्छा कहावत है बीमारी के पहले पग में ही पहचान हो जाए तो इलाज आसान हो जाए अच्छा क्या ये बीमारी छूने से भी फैलती है भैया
5: नहीं बिल्कुल नहीं ये सिर्फ मच्छरों से फैलती है अगर मोहल्ले में किसी को फाइलेरिया है और मच्छर ज्यादा है तो बाकी लोगों में खतरा बढ़ जाता है
4: यानी मच्छर सिर्फ काटते नहीं बीमारी भी बांटते हैं तो इन मच्छरों से बचने का क्या तरीका है
5: मच्छरों से बचाव के लिए सबसे जरूरी ये है कि सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें घर के आसपास पानी न जमा होने दें, नालियों की सफाई और रात में पूरी बांह के कपड़े पहनकर ही सोएं।
4: बहुत सही कहा आपने भैया, लेकिन इसके बचाव की दवा क्या है?
5: इसे कहते हैं MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। साल में एक बार पूरे गांव या मोहल्ले को ये दवा दी जाती है और ये बिल्कुल मुफ्त है। 2025 में ये 10 अगस्त से शुरू हुआ है।
4: और ये मिलती कहाँ है?
5: सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र पर ये दवाएं मिलती हैं और आशा बहन, आंगनवाड़ी बहन घर घर जाकर भी ये दवा देती हैं। इसमें 2 या 3 गोलियां होती हैं जो खाने से आपके शरीर में मौजूद कीड़े मर जाते हैं और बीमारी फैलने का खतरा खत्म हो जाता है।
4: याद रहे, ये दवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मौजूदगी में लें, खाली पेट नहीं और पानी के साथ लें।
5: और हाँ, 2 साल से छोटे बच्चों को ये दवा नहीं दी जाती, गर्भवती महिलाओं को भी नहीं। गंभीर बीमारी वालों को डॉक्टर से पूछकर बाकी सभी चाहें बीमारी हो या ना हो ये दवा जरूर लें।
4: भैया, अब अफवाहों की भी बात कर लेते हैं।
5: बिल्कुल, सबसे बड़ी अफवाह ये है कि फाइलेरिया सिर्फ गंदे लोगों को होती है, बल्कि सच्चाई ये है कि फाइलेरिया गंदगी से नहीं मच्छरों से फैलती है। तो जहाँ गंदगी होगी, पानी का ठहराव होगा, गंदा पानी जमा होगा, वहाँ मच्छर होंगे, और जहाँ मच्छर होंगे वहाँ बीमारी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संक्रमित व्यक्ति को मच्छर ने काट लिया और उसके बाद किसी और व्यक्ति को काटा तो उस व्यक्ति को भी ये बीमारी हो सकती है।
4: अच्छा, तो इसके अलावा और भी कोई अफवाह है क्या?
5: एक अफवाह फाइलेरिया की दवा को लेकर भी है। लोगों का यह भ्रम है कि फाइलेरिया की दवा खाने से शरीर में कमजोरी आती है।
4: अच्छा।
5: जो कि बिल्कुल सच नहीं है। दवा कमजोरी नहीं लाती बल्कि बीमारी से बचाती है। हाँ, अगर शरीर में पहले से संक्रमण है तो हल्का बुखार या सिरदर्द हो सकता है, लेकिन यह जल्द ही ठीक हो जाएगा।
4: अच्छा भैया, यानी कि दवा से कोई नुकसान नहीं होता?
5: बिल्कुल नहीं, बल्कि दवा ना खाने से नुकसान होता है।
4: और भी कोई गलत फहमियाँ हैं क्या इसको लेके?
5: हाँ, कई लोग को ये गलत फहमी होती है कि फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है, लेकिन लोग यह नहीं समझते हैं कि अगर समय रहते दवा ली जाए तो फाइलेरिया होगा ही नहीं, और अगर किसी को भी हो जाए तो डॉक्टर की सलाह से इसका सही इलाज संभव है। सूजन को कंट्रोल कर सकते हैं, मरीज को राहत मिल सकती है, लेकिन फाइलेरिया एक बार जो हो जाए तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ती है।
4: यानी अगर जागरूक रहें तो इस बीमारी से बच सकते हैं।
5: बिल्कुल सही हो सकता है। साथ ही में कई अज्ञान लोगों को लगता है कि सरकारी दवाई में साइड इफेक्ट होता है, इसीलिए नहीं खाना चाहिए, बल्कि सरकार की दवा पूरी तरह सुरक्षित होती है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होती है और लाखों लोगों को दी जाती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है।
4: तो दोस्तों, आपने अभी सुनी फाइलेरिया से जुड़ी अफवाहें और उनकी सच्चाई। कहावत ये है, केरिया से जुड़ी अफवाहें और उनकी सच्चाई। कहावत ये है कि अफवाह का इलाज सच की बात। तो अब जरा सेहतिया भैया ये भी बताइए कि किसी को फाइलेरिया हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए?
5: अगर फाइलेरिया हो जाए तो सूजे हुए हिस्से को रोज साबुन और साफ पानी से धोएं, त्वचा को सूखा रखें, सूजे पैर को ऊंचाई पर रखकर सोएं, डॉक्टर के बताए गए व्यायाम को करें।
4: अच्छा भैया, अब ये बता दीजिए कि फाइलेरिया वाले जो रोगी होते हैं उनको खाने पीने में, मतलब कि उनका खाना पीना कैसा होना चाहिए?
5: ऐसे रोगी को हमेशा प्रोटीन वाले खाद्य जैसे दाल, दूध, अंडा, पनीर के साथ साथ विटामिन सी जैसे संतरा, नींबू, अमरूद, आंवला का सेवन करना चाहिए, और इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों खाना जरूरी है, और खूब पानी पीना चाहिए। और हाँ, तला भुना जंक फूड, मीठा कम लेना चाहिए।
4: अच्छा भैया, एक बात तो साफ है कि बीमारी चाहे कोई भी हो, अगर सरकार, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जनता मिलकर काम करें तो बीमारी टिक ही नहीं सकती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो LF एक गंभीर और विकराल बीमारी है, जिसे रोकने के लिए MDA जैसी सामूहिक स्वास्थ्य पहलों का उपयोग किया जाता है। साथ ही LF जैसी NTDS पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन सेहतिया भैया, मेरे मन में एक सवाल है कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी NFEP के तहत भी तो सरकार बहुत मदद करती है।
5: बिल्कुल, सबसे पहले तो फाइलेरिया के प्रसार को रोकना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सरकार हर साल सामूहिक रूप से दवाइयाँ DEC और एल्बेंडाजॉल मुफ्त में वितरित की जाती है। फाइलेरिया के मरीजों को हाइड्रोसील सर्जरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त दी जाती है। साथ ही निवारक देखभाल और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सूजन को कम करने के लिए मुफ्त दवाइयाँ, साफ सफाई और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं भी दी जाती हैं। समय समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जहां जांच परामर्श और दवाइयां दी जाती हैं। एक और खास बात, इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाता है जिससे मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके।
4: सरकार ने तो अनेक बीमारियों के उन्मूलन के लिए टारगेट घोषित कर रखे हैं, क्या इन्हें बीट करना संभव है?
5: जब तक टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक जन आंदोलन कैसे चलेगा? इसको जन अभियान बनाने के लिए मंजिल होनी चाहिए। दूसरी बात, टारगेट पूरे कौन करेगा, आप और हम? जब तक अपने सेहत की जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे तब तक सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले टारगेट कैसे मीट करेंगे?
4: बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार के

0: स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये तो सेहतिया भैया सही कह रहे हैं। अगर हम खुद आगे नहीं आएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, दवाइयाँ नहीं लेंगे, बीमारियों को छिपाएंगे, तो इलाज कैसे होगा? इसलिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है, तभी तो टारगेट पूरा हो सकता है। और अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि क्या लोग इसलिए भी दवा नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि जब कोई लक्षण ही नहीं है तो फालतू में दवाई क्यों ले? तो आप लोगों को उस समय कैसे समझाते हैं भैया?
1: ये भी तो बहुत जरूरी मुद्दा है। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके गांव में, जिले में किसी को भी ये गंभीर बीमारी है तो आपको भी इस बीमारी का खतरा है। जब तक हाथी पांव के लक्षण दिखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए भले ही किसी को कोई समस्या ना हो, फिर भी उन्हें ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। सरकार यह दवा मुफ्त में देती है ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये दवाई नहीं खाई तो फाइलेरिया का खतरा बना रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई भी व्यक्ति यह दवा खाने से चूक जाता है तो वह अपने साथ साथ पूरे समाज को खतरे में डालता है। फाइलेरिया से बचाव सिर्फ दवाई से ही संभव है। अगर सभी लोग समय पर दवा खाएं तो यह बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। अगर हम लापरवाह रहे तो हमारे पूरे गाँव और समाज को प्रभावित कर सकती है।
0: ओहो, अब सबसे बड़ा सवाल ये है आपसे भैया कि ये दवा किसको और कितनी मात्रा में और कैसे दी जाती है?
1: अच्छा, तो अब आप ध्यान से सुनिए
0: जी।
1: ये दवा सुरक्षित है और सिर्फ सरकारी हेल्थ टीम द्वारा दी जाती है। इसमें उम्र और कद के हिसाब से खुराक तय होता है। इसके खुराक का तरीका कुछ ऐसे है
0: जी।
1: 2 साल से कम के बच्चों को ये दवा नहीं दी जाती। 2 से 5 साल के बच्चों को 1 गोली एल्बेंडाजॉल प्लस DEC आइवरमेक्टिन का छोटा डोज दिया जाता है
0: जी।
1: 6 से 14 साल के बच्चों को 1 गोली एल्बेंडाजॉल प्लस DEC आइवरमेक्टिन का मध्यम डोज दिया जाता है।
0: ओके।
1: 15 साल और उससे ऊपर के लोगों को 1 गोली एल्बेंडाजॉल प्लस DEC आइवरमेक्टिन का पूरा डोज दिया जाता है। वजन और कद का आकलन हेल्थ वर्कर करेगा। कई जगह ऊंचाई नापने वाली पट्टी भी होती है जिससे तय होता है कि किसे कितनी गोलियां देनी है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब हर किसी को अलग अलग खुराक और बच्चों को थोड़ी कम खुराक।
1: हाँ, और याद रखो, दवा खाने के बाद हल्का फुल्का चक्कर, मितली या पेट में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी के कीड़े मरने की वजह से होता है और 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ।
0: वाह सेहतिया भैया, आज तो आपने कमाल की जानकारी दी। तो दोस्तों याद रखिए, MDA की दवा है सुरक्षा की ढाल, इसे खाने में ना करें टाल। तो दोस्तों MDA के राउंड चल रहे हैं, मुफ्त दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं। तीनों दवाई खाएं, अफवाहों से बचें, घर बैठे सही जानकारी पाएं आपके अपने सामुदायिक रेडियो पर जिसका नाम है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: तो भाई और बहनों, अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ें और हमारे साथ शपथ लें। हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हम फाइलेरिया बीमारी को खत्म करने में अपना सहयोग देंगे,
0: अपना पूरा सहयोग देंगे।
1: दिनांक 10 अगस्त 2025 से प्रारंभ हुए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा दीदी के निर्देशानुसार उनके समक्ष फाइलेरिया रोधी दवा खाएंगे एवं घर घर के सभी सदस्यों को खिलवाना सुनिश्चित करेंगे
0: और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी
1: फाइलेरिया रोधी दवा खाने हेतु प्रेरित करेंगे।
0: शुक्रिया सेहतिया भैया। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेगमेंट यही समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाई जरूर खाएं। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार। रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: भी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9286 9816 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: अरे सुना?
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और

0: 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे समता
6: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
5: तो भाई, आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है
4: सुन सहेली।
5: तो सुन सहेली आज कुछ अच्छा सा होने वाला है, क्योंकि आज मैं हूँ बड़े वाले अच्छे मूड में, वो अंशिका बेहतर से बेहतर जानती है ना अंशिका?
6: बिल्कुल, मूड तो जबरदस्त होना ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि
5: कहते हैं क्या
6: कहते हैं,
5: कहत कबीर कहे दुनिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुनेगा दाना मोती, कौआ नहीं, हंस चुनेगा दाना,
6: कौआ मोती खाएगा,
5: कौआ मोती खाएगा, है ना?
6: ये
5: कुछ ऐसा सही है ना? सही बोला,
6: बिल्कुल।
5: चलो ठीक है, मतलब पहली बार मैंने जो मुहावरा बोला है वो सही बोला है मैंने, करेक्ट हो गया।
6: तो कहने का सेंस ये था कि क्या होता है ना कि जब आप किसी अच्छी सी जगह जाने वाले होते हैं, जहाँ आपकी पॉजिटिव,
5: अच्छे लोगों से मिलने वाले होते हैं,
6: अच्छे लोगों से, एक्सेप्ट, अच्छे लोगों से मिलने वाले होते हैं, किसी की अच्छी सी स्माइल होती है उससे मिलने वाले होते हैं, तो यही होता है,
5: यही होता है ना? तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
6: नहीं,
5: हाँ, वही होता है जो मंजूर
6: आर्जे होता है।
5: एग्जैक्टली वही होता है जो मंजूर आर्जे समता होता है।
6: Definitely.
5: तो जिस तरीके से आज का मूड माहौल है, आई थिंक सो कि हम बनने वाले आज छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो बच्चों का सेक्शन यानी कि ट्यूसडे, भाई आज है ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे के दिन मुझे लगता है कि हम वाकई में बहुत ही प्यारे वाले बच्चे बन जाते हैं। और बच्चों के साथ साथ में चलिए हम शुरू करते हैं आज का बेहद पसंदीदा आपका शो जिसका नाम है सुन सहेली। एंड इसी दोपहर में आइए विश कर देते हैं एक साथ एक ही फ्रेम में, शुभ दोपहरिया।
6: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और मूड है जबरदस्त, क्योंकि आप तो सुन ही रहे हैं हमारी आवाज से कि हम बहुत मस्त हैं, और मस्त रहने का आज राज भी है, क्योंकि अभी अभी हमने कुछ ऐसी बातें की जिनकी वजह से मूड जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो आज के दिन की चलिए करते हैं बहुत प्यारी सी
5: शुरुआत आज की अपनी आरजे समता के साथ। इन शॉर्ट अगर आज बस में होता तो फटाफट आगे नहीं फॉरवर्ड करते हैं, स्किप करते जाते हैं, फॉरवर्ड करते जाते हैं। ओके, व्हाटएवर,
6: इंतजार नहीं हो रहा है।
5: नहीं नहीं, इंतजार सब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
6: मुझे तो यही लग रहा है कि मैम को इंतजार नहीं हो रहा है।
5: नहीं नहीं नहीं, मुझे इंतजार है
6: कब मिलते कब जाते,
5: कब मिलते आप लोगों से लिसनर्स, और कब मैं आप लोगों से मिलती, और कब मैं अपना शो शुरू करती। Come to the point, Anshika.
6: Yes, yes.
5: ज्यादा भावनाओं में न बह करके
6: डीप में जाने की

0: जरूरत नहीं,
1: नहीं है, और हम लोग को अपने शो की तरफ चलना चाहिए, ठीक है।
0: तो आइए सुनते हैं पोइट्री।
1: तो आज जो है वो बच्चों की मासूमियत पर है, उनके सपनों को इम्पोर्टेंस देने पर है आज की पोयम। तो चलिए सुन लेते हैं। घर के सूने आंगन में जो खुशियों को खुशियों के रंग बिखेरते हैं, अपनी नन्ही नन्ही आंखों से जो पूरी दुनिया को हेरते हैं ओके, बिना बात के हंस देना और रोकर पल में मान जाना, कितना भोला होता है इन मासूम बच्चों का जमाना। कागज की कश्ती से लेकर जो सावन की बूंदों में गाते हैं, तितली के पीछे दौड़कर जो अपनी धुन में खो जाते हैं, ना कोई जात ना कोई मजहब ना दिल में कोई बैर रखते हैं, जहां भी जाते हैं वे अपनी मुस्कान से खुशियां बिखेरते हैं। मिट्टी के घरौंदे बनाकर और चंदा मामा को बुलाना, परियों की अद्भुत कहानियों में खोकर खो जाना। इनके छोटे छोटे हाथों में बड़े बड़े सपने होते हैं, सपने पलते हैं, इनके कदमों की आहट से घर के सब दुख दर्द ढलते हैं। ये आज की कोमल कलियां हैं, ये कल का नया सवेरा है, इनके ही सुंदर हाथों में कल के भारत का डेरा है। इनके बचपन को प्यार दें, इनके पंखों को उड़ान दें, ये देश का गौरव बनेंगे, आओ इन्हें एक नन्हा सा आसमान दें।
0: वाह, बहुत ही प्यारी कविता और हमारे बच्चों के ऊपर। तो आइए अब बिना देर न करते हुए फटाफट बढ़ते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ, जो कि आज ये है कि अगर नेगेटिविटी आपको पूरी तरीके से घेरती है और आप पर उसका असर पड़ता है, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम हमारी पॉजिटिविटी की पावर को हाई करें। कहने का सेंस ये है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी भरी होती है, मतलब पॉजिटिविटी हम कहते हैं ना उसका,
1: वो खुद तो बेचैन रहते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी वो बिल्कुल बर्बाद करने की कगार पे रहते हैं।
0: अगर ऐसे लोग आपके आसपास भी हैं तो आपको अपनी पॉजिटिविटी को हाई रखना है। पॉजिटिविटी को हाई कैसे रखना है कि हमें हमेशा सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स पे जोर देना है। सबसे पहले तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए, और अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है, यानी कि जो नेगेटिव होते हैं वो अपनी नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा फैलाते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा वो नेगेटिविटी हो रही है तो उस माहौल से थोड़ा सा हटने की आपको कोशिश करनी है,
1: बिल्कुल,
0: और हमेशा अपनी पॉजिटिविटी को हाई रखना है।
1: एग्जैक्टली
0: तो आइए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं। और मुझे लगता है एक जो है वो सॉन्ग जो है वो काफी देर से ये कह रहा है कि बकबक करती रहो,
1: मुझे चल जाने दो,
0: हाँ
1: मुझे सुन लो,
0: वही मैं
1: मुझे सुन लो, मैं सुन लो, मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ
0: लेकिन हम हैं कि अपनी बकबक में सुनाना ही नहीं चाहते।
1: हाँ, तो चले
0: चलते
1: ओके,
0: आइए लिसनर्स सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए। स्टेरियो

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता, यानी मैं हूँ आपकी RJ समता।
6: मैं हूँ RJ अंशिका।
5: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के बच्चों के सेक्शन के दिन। आज बहुत ही प्यारा सा दिन है क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे और उन्हें उनका कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए।
6: बिल्कुल। तो आइए अब बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जो कि है कि बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और भी ज्यादा नुकसानदेह ये तब होता है जब हमें स्टोमक इन्फेक्शन हो जाता है।
5: हाँ।
6: यानी कि आपके पेट में हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो कहते हैं हार्मफुल होती है वो यही होती है। क्योंकि पेट से ही सब कुछ है, हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा पूरा सिस्टम चलने लगता है। इसलिए जरूरी है कि कुछ हम प्रिकॉशंस करें और कुछ चीजों का ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले आता है कि क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। तो सबसे पहले जो कारण होता है वो होता है लंबे टाइम तक रखा हुआ पानी पीने से।
5: ओके।
6: लंबे टाइम
5: पुराना
6: तक,
5: पानी
6: पुराना पानी Okay. लंबे टाइम तक रखे हुए पानी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप सुबह भर करके बॉटल लेके गए स्कूल। हम बच्चों को क्या होता है, जब सुबह 8 बजे 7 बजे बच्चे निकल रहे होते हैं तो उन्हें पानी वाटर बॉटल भर के दे देते हैं कि लो बेटा पूरे दिन के लिए ये आपका हो गया। मान लीजिए वो ले गया है 7 बजे का और 2:30-3 बजे तक नॉर्मली स्कूल चलते हैं। अब उतनी देर में उसने वही पानी पिया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पानी जो हमें पीना चाहिए वो हर 2 से 3 घंटे में पानी को चेंज करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज, बॉटल को साफ करते रहना चाहिए।
5: ओके।
6: क्योंकि मान लीजिए आपने एक दिन उसी बॉटल में पानी भरा, फिर हम लाए, हमने बॉटल को मतलब पानी को निकाल दिया और बॉटल वैसे ही रख दिया, फिर अगले दिन हमने उसी बॉटल में पानी को भरा, तो इससे क्या होता है कि बॉटल में धीरे धीरे नीचे आपने देखा होगा परत जमनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जम्स हो जाते
5: हैं। और उसको मतलब मेरे हिसाब से तो रोज ही साफ करना चाहिए।
6: बिल्कुल।
5: वीकली साफ नहीं करना चाहिए, रोज साफ करना चाहिए बॉटल्स को। और बॉटल्स के अंदर जो स्टील का जो एक पैनल बना होता है अंदर, तो कहते हैं ना कि ये इंसुलेटेड है, इसमें ठंडा रहता है, पर वो भी तो किसी ऐसे धातु से बना होता है ना, जिसमें वो उतनी शक्ति होती है कि हाँ उतनी देर के लिए पानी उसमें ठंडा रहता है। तो कभी कदार तो चलो रोज तो आपने साफ करना ही करना, लेकिन वीकली क्या करना चाहिए कि उसको ब्रश से साफ करके उसको धूप की किरणें जरूर दिखानी चाहिए, ताकि जो भी कीटाणु हो वो उसमें खत्म हो जाए।
6: बिल्कुल सही बताया मैम ने आपको,
5: क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ, बच्चों की बॉटल्स के साथ भी ऐसा करती हूँ मैं, और मेरी बॉटल्स भी ऐसी होती हैं।
6: जी मैम।
5: क्योंकि कई कीटाणु होते हैं जो अंदर रह जाते हैं और फंगस हो जाता है, जिसके कारण से वही पानी हम लोग पीते हैं, हम लोग जान भी नहीं पाते हैं कि ये बॉटल के अंदर तह पर है।
6: बिल्कुल। सेकेंड आता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को स्टोमक इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए उसे नियमित ब्रश जरूर करवाना चाहिए।
5: हाँ।
6: ब्रश करवाने की आदत जरूरी है, सुबह भी करें और रात को खाने के बाद भी ब्रश कर ही सोना चाहिए।
5: बिल्कुल।
6: क्योंकि देखिए, और ब्रश भी वो वाला नहीं करना है कि 2 ब्रश इधर और 2 ब्रश उधर चला लिए बस हो गया। ब्रश करने का मतलब होता है कि कम से कम 4-5 मिनट आपको अच्छे से अपनी जीभ साफ करनी चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए और अच्छे से ब्रश करना चाहिए। वरना बच्चों का क्या होता है, 2 ब्रश इधर 2 ब्रश उधर चलाई बस हो गया, मम्मी ब्रश कर ली मैंने, हो गया। तो उससे क्या होता है कि जम्स रह जाते हैं। और जीभ को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे माना जाता है ना कि हम कभी कभी मजाक करते हैं ना कि अरे जीभ में हड्डी नहीं होती ना इसलिए फिसल जाती है।
5: हाँ।
6: आपने अक्सर सुना होगा कि हम ऐसे मजाक करते हैं, ये बिल्कुल सही है कि इसमें हड्डी नहीं होती, ये एक मांसपेशी होती है, इसलिए इसमें जम्स जल्दी हो जाते हैं, इसलिए इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। उसको क्लीन करिए और अच्छे से माउथ वॉश करके अपने हमेशा मुंह को क्लीन रखना जरूरी होता है। थर्ड आता है कि जो बच्चे जो भी खिलौने यूज करते हैं उनको साफ रखना बहुत जरूरी है।
5: हाँ।
6: कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे से जमीन पर से कोई भी खिलौना उठाया और उन्होंने मुंह में रख लिया, उन्हें उतनी सेंस नहीं होती, लेकिन आप जब भी बच्चे के लिए खिलौना खरीदें तो कभी भी हार्मफुल जो प्लास्टिक वाले होते हैं उन्हें नहीं खरीदना चाहिए,
5: जो हार्ड होती है,
6: जो हार्ड होती है। अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा हार्मफुल टॉय है, तो आपने देखा होगा कि चमड़े के आजकल बहुत सारे खिलौने आते हैं जो बहुत टाइट वाली प्लास्टिक होती है, और गलती से जब कभी जल जाती है या कुछ हो जाता है तो उसमें से स्मेल बहुत गंदी वाली आती है, ब्लैक ब्लैक बिल्कुल धुआं निकलता है। ऐसे खिलौने बच्चों को कभी नहीं देने चाहिए। ज्यादातर जहां तक हो सके आप बच्चों को टेडी बेयर दीजिए, क्योंकि टेडी बेयर में क्या होता है कि
5: सॉफ्टवेयर,
6: हाँ सॉफ्टवेयर उसमें ज्यादा
5: सॉफ्टवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना वो एक तो फॉर्म के होते हैं और वो बच्चों की स्किन पे भी कोई भी ऐसा खराब मतलब असर नहीं छोड़ते हैं।
6: बिल्कुल। अब आती है सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है बच्चों का खाना, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम क्या फोकस करते हैं कि हमें सिर्फ प्रोटीन और अच्छा खाना देना है, लेकिन जिस लंच बॉक्स में आप दे रहे हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। और सबसे मेन बात कि मैं मानती हूँ कि हम खाना बनाने में बहुत हाइजीन रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि खाने में बाल गलती से चला जाता है और शायद हमें ना पता चला हो, वो मैं अननोन में चला गया और बच्चे ने खा लिया हो। तो खाना बनाने के बाद जब आप पैक कर रहे हैं तो एक बार चेक जरूर कर लें कि उसमें बाल तो नहीं गलती से चला गया, कुछ भी चला गया हो। देखिए जब जाड़ा आता है, जैसे अब मैम अक्टूबर नवंबर के जब मौसम आएंगे तो इसमें कीड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और अगर लाइट जलती है तो वो बिल्कुल उसी के आसपास होते हैं और हम खाना तो वहीं बनाते हैं। हो सकता है एक दो चला जाए आपकी अनोन में, आपने नहीं देखा और उसमें, तो इस बातों का ध्यान रखिए। और खाने को हमेशा ढक कर रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सब्जी बनाई है तो आप उसको ढक दीजिए ढक्कन से, अगर आपने कुछ भी बनाया है तो उसको बंद करके रखना बहुत जरूरी होता है। और सेकंड आता है कि मौसम बदल रहा है, इस बदलते मौसम में सर्द और गर्म की वजह से भी पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए अगर आपके बच्चे भी दोपहर को आते हैं स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से, कहीं से भी, और आपसे तुरंत मांगते हैं कि मुझे पानी पीने के लिए चाहिए, तो उन्हें तुरंत पानी कभी नहीं देना,
5: बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
6: अगर तुरंत पानी मांग रहे हैं तो नहीं, पहले आप बैठो 10 मिनट रिलैक्स करो उसके बाद पानी पियो। और दूसरी बात, पानी कभी किसी को ऐसे रॉ नहीं देना चाहिए। रॉ देने का मतलब होता है कि आपसे किसी ने पानी मांगा और आपने एक ग्लास पानी उसको दे दिया। कभी भी हमें बच्चों को खाली पानी पीने के लिए नहीं देना चाहिए। उसके साथ आप आधी बिस्किट दे दीजिए, गुड़ दे दीजिए, कुछ नहीं है आपके पास, आप चीनी दे दीजिए आधा चम्मच, लेकिन खाली पानी नहीं। सुबह भी हमारी हैबिट होती है कि कई लोगों को मैंने देखा है सुबह उठते ही ब्रश किया और खाली पानी पी लिया।
5: और बहुत सारे बच्चों को तो मैंने देखा है खाली चाय पीते हुए।
6: जी मैम,
5: मेरे घर में क्योंकि ऐसे है ना, वो क्या करते हैं, अरे जबरदस्ती दे दो एक बिस्किट दे दो कुछ दे दो, नहीं मतलब नहीं मतलब हैबिट में ही नहीं है। पर ये सबसे गलत बात होती है कि अगर आपने खाली पेट चाय पिया, पानी पिया, ये बहुत ज्यादा आपके लिए हार्मफुल होता है आगे चलकर। अभी तो छोटी एज होती है नहीं पता चलता है, लेकिन आगे चलकर के ये बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है।
6: बिल्कुल, खाली पानी पीने से सीधा इफेक्ट हमारी किडनियों पे पड़ता है।
5: बिल्कुल,
6: बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि अरे खाली पानी तो पिया है, कुछ गलत थोड़ी ना किया। अगर आप खाली पानी पियेंगे तो इसका इफेक्ट सीधा आपकी किडनी पे जाएगा।
5: बिल्कुल,
6: और ये स्टोमक इन्फेक्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए पानी जब भी पिए तो उसके साथ कुछ ले लीजिए। मान लीजिए मीठा नहीं आपको खाना है, बहुत लोगों को होता है मुझे मीठा नहीं पसंद, कोई बात नहीं, आधा नमकीन बिस्किट ले लीजिए, पानी पी लीजिए, हो गया, पेट खाली नहीं होना चाहिए।
5: एग्जैक्टली, तो इसका निवारण भी होगा। तो निवारण तो मैं बताऊंगी।
6: बिल्कुल,
5: क्यों, ठीक है, तो अभी हम निवारण की ओर चलते हैं, लेकिन इसके पहले आइए सुन लेते हैं इस प्यारे से गाने को और उसके बाद आएंगे हम सीधे इसके निवारण को।
6: सो आइए लिसनर्स सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हमारे RJ अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, जो कि अंशिका ने अभी बताया था, क्या
7: पेट के इन्फेक्शन के कारण।
6: तो उसका निवारण है मेरे पास, कुछ घरेलू टिप्स हैं जिसको अगर हम हमेशा से अपनाएंगे तो घर में ही बच्चों का इलाज हम अच्छे से कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं बट उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो एक नियम है वो ये है कि हाइड्रेशन बनाए रखना है अपने बच्चों की बॉडी में। वो कैसे कि अगर आपके बच्चे को वोमिट हो रही है या लूज मोशंस हो रहा है तो उसमें क्या हो जाता है कि पानी की कमी हो जाती है।
7: जी मैम।
6: जिससे क्या होता है कि वो डिहाइड्रेशन हो जाता है और बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में ORS का घोल, नारियल पानी और नींबू पानी देते रहना चाहिए। समझ में आया?
7: समझ में आया।
6: अगर घर में कोई भी बच्चा है और अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो ORS का घोल बार बार देते रहना चाहिए, जिससे उसको वीकनेस ना हो। और दूसरा है कि हल्का और सुपाच्य पोषण वाला ही खाना उन्हें देना चाहिए, जिसमें इन्फेक्शन के दौरान पेट ज़्यादा दबाव में ना डले। बच्चे को खिचड़ी, दलिया, केला और दही चावल जैसे आसानी से पचने वाले आहार ही देना चाहिए। ज़्यादा तली भुनी और भारी चीज़ें बिल्कुल भी बच्चों को ना दें, क्योंकि वैसे ही क्या होता है कि लूज मोशन में बॉडी जो होती है ना वो हल्की हो जाती है। तो उसमें अगर ज़्यादा तला भुना, और मुझे लगता है कि अगर भूख नहीं लग रही है ना तो मतलब ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए।
7: जी मैम।
6: दूसरा है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हैंड वॉश करने की आदत बच्चों में डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हैंड वॉश नहीं करेंगे तो उसी से बैक्टीरिया हमारे मुंह के द्वारा हमारे पेट में चले जाते हैं, जिसके कारण से बच्चों को ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो बच्चों को सिखाएं कि खाना खाने से पहले, बाहर से खेलकर आने के बाद, टॉयलेट का उपयोग करने के बाद हाथों को साबुन से कम 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरीके से साफ करके धोएं।
7: ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जिस तरह बच्चे ब्रश नहीं करते हैं ना मैम, उसी तरह जल्दी जल्दी हाथ भी धोते हैं। मतलब हाँ। 20 सेकंड हम क्या कहें, 2 सेकंड में हो जाता है। हाँ मम्मी, मैंने हैंड वॉश कर लिया, लो मुझे लंच दे दो।
6: हाँ, खाना दे दो, हम लोग खा ले। एंड साफ पानी और ताज़ा पानी बच्चों को हमेशा फिल्टर किया हुआ पानी उबाल कर ठंडा करके ही पिलाएं, और खाना हमेशा ढककर रखें, क्योंकि ताज़ा बना हुआ ही खाना बच्चों को हमेशा से खिलाना चाहिए। खिलौनों और घर की सफाई भी करनी चाहिए, ताकि बच्चों को उससे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना ज़्यादा फैले मुंह के द्वारा, हाथ के द्वारा मुंह से और मुंह के द्वारा पेट में।
7: बिल्कुल। तो ये थी कुछ प्रिकॉशंस जो कि अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से कहीं ना कहीं अगर बच्चों को पेट के इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो आपको क्या कुछ प्रिकॉशन करने की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब बात इससे कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिन पर कि सबसे पहले हम हमेशा ये तो ध्यान रखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, लेकिन कैसे बन रहा है इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे बन रहा है, मतलब होता है कि आप जिस भी कंटेनर में या घर में जिनों भी बर्तन में बनाते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी वॉश करना ज़रूरी होता है। वॉश तो हम डेली करते ही हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि जिन भी घरों में छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो बर्तन में आप खाना बना रहे हैं, जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं प्लेट्स वगैरह, उन्हें गर्म पानी से धोना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो गर्म पानी से ही जाते हैं। जैसे क्या होता है कि जब कोई बर्तन होता है जो हमने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया होता है और तब हम यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं ना, अरे गर्म पानी से उसको साफ कर देना, काफ़ी टाइम से वैसे ही रखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर बच्चे वो प्लेट कटोरी या यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको ज़रूर गर्म पानी से साफ करना चाहिए।
6: बिल्कुल। तो चैट बॉक्स में आते हैं जो कि आई हैं आशु जी एंड धर्मेंद्र जी एंड बाकी लिसनर्स हमारे जो फीमेल लिसनर्स हैं वो भी पता नहीं कहाँ हैं, तो जल्दी से सभी लोग आ जाया करें, क्योंकि ना हम हर एक चीज़ हर एक टॉपिक को बड़े ही उम्मीद से लेकर के आते हैं। आई मीन जब भी हम लोग ना बहुत काम करते हैं आप तक सही और सही न्यूज़ पहुंचाने के लिए, तो हर किसी की उम्मीद होती है ना कि जब हम शो कर रहे हों और सभी लिसनर्स आ रहे हों तो अच्छा लगता है। तो हमारे पुराने लिसनर्स भी जल्दी जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आज समता जी नमस्ते एंड आज अंशिका जी नमस्ते, नमस्ते धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप एंड शुभ दोपहरिया आशु जी।
7: तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं, बस यूँ गए और यूँ आए। स्टे ट्यून।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। गई आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता,
2: मैं हूँ आरजे अंशिका।
1: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा होने वाला है क्या।
2: नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि हम आपको बताएंगे कि जैसे कि हमारा पेट्स का दिन भी होता है आज, तो पेट्स के लिए बताते हैं कि पेट्स में आजकल क्या हो रहा है मैम, स्पेशली डॉग्स में फीवर बहुत हो रहा है, तो आज उसको लेकर के हम बताएंगे कि इसे कहते क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता।
1: अच्छा
2: है।
1: जैसे पेट्स में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब उसके कारण से, है ना?
2: जी मैम। तो पेट्स में इसे कहा जाता है क्रॉनिक परवो वायरस। क्रॉनिक परवो वायरस का मतलब होता है कि उसमें उन्हें सिर्फ फीवर होता है, फीवर बहुत ज्यादा भी कई बार हो जाता है। तो आइए बताते हैं कि इसके क्या क्या कारण है। तो इसका सबसे पहला कारण जो है वो ये होता है कि बहुत टाइम तक इग्नोर करना। बहुत टाइम तक इग्नोर करने का मतलब होता है कि जैसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मान लीजिए उन्हें बुखार हो रहा था और आपने उन्हें इग्नोर किया, ये सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डॉग्स में। दूसरा कारण होता है कि हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि अरे डॉग्स में बहुत गर्मी होती है, उन्हें बहुत गर्मी लगती है।
1: हाँ, क्योंकि पता है क्यों होता है?
2: क्यों होता है?
1: हमारे पास तो वो है भी
2: ब्लैकी
1: है, पर हम लोगों ने भी कभी बहुत सारे पेट्स को पाला हुआ है, तो उसके ऊपर जो रोए होते हैं ना, बाल रोए होते हैं, उसके कारण से उसकी बॉडी में बहुत गर्मी होती है।
2: राइट। और यही कहीं ना कहीं हमें इसकी जो अभी हमने आपको डिसीज बताई क्रॉनिक परवो वायरस, ये इसी कारण से हो भी जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इसमें रहते हैं कि अरे नहीं नहीं उन्हें तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है।
1: हाँ।
2: इसलिए कई बार आप अपने पेट को एसी में जब वो सोता होगा रात को, तो आप उसे ऐसे बिना कंबल या बिना चद्दर के आप उसे सोने देते होंगे। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण होता है क्रॉनिक परवो वायरस यानी कि तेज फीवर का। कितनी भी गर्मी हो लेकिन जब भी आप उन्हें एसी दे रहे हैं या ऐसे ठंडा, जैसे एसी बहुत देर तक आपने चलाया और आपका कमरा जो है वो ठंडा हो चुका है और अगर उसमें वो रात को सो रहे हैं, तो आप हल्की वाली जो एक चद्दर आती है वो दे दीजिए या कंबल दे दीजिए। रात में अचानक अगर वो कांपने लग रहा है, कई बार फीवर की वजह से क्या होता है कि डॉग जो होते हैं स्पेशली वो रात को कांपने लगते हैं, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आप देख रहे हैं, तो आपको उन्हें तुरंत से कंबल उन पे डालना होगा। और तीसरी चीज ये आती है कि कभी भी जमीन में नहीं सोने देना चाहिए,
1: खाली जमीन पे। हाँ। उनके अलग से भी आते हैं अंशिका, बिस्तर आते हैं।
2: जी मैम।
1: तो या तो आप उनके लिए वार्म कोई भी मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज खाली जमीन का मतलब है कि नीचे कुछ ना कुछ बिछा होना चाहिए। और अब तो अंशिका मतलब इतने सारे जो पेट्स लोग मतलब अपने घर में रखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों से भी ज्यादा उनकी केयर होती है, उनके लिए छोटा सा रूम बना देते हैं। अगर रूम नहीं होता है तो एक पूरा ऐसे बास्केट टाइप में आता है, वो कहते हैं कर लेते, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है। मतलब अब पेट्स की देखभाल बहुत ज्यादा होती है, मैंने देखा
2: है। काम मैम ने। अब मैं आपको अपने लिए मतलब अपने घर का बताती हूँ कि हमारे पास जो है डॉग भाई, उनके लिए तो ये होता है कि हमने उनके लिए कौन सा मतलब रखा हुआ है, जो मैम आजकल आता नहीं है प्लास्टिक वाला।
1: हाँ।
2: जिसमें कि एयर भरी होती है, आप उसको एयर भर दीजिए।
1: हाँ,
2: तो वो बड़ा सा एक
1: बलून टाइप में
2: बेड बन के तैयार। हाँ। हो जाता है, तो हम लोग उसके लिए वो लेकर के आते हैं।
1: तो वो नाखूनों से तोड़ नहीं फाड़ नहीं देता है,
2: वही मैं कहने जा रही थी कि हर एक महीने या दो महीने बाद वो उसको फोड़ देते हैं,
1: क्योंकि जहाँ उसके नाखून लगे उसमें से हवा निकल जाएगी, खराब हो जाएगा,
2: और हर दो महीने बाद हमें।
1: तो ऐसा ही क्यों लेना फिर, जब दो महीने एक महीने में खराबी होना है, तो इससे अच्छा कि कुछ परमानेंट, जब मतलब जिनके घर में परमानेंट अगर हैं डॉग्स हैं पेट्स हैं, तो उनके लिए लकड़ी का एक बारी बनवा लो ऐसे चबूतरे टाइप में गोल गोल, और उस पे आपने कुछ भी मतलब जैसे कपड़ा दे देना है, या पुराने जो बिस्तर होते हैं वो आप बिछा दो, जिनको जो आपके यूज के नहीं होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, मतलब बिल्कुल खराब भी नहीं, तो कुछ ऐसे भी। लेकिन आजकल तो जो लोग पेट्स रख रहे हैं

0: फीवर था रात को बहुत ज्यादा, इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक भी लिया कि कल बहुत ज्यादा उसको एक्चुअली
1: मौसम जब मतलब हम लोगों के लिए भी तो मौसम ऐसा ही है ना, अगर आप थोड़ी देर भी एसी चला रहे हैं और भूल जा रहे हैं बंद करना, कल रात में यही हुआ, मतलब हमने टाइमर नहीं लगाया था रिमोट पे, तो क्या हो गया कि वो सुबह तक चलती रही एसी और पता नहीं चला, मतलब जैसे फिर सुबह उठे तो थोड़ी सी हरारत लग रही थी बॉडी में, बट ये है कि ना कि मतलब बॉडी ठंडी होने से बेटर है कि थोड़ी वार्म रहे, वो सही रहता है।
0: बिल्कुल। तो कल रात को फीवर था, तो कल रात तो बहुत ज्यादा परेशान था, फिर ले गए डॉक्टर को दिखाया, दवाई हुई, मतलब इंजेक्शंस भी लगे, तो आज मतलब फिट हो गया, अच्छा हो गया, आज चलने लगा। तो आज सुबह सुबह क्या किया उन्होंने कि सुबह सुबह पापा की शर्ट अच्छी सी आयन की हुई, बिल्कुल अच्छी रखी हुई थी, उनको कहीं बाहर जाना था, उधर से घूम करके आया, बेड पर से उनकी शर्ट उठा के लेकर चला गया, आयन की हुई, सोचिए आप, साफ मैंने जो है शर्ट रखी थी रेडी करके कि अभी वॉशरूम से आएंगे तो पापा पहन के जाएंगे, लेकर चला गया।
1: फिर
0: क्या, फिर कुछ नहीं, फिर दूसरी शर्ट आयन की,
1: मारा नहीं
0: उसको, हम लोग मार सकते हैं मैम,
1: हाँ,
0: पता लगेगा कल दांत के कम से कम 4 निशान मेरे होंगे और आप कहेंगे अंशिका कहाँ है, पता लगा आरजे अंशिका कहाँ है, इंजेक्शन लगा।
1: ओह माय गॉड,
0: अरे बहुत परेशान।
1: अच्छा, गुस्सा तो आता होगा ना,
0: गुस्सा तो आता है ना, लेकिन फिर जब कोई सामान लेकर के चला जाता है और जब मांग मतलब वापस जाओ लेने के लिए कि ब्लैक आप लेकर के आओ ना ला दो, तो कैसे करता है, मतलब भौंकता है, कहता है नहीं दूंगा। उसके सेंस में क्या होता है कि मैं कोई चीज लेके भागूं और ये मेरे पीछे भागे,
1: पीछे भागे
0: मेरे साथ खेले। और फिर मुझसे उसको चीन करके तब लेकर।
1: ओह आई सी,
0: ये उनका माइंडसेट होता है।
1: ओके
0: और ऐसा कभी बहुत कम ही होता है
1: ओके
0: कि हम लोग पीछे भागते हैं, हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद खुद ब खुद छोड़ देगा।
1: ओके,
0: उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट और है, फाड़ता नहीं है कोई चीज, मतलब उसको गंदी नहीं करता है, बहुत प्यार से ले जाता है, रखे रहता है। तो ऐसे शैतानियां भी करता है। खैर, फीवर पे बात हो रही थी और कहाँ पहुंच गए। तो ये सारी चीजें होती है, इनका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि टॉक्सिन्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। टॉक्सिन्स का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पेट्स होते हैं, स्पेशली डॉग्स होते हैं, वो कई बार जैसे चूहे पकड़ने की कोशिश करते हैं, छिपकली दिख जाती है अगर नीचे जमीन पर चलती हुई, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, कई सारे कीड़े जो चला करते हैं आपके फर्श पर, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कई बार मुंह में भी डाल लेते हैं। तो अगर आपके डॉग्स भी ऐसा करते हैं तो इसका बहुत ध्यान रखना है। इसलिए मैम हम लोग घर में मतलब जो फर्श साफ करते हैं तो हम लोग हमेशा फिनाइल या लाइजॉल से साफ करते हैं।
1: ओके,
0: क्योंकि फिनाइल या लाइजॉल की स्मेल अगर आपके फर्श पे होगी तो कभी कीड़े नहीं आएंगे, कभी छिपकली नहीं।
1: पेट्स के लिए भी अच्छा हो जाता है ना, फिर घर में अगर पेट्स हैं तो उसके लिए भी अच्छा हो जाता है।
0: इसलिए ऐसे कुछ प्रिकॉशंस आप करें ताकि वो जो कारण है उसकी वजह से उनको फीवर ना हो। और एक बात और बता देना चाहूंगी कि अगर फीवर हो जाता है इन केस बहुत ज्यादा, तो उसके लिए तुरंत इंजेक्शन लगवाएं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और पूरे प्रिकॉशंस करें। ये नहीं कि अरे कोई बात नहीं, हल्का सा फीवर है, उतर जाएगा, चलो रहने दो। क्योंकि क्या होता है, पेट्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम एक बार अपने ऊपर ले लेते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, अभी बुखार है, सुबह दिखा लेंगे, लेकिन वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए उन्हें दिखाना जरूरी होता है। तो उन्हें दिखाएं और उनकी पूरी केयर करें, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य की तरह ही होते हैं।
1: एग्जैक्टली। तो पेट्स की जानकारी अगर हो गई हो तो मैंने एक बहुत ही प्यारा सा गाना लगाया है, तो आई थिंक हम उसको सुन लें और डेडिकेट टू समवन स्पेशल एंड एवरीवन समवन स्पेशल डेडिकेट, मतलब जितने लोग भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं ना, उन सभी को मैं कहती हूँ कि आप लोग ये सॉन्ग जो है ये आप डेडिकेट कर सकते हैं किसी को भी आप अपने समवन स्पेशल को। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता,
4: मैं हूँ आरजे अंशिका।
3: तो भाई जल्दी से शुरू करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेक्शन की ओर, जो कि आज है हमारे बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का। तो नन्हे मुन्ने बच्चों को के लिए, जैसे कहता है ना, जब वो सोते हैं और दादी नानी के पास जब जाते हैं, स्पेशली मम्मी के पास भी, बुआ के पास भी, क्या होता है कि वो लोग क्या कहते हैं कि हमें ना एक प्यारी सी एक स्टोरी सुना दो। ऐसा होता है ना,
4: बिल्कुल
3: कई बार होता है कि हमें ना स्टोरी सुननी है, और जैसे लगता है कि उनको नींद ही वो स्टोरी सुन करके आती है। तो टाइम हो चला है यहाँ पे भी एक प्यारी सी नन्ही सी स्टोरी सुनने का। तो आइए सुनते हैं आज की मॉरल स्टोरी।
4: आज की हमारी जो मॉरल स्टोरी है लिसनर्स, वो है अर्जुन की। आज मैं आपको अर्जुन की लाइफ से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाऊंगी, जो हमने हमारे बच्चों को शायद कई बार पहले भी सुनाई होगी। एक बार गुरु द्रोण जो थे, वो अपने शिष्य कौरव और पांडव दोनों को धनुर्विद्या सिखाते थे।
3: ओके।
4: उन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना परीक्षा ली जाए और परीक्षा के थ्रू देखा जाए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। उन्होंने परीक्षा लेने की ठानी और एक पेड़ की डाल पर लकड़ी की एक चिड़िया को उन्होंने रख दिया।
3: अच्छा।
4: और सभी राजकुमारों से कहा कि बारी बारी से तुम्हें इसकी आँख पर निशाना लगाना है, यानी कि इसकी आँख को भेदना है। सभी तैयार हो गए कि बस ये तो चुटकियों का काम है और मैं बस यूं कर लूंगा। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, सभी ने कोशिश की। ठीक इसी तरह कौरवों ने भी कोशिश की, जिसमें कि दुर्योधन थे और दुशासन थे, उन्होंने भी कोशिश करने की सोची। लेकिन जब उन्होंने गुरुदेव से कहा कि, जब उन्होंने बाण उठाया तो उनके गुरुदेव ने उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने सभी से पूछा कि ये बताओ तुम्हें क्या नजर आता है। किसी ने कहा मुझे पेड़ नजर आता है, किसी ने कहा मुझे सरोवर नजर आता है, किसी ने कहा मुझे चिड़िया नजर आती है। सभी ने अपने अपने जवाब दिए। गुरु द्रोण ने किसी को बाण नहीं चलाने दिया। अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन ये बताओ कि तुम्हें क्या नजर आता है। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है। तो गुरु द्रोण ने कहा कि ठीक है, अब तुम बाण चलाओ। जब अर्जुन ने बाण चलाया तो उस बाण ने सीधा मछली की आंख को भेद दिया। भेदने का मतलब है कि सीधा निशाना जो था वो मछली की आंख पर जा लगा, और इसी वजह से अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है।
3: हमेशा से ये आपने सुना होगा कि अगर धनुर्विद्या आपको आती भी है ना, लेकिन अर्जुन के तरीके से आना चाहिए, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति इतने ज़्यादा मतलब सजग और अडिग रहते थे कि कई बार तो उन्होंने जैसे नहीं वो शब्द भेदी बाण, और जैसे कि ध्वनि पे सुन करके बाणों की भी उन्होंने अपने उसमें शिक्षा ली हुई थी।
4: जब ये सब हो गया और जब राजकुमार जो थे सभी वो दोबारा जब गए, तो उन्होंने गुरु द्रोण ने कहा जाओ विश्राम करो। तो सब अपने अपने कमरे में विश्राम करने के लिए चले गए। वहाँ युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन ये बताओ, हम सबको तो बाकी चीजें भी नजर आ रही थी, तुम्हें सिर्फ मछली की आंख क्यों नजर आई? तो अर्जुन ने उसका जवाब दिया कि जब भी आपको आपका कोई भी लक्ष्य भेदना हो तो हमें आसपास कोई चीज नहीं दिखाई देती, सिर्फ हमारा लक्ष्य
3: भेद होना चाहिए।
4: यही आज हमारे बच्चों के लिए भी हमारा कहना है कि जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमें सुन रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा आपका जो गोल है, जो आप बचपन से अचीव करना चाहते हैं, छोटे छोटे कदमों से सिर्फ उसकी तरफ बढ़े और अपना पूरा पूरा ध्यान सिर्फ उसी की तरफ रखें,
3: बिल्कुल
4: बाकी किसी चीज पर नहीं। जिस तरह अर्जुन का ध्यान नदी पे नहीं था, पेड़ पे नहीं था, चिड़िया कैसी दिखती है इस पर भी नहीं था, सिर्फ चिड़िया की आंख पर था, ठीक उसी तरह हमारा ध्यान कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, वो क्या बोलते हैं, ये सब किसी पर भी नहीं, बस आपके गोल पर। क्योंकि जिस दिन आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे और कुछ बन जाएंगे, ठीक उस दिन अर्जुन की तरह आपका भी नाम होगा। और तब लोग ये याद नहीं रखेंगे कि इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, तब लोग ये याद रखेंगे कि देखो आज वो ये बन गया है, इस पोस्ट पे है, या ये बन गई है आज इस पोस्ट पर है। क्योंकि हम अर्जुन को याद रखते हैं, ना कि हम ये याद रखते हैं कि उसमें पेड़ भी था, उसमें झरने भी थे।
3: बिल्कुल, वो अपने लक्ष्य को केंद्रित करने के लिए ही, लक्ष्य पर ही हर किसी के नहीं। और पता है महेंद्र जी ने एक और चीज लिखी है कि लक्ष्य पर केंद्रित होना अपने जीवन में हमेशा से काम आता है।
4: बिल्कुल। तो आज का ये हमारे एक प्यारा सा मैसेज था हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों के लिए भी, और उनके लिए भी जो कि थोड़ा सा अपने गोल को लेकर के कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं।
3: बिल्कुल, तो डीमोटिवेट नहीं होना है और अपने लक्ष्य को हमेशा से धारण करके रखना है, और खास करके स्टूडेंट्स के लिए। जब बच्चों एग्जाम्स होते हैं तो हम लोग भटक जाते हैं, अभी टेंथ और ट्वेल्थ के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान जो है ना वो भटकने लगता है कि हम इस साइड जाएं कि उस साइड जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो एग्जाम्स को पहले आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, पहले आप एग्जाम्स तो क्लियर करो, उसके बाद आपने सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। क्यों अंशिका?
4: बिल्कुल सही मैम। कभी भी एक, जैसे कहते हैं ना, एक साथ दो नाव पे मत चलो। ठीक उसी तरह अपने ध्यान को एक साथ चार चीजों में नहीं लगाना चाहिए।
3: और इसी तरीके से अगर आप अपने लक्ष्य को हमेशा से धारण करते रहेंगे, लक्ष्य की ओर ही हमारी आंखें रहेंगी, हमारा मोटिव रहेगा, हमारे जितने भी काम हैं वो एक तरफ, लेकिन जैसे अभी अंशिका ने बताया ना कि आखिर उनसे जब पूछा गया कि आपका ध्यान कहीं और केंद्रित क्यों नहीं हुआ, मतलब उधर ही क्यों था, तो उन्होंने देखो अर्जुन ने कितनी अच्छी बात बोली कि वो इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान जो था वो केवल और केवल लक्ष्य को पाना था। तो ऐसे ही हर किसी का गोल होता है, मेरा भी कोई लक्ष्य है, अंशिका का भी कोई लक्ष्य है, तो लक्ष्य पाना चाहिए और लक्ष्य की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए
4: और जाना भी चाहिए।
3: तो फिलहाल पाने के लिए
4: हमें जाना है।
3: हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
4: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में? क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। घड़ी में वक्त हो चला है 3:06 बाद स्टूडियो क्लॉक, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर्शुनती, मौजूद हूं आप सभी के साथ। चल रहा है प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा, यानी कि आपके फरमाइशो वाला कार्यक्रम, आपके फरमाइशो वाला शो, डिमांडेड प्रोग्राम, जिसमें आप करते हैं डिमांड ऑन कॉल करके, वो भी 6393316429 पर, यानी कि 6393316429 पर आप कॉल करके अपनी फरमाइशें, अपने डेडिकेटेड सॉन्ग्स और अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। फिलहाल आइए चलते हैं, ट्यून करते हैं हमारी पहली फरमाइश को, और पहली फरमाइश बेहद ही रोमांटिक गाने की फरमाइश आ चुकी है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। आप इंजॉय करने जा रहे हैं समरीन जी की फरमाइश, ये तूने क्या किया। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। जावेद बशीर हैं भैया इसके सिंगर, और रजत अरोरा ने लिखा है बोल, प्रीतम का संगीत। इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहिए, इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ये है 3 से 4 कॉल ट्यून गोंडा विद राशि नती।

जावेद बशीर के वास में आप एंजॉय कर रहे थे रजत अरोरा का लिखा हुआ गाना और प्रीतम का संगीत था। समरीन जी की फरमाइश थी ये तूने क्या किया, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दोबारा आप एंजॉय कर रहे थे। और आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, आपके अपने वाले चैट बॉक्स में जो कि आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन आपको मिलता है ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर रेडियो 89.6 एफएम के नाम से। तो भैया हमारे साथ जो आज सबसे पहले मैसेज आया था वो आया था सुरेंद्र जी का, और आपका स्वागत करते हैं। इसके बाद मोहम्मद मुसीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डियर आरजे, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। कॉलर ट्यून गोडा में नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लिखा है गुड आफ्टरनून अति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप? आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। कॉलर ट्यून गोडा में गुलाबशाह सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवाज विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, एंड गुलाबशाह जी ने लिखा है एंट्री मारी नती मैम, मजा आ गया। अरे वाह क्या बात है, अभी से मजा आ गया, चलिए आगे आपके मजे को बरकरार रखेंगे। एंड मोहम्मद मुसीफ जी दोबारा से लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डियर आरजे नती जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिंदास हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून टू यू। महेंद्र दीपन फ्रॉम राजस्थान लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया, नमस्ते आरजे मैम जी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? एंड शुभ दोपहरिया, नमस्ते, आपका भी वेलकम करते हैं। कॉलर ट्यून गोना में गुलाबशाह जी ने लिखा है हम इंतज़ार नहीं करते क्योंकि हमें इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। आज थोड़ा बहुत इंतज़ार तो करना बनता है क्योंकि दोपहर के 3 बजे ही तो हम आते हैं, उससे पहले तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है ना। बाबू अंसारी जी लिख रहे हैं उन्नति मैम जी कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और मैम शुरुआत में जब आप अपना नाम बताती हैं तो हम इतना फास्ट बोलो तो हमें लगता है कि हमने सिर्फ ती ही सुना है, यानी कि उन्नति नहीं सुना है। एक्चुअली मेरा उन्नति में से उन गायब हो जाता है, एक्चुअल ऐसा होता है और ये बात किसी तक पहुंच नहीं पाती। फिलहाल के लिए मैं बहुत ही आराम से बता देती हूँ कि मेरा नाम है उन्नति, यानी कि आपकी अपनी आरजे उन्नति। एंड इसके बाद आप लोगों के लगातार मैसेजेस हैं। विकास तिवारी फ्रॉम उन्नाव लिख रहे हैं हेलो आरजे बरेली वाली मैम, नमस्कार, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हेलो। इसके बाद धर्मेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, हेलो नती मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अमित जी लिख रहे हैं मैम कैन यू रिपीट द कॉलर ट्यून नंबर, ऑफ कोर्स, और ये है 6393316429, यानी कि 6393316429। इस पर कॉल करके आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर जो कि हमारे पास आई है लखनऊ से, सुनना चाहते हैं हमारे मोहन लाल जी, तो उनकी फरमाइश को इंजॉय कीजिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पर। थोड़ा सा पुराना गाना है लेकिन हम आपको बता दें आवाज़ है सुरेश वाडकर और अलका जी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, कहाँ लाया मेरा यार। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, अग्नि फिल्म से मंदाकिनी और चंकी पांडे पर फिल्माया गया गाना।

और आप सुन रहे थे लखनऊ से आई फरमाइश हमारे मोहन लाल जी की, सुरेश भाटकर और अलका जी की आवाज़ में। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है बाबू अंसारी जी का और वो सुनना चाहते हैं मन की लगन। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार। तब तक के लिए आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा गोंडा के अपने एफएम रेडियो ज्ञानस 89.6 एफएम पर।

और इस बेहतरीन से नगमे को लिखा था अमजाद असलाम। अमजाद ने शाही ने दिया था संगीत। राहत फतेह अली खान की आवाज़ में आप इंजॉय कर रहे थे, बेहद ही राहत देने वाला गाना था बाबू अंसारी जी की फरमाइश पर। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर, जो कि हमारे देवी प्रसाद जी की फरमाइश है। एंड गाने का नाम है दिल में तुझे बिठा के कर लूँ मैं बंद आँखें। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लता जी की आवाज़ है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और आप इंजॉय कर रहे हैं रविंद्र जैन का लिखा हुआ गीत।

ये बेहतरीन सी फरमाइश थी हमारे देवी प्रसाद जी की। एंड अगली फरमाइश की ओर चलने से पहले अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपका स्वागत करते हैं। हेलो आशुनीति मैम, कैसी हैं आप? शुभ दोपहर या सभी को। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, क्या आपकी तबीयत अब ठीक है? सोनिया तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हाय एवरीवन, हेलो नदी मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। एंड विकास जी लिख रहे हैं कि मैम जी अगर आपके पास ज़्यादा फरमाइश हो तो हम कॉल नहीं करेंगे। ओके, सबके गाने एंजॉय करेंगे, बेशक आप एंजॉय करते रहिए। और अगर आपने फरमाइश कर भी दी है तो वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम आपके गाने को ज़रूर से प्ले करेंगे। एंड जिंदगी एक रेडियो की तरह है जिसमें जो आ रहा है उसका आनंद लीजिए, खुश रहिए, ना कि अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। वेल, ये बात तो है भैया कि जिंदगी और रेडियो ना कहीं आपस में जुड़ता बहुत है। आपको उसी पे वाइब करना पड़ता है जो चल रहा हो। हम स्किप नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। जो गाना बज रहा है उसे पूरा सुनना ही पड़ेगा। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे पास है मोहम्मद मुसीफ जी की, तो जरा उनके नगमे को भी इंजॉय कर लेते हैं और इसके बाद हम मिलते हैं लेकर के हमारी गुलाब शाह सिद्दीकी की फरमाइश।

और ये फरमाइश थी हमारे मोहम्मद मुसीब जी की, आप एंजॉय कर रहे थे एक याद के सहारे इम्तिहान फिल्म से। सैफ अली खान और रवीना टंडन पर फिल्म आया गया गाना विनोद राठौड़ की आवाज में। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास है गुलाबशाह सिद्दीकी जी की, और ये गाना डेडिकेट किया है उन्होंने हमारे बहुत सारे लिसनर्स इंक्लूडिंग मी, यानी कि उन्नति मैम, अरविंद जी, महेंद्र जी, अनु पांडे एंड रोशनी रावत के लिए ये गाना डेडिकेट किया गया है। तो आप एंजॉय करते रहिए, मैं तो हूँ पागल मुंडा तू है मेरी सोनकुड़ी, विनोद राठौड़ अलका जी की आवाज़ में, श्रीदेवी और शाहरुख खान पर फिल्माया गया गाना।

और ये फरमाइश थी हमारे गुलाब शाह जी की, आपने एंजॉय किया है। एंड चार बॉक्स में हमारे साथ अंबुज पांडे जी जुड़ गए हैं। शुभ दोपहरिया मैम, शुभ दोपहरिया आपको भी। बाबू अंसारी जी ने तारीफ लिखते हुए कहा है कि आज तो सारे लिसनर्स की पसंद जबरदस्त है उन्नति मैम जी। हाँ वैसे ये बात तो सच है, आजकल हमारे लिसनर्स की पसंद बहुत ही कमाल की होती जा रही है। एंड मैम आपकी एक रील देखा है, कृपया उसे ऑन ईयर बोल दो। वो कितने ऐड आएंगे जी। नहीं ये चीज़ तो सिर्फ हमारे प्रीमियम सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए ही थी, इसको ऑन ईयर बोलेंगे तो अभी नहीं अब भी नहीं, फिलहाल के इंतजार कीजिए आप, क्या पता जिस दिन मेरा मूड होगा उस दिन बोल दें। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास है रिजू जी की फरमाइश फिर मोहब्बत, तो सुनते रहिए, बढ़िया सा रिमिक्स वर्जन है फिर मोहब्बत। और हम मिलेंगे इस गाने के अगले गाने की तरफ, यानी कि अगली फरमाइश की तरफ, जो कि भाई सबिया जी की, कमल नयन जी की और सुरेंद्र यादव जी की होने वाली है।

और भैया जरा दिल को संभाल लीजिए, क्योंकि आपका दिल कहीं ना कहीं फिर से मोहब्बत करने जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा अरिजीत सिंह कह रहे थे भैया। और गुलफशा जी लिख रही हैं, हाँ मैम प्लीज, अरे अरे अरे अरे थामा थामा सबर रखो तने। एंड सही, बहुत मजा आया था, हमने 2-3 बार वो रील देखी थी। आय हाय हाय, क्या बात है क्या बात है। अरिबा शेख हमारे साथ जुड़ गई हैं और आपका भी स्वागत करते हैं। हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं न्यू हूँ, मुझे भी सुना दो प्लीज मेरा सॉन्ग है, अच्छा लगता है, जानू फिर से खो जाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज। अजी बजा देंगे बजा देंगे, बस आप जरा कॉल कीजिए 6393316429 पर, क्योंकि आप नहीं हैं तो आपका गाना जल्दी बज जाएगा, लेकिन आपको कॉल तो करना पड़ेगा जैसे कि हमारे रूल्स कहते हैं। और आइए एंजॉय करते हैं हमारे अगले गाने को। अगला सॉन्ग है हमारे पास आफरीन आफरीन, यानी गैस किसका हो सकता है, वैसे आपको नहीं पता तो बता दें कि सबिया जी की फरमाइश हमारे पास आ चुकी है। तो आइए एंजॉय करते हैं मिल करके, मिलते इस गाने के उस पार अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए मैं चाहूंगी हमारी अरिबा जी हमें कॉल कर दे 6393316429 पर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉल ट्यून गोंडा विद राजू नती।

भैया वक्त को मद्देनजर रखते हुए और फरमाइशों को देखते हुए गाने बीच में रोकने पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रील बना रहे हैं। फिलहाल तो फ्राइडे को इसी 2 घंटा हम प्ले करते हैं आपके साथ, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें की जाती हैं। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है कमल नैन जी की फरमाइश पर, तो एंजॉय करते रहिए, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार। हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और आप सुन रहे थे हमारे कमल नयन जी की फरमाइश। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मिलते हैं इस गाने के उस पार ले करके हमारी अगली फरमाइश को, जो कि ऑफ कोर्स किसी और की नहीं, धर्मेंद्र मोहन जी की है, रईस जी की, धर्मेश त्रिपाठी जी की, दीपांशु जी की है, रिंकू जी की है, राजू सलमानी जी की, सोनिया तिवारी, अरविंद जी शिवनगर से, श्रीनगर से, महेंद्र जी, अरमान जी, अरीबा जी, हमें जियो। माय गॉड, अभी तो बहुत सारी फरमाइशें हैं मेरे पास और टाइम भी बहुत कम है।

एंड ये फरमाइश थी हमारे सुरेंद्र यादव जी की। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और हमारे साथ जुड़ी है एक और नई लिस्नर अरिबा जी, तो आइए उनके गाने को प्ले करते हैं। एंड ये गाना अरिबा जी और दीपांशी की फरमाइश पर है, पालिया है प्यार तेरा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के हमारी अगली फरमाइश जो कि धर्मेंद्र मोहन जी की होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड।

हां जी, और ये फरमाइश थी हमारे अरीबा जी की दीपांशु तिवारी जी की। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने पर, अमिताभ बच्चन के साथ करने के लिए स्टार्ट हो जाइए मेरी मखना मेरी सोनिए। और फरमाइश हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की, अगली फरमाइश हमारे अमित जी की होने वाली है, बिकॉज ये हमारे नए लिसनर है। आइए स्वागत करते हैं आपका भी ज्ञानस्थली फैमिली में, आपका वेलकम है।

0: अब है तू।
1: हां जी, और ये फरमाइश थी हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की एनएसी के साथ। आइए बढ़ते हैं अगले गाने को एंजॉय करते हैं। तनु वेट्स मनु से आप एंजॉय करने चाह रहे हैं यूं ही। अमित जी की फरमाइश पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार जो कि होने वाला है मेरे ब्रदर की दुल्हन, क्योंकि ये गाना है हमारी रईस साहब की फरमाइश पर।

और ये थी फरमाइश हमारे अमित जी की, एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं नागेश्वर धाकर जी, आपका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार, ऐसे ही आपने बोला था ना क्योंकि आपकी इमोजीज कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है। जरा सा झूम लूं मैं, बेशक झूमिया, हमने कहा आपको रोका हुआ है, और आइए एंजॉय करते हैं हमारे रईस साहब की फरमाइश, मेरे ब्रदर की दुल्हन, एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर की अगली फरमाइश को। अगली फरमाइश जो है वो हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी की, दीपांशी जी की और रिंकू शास्त्री जी की।

केके की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे रईस साहब की फरमाइश, मेरे ब्रदर की दुल्हन का टाइटल ट्रैक, एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग आप एंजॉय करने जा रहे हैं प्रेम रोग से सुरेश वाडकर और लता जी की आवाज में, भवरे ने खिलाया फूल फूल वो ले गया राजकंवर, और ये गाने की फरमाइश हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी की तरफ से।

और इतना खूबसूरत नगमा बीच में रोकने के लिए मैं माजरत चाहेंगे मैं आपसे, लेकिन घड़ी ने इशारा कर दिया है कि भैया स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो फरमाइशें अधूरी रह जाएंगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास है रिंकू शास्त्री जी का, और ये गाना है मैं प्यार तुमसे करता हूँ। एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे कॉल ट्यून गोना, एंड सऊदी से हमारे साथ जुड़ गए हैं मुस्तफ़ा जी, आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड रोशनी रावत फ्रॉम उन्नाव लिख रही हैं गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्यारी नती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। और मतलब सिर्फ आरजे मैम ही प्यारी है, हम सब दुश्मन है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत प्यारे हैं। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर जो कि हमारे राजू सलमानी जी की है।

और भैया रिंकू शास्त्री जी की फरमाइश थी हमारी सनम तेरी कसम से, आप एंजॉय कर रहे थे कुमार सानू की आवाज में। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है राजू सलमानी जी का, और इसी के बीच में हमारे बहुत ही प्यारे धर्मेश जी लिख भी रहे हैं कुछ, जो कि कुछ इस तरह से, मेरी फरमाइश पूरी करके दिल को कर दिया है गुलजार, अपनी मीठी आवाज से बढ़ा दिया है गीतों का प्यार। अर्जुनती जी आपका दिल से करते हैं शुक्रगुजार, यूं ही फरमाइश बजाते रहिए, मिलता रहे आपका प्यार। धर्मेश त्रिपाठी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी लाइंस लिखी है आपने।

और ये फरमाइश थी हमारे राजू सलमानी जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, जो कि हमारे बहुत ही प्यारी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश है। मौसम है आशिकाना, एंजॉय करते रहिए। और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के हमारे अरविंद जी की फरमाइश, शिव जी की फरमाइश, महेंद्र जी की, अरमान जी की और हमारे मनीष शर्मा जी की।

भैया सुनीत भाई जी की फरमाइश लाजवाब थी, लेकिन इशारा होता जा रहा है, घड़ी का वक्त आता जा रहा है मेरा विदा लेने का। तो आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और आप इंजॉय कीजिए हमारे अरविंद जी की फरमाइश। एंड ऑफ कोर्स ये गाना डेडिकेटेड है हमारे कुछ बेहद ही नायाब लोगों के लिए, बहुत ही खास लोगों के लिए, जो कि अरविंद जी की तरफ से गुलाबशाह जी के लिए है, नाजिया जी के लिए है, धर्मेश जी के लिए है जो मैं आवाज विकास से सुन रहे हैं, एंड धर्मेंद्र मोहन जी के लिए भी है। तो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के शिव जी की फरमाइश। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और भैया ये अरविंद जिग्गी फरमाइश थी, यानी इसी के बीच में हमारे इट्स कुमार जी की एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने आते ही पूछ लिया है, हे अनहोनी। हाँ जी, वेल चलिए ये नाम ही सही, लेकिन बहुत दिनों बाद सुना है, बहुत अच्छा लगा। आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में, एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, एंड ये गाना हमारे मुस्तफ़ा जी और शिव जी की फरमाइश पर है। तो इंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने पर। और मेरे पास बचे हैं 6 मिनट, 6 मिनट के अंदर प्ले करने हैं 3 गाने। वाओ, व्हाट अ कंपटीशन।

और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास है राजस्थान से, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। ऑफकोर्स महेंद्र जी की फरमाइश आ चुकी है, जब तुम आ जाते हो सामने। आप एंजॉय कर रहे हैं महाराजा फिल्म से। हम मिलेंगे अगले गाने पर। अगला सॉन्ग है प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, अरमान जी की फरमाइश है। एंजॉय करते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने पर, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के हमारा आखिरी सॉन्ग जो कि हमारे मनीष शर्मा जी का होने वाला है, और ये गाना आप सभी को डेडिकेटेड होने वाला है।

और इसी के साथ हमारी आखिरी फरमाइश जो आप सभी को डेडिकेटेड है मेरी तरफ से, जिसमें हमारे नागेश्वर धाकड़ जी आते हैं, हमारी नासिया जी आती हैं, इट्स कुमार जी आते हैं, अनमे जी आपका गाना प्ले कर दिया गया है, आई थिंक आप उस वक्त नहीं थे इसलिए आपने मिस कर दिया, फिलहाल अगली बार आप मौजूद रहिएगा। और आज की फरमाइश आपको कैसी लगी, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आप चाहेंगे आपसे इजाज़त, घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी, कल मुलाकात होगी आपसे आपके गुड मॉर्निंग वाले शो में, यानी कि गुड मॉर्निंग गोंडा में, सुनना मत भूलिएगा, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध दिशा उपभोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशुओं या बाजारों में आगमन न ध्यान रहे। पशुओं से मनुष्य नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इस अवश्य उठाएं।

ठीक हानि बचे। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब जिम्मेदारी रहे, पशु को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जारी।

0: 9206। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: चले बीट्स।
1: बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी। सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9876 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: बापूजी ने उन्होंने मना का तो करता।
4: केड़ी गल तो?
3: साडे गोंड तो घरे भी तो सिगोनिया ही आ।
4: ऐ तो तुसी घरे चुन्नी भी नहीं लेंदी, पर जदों बाहर जानी हो उदों सिर ते चुन्नी लेनी।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

छोटे आजकल तेरी

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दिल की बातों में आने वाले दीवाने हो जाते हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं बताऊं, लोग दिल को दिल ही समझ रहे हैं। जिस दिन दिल की इम्पोर्टेंस को समझ लेंगे ना, उस दिन ज़माने नहीं हालात बदल जाएंगे दोस्त। क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में दिल से जुड़ी बातें करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिल की हेल्थ के बारे में सोचना। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में कुछ ऐसे डरावने आंकड़े सामने आए हैं जिनके बारे में अगर सोचा भी जाए तो खुद की धड़कनों पे हाथ चला जाता है कि यार कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए। तो आज उस धड़कन के लिए बात करने के लिए आज बिना मौजूद है आपके साथ विज्ञान ज्वाला में। तो सबसे पहले तो जाग जाओ, जागृत हो जाओ और लोगों को जगाओ, क्योंकि जिज्ञासा उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी अपनी ज़िंदगी। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आपकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हर इंसान पहले से इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता हो। और बहुत सारे लोग अपनी बिजी स्केड्यूल, या मैं कहूँ कि जानने की कोशिश भी नहीं करते कि एक्चुअली में उनके सेहत से जुड़ी कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आज आप ही के दिल की बात करने आई हूँ, लेकिन उसके स्वास्थ्य के बारे में, ना कि आपके दिल की लगी के बारे में। तो सबका स्वागत है, और स्वागत के साथ साथ एक जागरूकता भरा मैसेज भी कि रखो दिल को स्वस्थ और रहो जिंदगी भर मस्त। तो आजकल के दुनिया के हिसाब से या बढ़ते हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, क्लॉट, इन सब से जुड़ी बातें आज हम करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे विशेषज्ञ बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी विशेषज्ञों वाली चीज़ें तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं खुद विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको अलर्ट के तौर पर अपने साथ रखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा हृदय जितनी तेज़ी से धड़क रहा है उतनी ही तेज़ी से वो कई समस्याओं से भी कभी कभी झेल रहा है। बात करूँ विशेष तौर पे युवा की या कामकाजी लोगों की, वयस्कों की, वो सोचते हैं मैं तो जवान हूँ यार, मुझे तो ना तो बीपी की प्रॉब्लम है और ना ही मुझे मतलब किसी तरह की मुझे कोई डिजीज़ नहीं है, तो मुझे अपने शरीर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस काम करना चाहिए। और ये एक का हाल नहीं है, ये सबका हाल है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक दिखने लगी हैं। सबसे पहले तो जो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स थी वो बुज़ुर्गों में देखी जाती थी, यानी कि 50 के ऊपर वालों में, पर ये समस्याएं 20 से 30 वर्ष के उम्र के लोगों में भी दिख रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो कारण समझिए, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक तेल, नमक, ये खून में जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ये हमारी धमनियों को ब्लॉक करता है। शारीरिक सक्रियता यानी कि वर्कआउट भी इसमें जो है गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हम वर्कआउट कर रहे हैं तो सही है। बहुत ज़्यादा तनाव, भाग दौड़ है, इधर उधर जाना है, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, काम का दबाव है, अधूरी नींदें हैं, इस पे भी हमारे दिल की जो कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यानी कि अल्कोहल और स्मोकिंग, ये सब नशीले पदार्थ भी धीरे धीरे हमारी जो धमनियाँ हैं उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। धमनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स। अब आप सरल भाषा में समझें कि आपके दिल का काम क्या है, जैसे आप टायर में हवा भरते हैं पंप से,
वैसे आपके शरीर में ऑक्सीजन को इधर उधर या बाकी सारी चीज़ों को दौड़ाने के लिए किसकी ज़रूरत है, हार्ट की। हार्ट पंप करता है, लेकिन वो जो पाइप है जिससे हवा आपके साइकिल में भरी जाती है, वैसे आपके शरीर में भी छोटी छोटी पाइपें हैं जिनको धमनियाँ बोलते हैं। और ये धमनियाँ तीन प्रकार की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब अलग अलग जगह अलग अलग तरह की होती हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। मतलब हमें आम खाना है, गुठली हम नहीं गिनेंगे, हम समझेंगे क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप धमनी के बारे में जान के क्या करेंगे?

तक रिलैक्स हो जाएगा, मतलब संबंधी हार्ट संबंधी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि यही समस्याएं हार्ट से जुड़ी बीमारियों को लीड करती हैं, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर ये जो मुख्य देखे जा रहे हैं लोगों में, और ख़ासतौर पे 20 से 30 25 साल की उम्र के जो लोगों में हार्ट मतलब अरेस्ट हो रहा है, हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो उसकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट स्ट्रोक इन सब के बारे में भी बताऊंगी, ये दोनों क्या हैं, कैसे होते हैं, दोनों के कारण बताऊंगी। पहले और समझ लीजिए कि आपके आसपास लोगों को आप कैसे बचा सकते हैं थोड़ी सी भी सतर्कता से। पहली चीज़ कि आपको लक्षण पहचानने हैं। ये लक्षण वाला पॉइंट तो आपको बिल्कुल ध्यान से कान खोल के एकदम जैसे कहते हैं अलर्ट होके सुनना है। सीने में दर्द और भारीपन, अगर आपको कुछ दिनों से सीने में दर्द हो रहा है और भारीपन महसूस हो रहा है, या जकड़न टाइप की महसूस हो रही, जलन टाइप की, तीखा दर्द हो रहा है बाएं तरफ या गर्दन या जबड़े, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि कोई दबा रहा हो, बहुत कंजेशन टाइप का फील हो रहा है, सिकुड़न टाइप की फील हो रही है, तो आपको सतर्क होके सीधे नज़दीकी अस्पताल जाके अपना ECG वगैरह जो भी वो रिकमेंड करते हैं, भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, आपको जाके ये सारे लक्षण एक बेहतरीन मतलब जो डॉक्टर हो आपके आसपास, MBBS MD जो भी है उसके पास जाना है, ठीक है। ये लक्षण इग्नोर नहीं करने हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है सांस फूलना। आप थोड़ी भी मेहनत कर रहे हैं, बार बार आपकी सांस फूल जा रही है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं सांस फूल रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अत्यधिक थकान और कमजोरी, यानी कि आपको बहुत थकान लग रही है, इसका मतलब आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे, और ऐसा अगर लगातार आप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब आते हैं चौथे पे, जो कि और भी ज़्यादा थोड़ा सतर्क करने वाला है, कि दिल की अनियमित धड़कन, यानी कि धड़कन का अचानक तेज़ हो जाना और अचानक घट जाना। अब धड़कन क्या होती है, अब धड़कन को समझिए कि दिल की धड़कन जो है भाई गानों पे मत जाइए, मतलब आप लोग जैसे मैं दिल की धड़कन बोलती हूँ तो आप लोग के दिमाग में तुम दिल की धड़कन में आ जाता है, या फिर दिल की धड़कन बना लेंगे, कुछ ऐसे गाने हैं, उनको भूल जाइए अभी के लिए, सब भूल जाइए, अभी दिल की धड़कन को समझिए। दिल की धड़कन क्या है, जो आपका हार्ट है क्या करता है, पंप का काम करता है, अभी मैंने बताया, मतलब सिकुड़ता है फिर रिलैक्स हो जाता है, मतलब फूल जाता है, सिकुड़ता है फैल जाता है, तो ये सिकुड़ने और फैलने के दौरान रक्त जो है वो अंदर आता है हार्ट के अंदर, यानी कि आपके दिल के अंदर, मतलब हृदय के अंदर खून आता है और खून बाहर जाता है, अंदर आता है बाहर जाता है, तो अंदर आने और बाहर जाने के दौरान एक लप और डप की साउंड रिलीज होती है, उसी को धड़कन बोलते हैं, यानी कि आपका सिकुड़ना और रिलैक्स होना ही आपका क्या करता है, ये लप डप की साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये बात समझने की है कि ये जो नंबर है ये 80/720 होता है, ये अगर बढ़ जाए घट जाए रेगुलर ना रहे तो आपको सोचने की बात है, डॉक्टर के पास जाना है। पांचवा जो लक्षण है, जो जिससे आपको थोड़ा और बचने की ज़रूरत है, वो है सिर का हल्का लगना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अचानक चक्कर आ जाना। ये लक्षण इग्नोरेबल नहीं है, आपके साथ अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो आपको नज़दीकी चिकित्सालय जाना है, अपना फुल बॉडी चेकअप कराना है, ठीक है। तो चलिए पहले एक गाना सुन लेते हैं, अब थोड़ा घबराते नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हमने ऐसी बातें कर ली जो हमें टेंशन में डाल सकती है, टेंशन नहीं लेनी है, चिलैक्स करना है और अपने दिल को हल्का रखना है। कैसे हल्का रखना है वो भी बताऊंगी, और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट स्ट्रोक के बारे में बताऊंगी, क्या है, क्यों है, कैसे आता है, ये सारी चीज़ें। तो दिल से जुड़ा गाना भी सुन लेते हैं।

जैसे बंजारे को घर नए मौसम। अब देखिए ये गाना सुनाने के पीछे का कारण को समझिए भाई साहब। कुछ गाने ऐसे सुना करिए जिनके बीट्स काफ़ी नॉर्मल हो, वो आपके हार्ट बीट को इफेक्ट ना करे। कभी कभी हम लोग इतनी हाई बीट सॉन्ग सुन लेते हैं, हमारी हार्ट बीट्स पे वो असर डालती हैं, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्या है ये कार्डियक अरेस्ट। वैसे मैंने जो लक्षण बताए थे उनको आपने ध्यान से सुना होगा, अब उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। पहले तो सबसे पहले संतुलित आहार लें और हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएं, मौसमी फल ज़रूर खाएं, जामुन एवोकाडो अगर मिल जाए तो कभी कभी खा लिया करिए, जामुन के बीज का पाउडर कंज्यूम किया करिए अगर मिल जाए, और साबुत अनाज ज़रूर खाइए, तेल घी चीनी इनका सेवन कम करिए। ठीक है, वैसे चीनी तो बहुत कम चाय में डाल के पीनी चाहिए, और मोदी जी ने हमारे मतलब क्या कहते हैं हम लोग को बहुत ऐसी सारी चीज़ें बताई हैं जिनको समझना चाहिए। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी डाइट प्लान हमसे शेयर किया है, तो उनके भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम देख के समझ सकते हैं, वो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी आदतों को हम लोगों से शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो लोग मतलब जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डाइट प्लान हमें अपनी लाइफ में इंसर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमें देख के भी समझना चाहिए कि एक इंसान देश चला रहा है जिसकी एज 60-70 प्लस है, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा खाता पीता होगा, उसके पास कितना स्ट्रेस होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रेस तो हमारे पास नहीं है ना। तो समझिए बातों को, नियमित व्यायाम करिए, इसकी बात भी हर इंसान आपसे कहता है कि 30 से 45 मिनट प्रतिदिन हमें वॉक, योग या कोई शारीरिक गतिविधि ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, लोग काम करते हैं और कहते हैं अरे हम तो इतना काम कर रहे हैं हमको क्या ज़रूरत है योगा करने की। नहीं भाई, योग करने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, काम तो आप कर रहे हैं अपने शरीर को परेशान करने के लिए। तनाव प्रबंधन आपको करना चाहिए बढ़िया, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के साथ गहरी सांसें लीजिए, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, हेल्थ चेकअप रेगुलर कराइए। ठीक है, हृदय रोग का अगर कोई इतिहास है आपके घर में, कोई ऐसा है जिसको दिल का रोग था या कंटिन्यूस आपके घर में चल रहा है, तो बीपी शुगर ये सारी लिपिड टेस्ट रेगुलर कराते रहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ हृदय रोगों के बारे में, कौन कौन से ऐसे हृदय रोग हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं CAD, जिसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें दिल को खून पहुंचाने वाली जो धमनी है उसमें फैट या प्लेक जम जाता है, जिससे कि खून का बहाव कम हो जाता है। यानी कि एक तरह से ये समझिए कि एक पाइप है जो हार्ट के अंदर खून ला रही है। मैंने क्या कहा कि हार्ट में खून आता है और फिर बाहर जाता है, तो जिस पाइप से खून आ रहा है उसमें कुछ जम गया है, जमाव हो गया है, और वो फैट है। ठीक है, और वो फैट जो है, फैट जो धीरे धीरे आपको पता है फैट हमारे टिश्यूज में स्टोर होता है, तो फैट ज़्यादा किससे है, किस में होता है, फैटी चीज़ों में जिसमें घी है, तेल है। तो आपको ऐसी चीज़ें कम खानी है जो ऐसी बीमारियों के पास आपको ले जाए, भावनाओं को समझिए। ठीक है, तो दूसरी बात कर लेते हैं हार्ट अटैक की। धमनियों में रुकावट के कारण दिल के हिस्से को खून ना मिलना। अब दिल तो खून पास कर रहा है लेकिन दिल को खुद को खून नहीं मिल रहा है। मतलब भाई जैसे कहते हैं ना खुराक, काम करने के लिए आपको भी तो खुराक चाहिए, तो आपका दिल काम कर रहा है तो दिल को भी तो खून चाहिए, दिल की भी तो दीवारें हैं उसमें भी खून चाहिए। तो दिल को जब अपना काम करने के लिए खून नहीं मिलता है, एक तो दिल के अंदर खून आ रहा है जो जा रहा है बाहर, एक दिल की दीवार है उसके में अंदर भी खून आना चाहिए, जब वो नहीं आता है तो दिल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाता, यानी कि सिकुड़ नहीं पाता, फैल नहीं पाता है। भाई खाना नहीं मिला तो चक्कर तो आ ही जाएगा बेचारे को, तो इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, मैंने सरल भाषा में समझाया है, अभी कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होता तो आपको और अच्छे से समझ आता था गंभीरता से, लेकिन मैं आपको सरलतम तरीका बता रही हूँ जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। अगली है बीमारी आर्थीमिया। ये दिल की धड़कन का बहुत तेज या बहुत धीमी हो जाने से होता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, हाई बीपी की वजह से या बहुत तनाव होने की वजह से कई कारण हैं, जैसे कि मैंने कारण या लक्षण आपसे शेयर किए। अगला है हार्ट फेलियर, अक्सर सुनने में आता है इनका हार्ट फेल हो गया, सुनते हैं हम लोग कई बार क्या करते हैं सबको एक बना देते हैं, हार्ट स्ट्रोक भी एक ही, हार्ट फेलियर भी एक ही है, कार्डियक अरेस्ट भी एक ही है, जबकि ये सब अलग है। ठीक है, हार्ट फेलियर में क्या होता है, जब आपका दिल शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ठीक से खून पंप नहीं कर पाता है, उसी को हार्ट फेलियर। जैसे आपके घर में हवा भरने वाला पंप है वो हवा नहीं दे पा रहा है, भाई
बस वही हार्ट फेलियर। अगला है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है। वो वॉल्व क्या करते हैं, खून को नियमित रूप से अंदर आने देते हैं और नियमित रूप से बाहर आने देते हैं। एक तरह से कहिए दिल के दरवाजे, यस, दिल में जो खिड़कियां दरवाजे हैं उन्हीं को वॉल्व बोलते हैं, मैंने सरल भाषा में बताया आपको। तो वो दरवाजे या खिड़कियां जो हैं जब ख़राब हो जाते हैं, सही से काम नहीं करते, जंग लग जाती है उनमें, खुलते नहीं है, बंद नहीं होते, वो खून के प्रवाह को रोकते हैं या खून को आने नहीं देते या आने देते हैं। तो ये जो है ये वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, ठीक है। अब लक्षण तो आपको पता ही चल गए, ठीक है। अब आखिरी है जो कि है कार्डियक अरेस्ट क्या है, ठीक है, इसके बारे में बता देती हूँ। अचानक हृदय की गति का रुक जाना, ये थोड़ा सा खतरनाक है और बहुत खतरनाक है ये अचानक दिल की जो धड़कने हैं उनका रुक जाना या हृदय की गति का रुक जाना, इसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे होता है, अब इसको थोड़ा भावनाओं के साथ समझिए। वैसे मैंने आज बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश की है क्योंकि आसपास में होती घटनाओं को देख के प्रभावित हो गई। देखिए कार्डियक अरेस्ट क्या है समझिए, कि ये तब होता है जब दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है, जिससे मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को खून नहीं मिल पाता है। खून ना मिल पाना यानी कि ऑक्सीजन ना मिल पाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सांसें आप नाक से ले रहे हैं वो ऑक्सीजन कैरी कर रही हैं और वो ऑक्सीजन जाके खून में घुल जा रही है। ध्यान दीजिएगा, खून में घुल जा रही है और आपके शरीर में पूरे, चाहे नाखून हो चाहे वो आपका सर हो ब्रेन हो, कहते ना लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, ब्रेन तक ऑक्सीजन जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो जल्दी ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुँचेगी। कई बार आपने देखा होगा आपने उंगली के ऊपर रबड़ लगा दी होगी बहुत टाइट करके और आपकी उंगली नीली पड़ गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि वहाँ खून पहुँच नहीं पाया और वो शरीर का हिस्सा नीला पड़ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन ना पहुँचने की स्थिति में आपका हार्ट जो है, आपका शरीर जो है, उसकी सारी जो क्रियाएँ हैं बंद हो जाती है हृदय के काम ना करने की वजह से। इसे कहते हैं हृदय की विद्युत प्रणाली विफल हो जाना और आपका हार्ट पंप करना बंद कर देता है। इसके प्रमुख लक्षण ये है कि पहला, आप सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हाँफ रहे हैं बार बार, ठीक है। आपकी, कह रहे हैं ना कि किसकी, कोई कोई डॉक्टर कहते हैं आपकी नाड़ी नहीं मिल रही है, मतलब आपकी हार्ट बीट नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि आपका दिल धीरे धीरे काम कर रहा है, हार्ट बीट आपकी नहीं मिलना। तो ये मुख्य मतलब लक्षण हैं जिन पे हमें तुरंत काम करना चाहिए, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट के टाइम क्या कर सकते हैं, अगर आपके आसपास लग रहा है कि कोई अचानक से उसको हार्ट फेल हो गया और वो सांस लेना बंद कर दिया, तो उसको तुरंत CPR दीजिए। CPR देने के तरीके YouTube पे और बहुत सारी जगह अच्छे से बताए गए हैं, गलत तरीके से आपको CPR नहीं देना है। तो CPR दे के भी आप किसी भी तरह के कार्डियक अरेस्ट के इंसान को उसकी ज़िंदगी, मैंने देखा है यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम मतलब निष्क्रिय पड़े हैं और लोगों ने CPR दे के उन्हें बचा लिया है। तो अलर्ट रहिए, आपकी वजह से शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए, ठीक है। इसके अलावा रक्त प्रवाह के अवरुद्ध जो थक्के हैं, अक्सर क्या होता है खून में क्लॉट बन जाता है, हमारे शरीर में जो खून है उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा खून जो मेन चार चीज़ों से बनता है, 3 तरह की कोशिकाएं और प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा प्लस RBC प्लस प्लेटलेट्स प्लस WBCs, इनमें प्लेटलेट्स जो होती हैं वो खून के थक्के बनाती हैं। जब प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है या फिर बाकियों की संख्या घट जाती है तो थक्के बनने लगते हैं, तो उसी को क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, मांसपेशियों को नुकसान पहुँचाता है, कार्डियक अरेस्ट का एक बड़ा कारण हो सकता है। और आप चाहें तो अपने बॉडी का रेगुलर टेस्ट या ब्लड जो पूरा जो CBC होता है कंप्लीट ब्लड काउंट वो करा लिया करें, ठीक है। आपातकालीन की स्थिति में CPR कैसे दे सकते हैं, अपने हाथों को ऊपर रखते हुए छाती के मध्य के हिस्से में बहुत हल्का प्रेशर करना है पहले तो, ठीक है। अपने शरीर का वजन उपयोग करके लगभग 2 इंच या 5 सेंटीमीटर नीचे की ओर और 100 से 120 बार प्रति मिनट की दर से दबाएं, यानी कि
इतना तेज आपको जल्दी जल्दी दबाना है जिससे कि हार्ट अपने वापस सिचुएशन में धड़कने लगे। मतलब आपको क्या करना है, एक तरह से हार्ट को ही पंप करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करें, 30 बार दबाएं, दबाने के बाद आप उसके मुख से सांस दें, ठीक है। वायु मार्ग खोलने के लिए आप सिर का थोड़ा सा पीछे को झुकाएं, नाक को दबाएं और मुंह से मुंह को ढककर सील करके बनाएं और उसके बाद उसमें सांस छोड़ें जिससे कि छाती को प्रॉपर जो है ऑक्सीजन मिल पाए। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो आप YouTube से देख के सीख सकते हैं और अलर्ट रह सकते हैं। तो जागरूक बने, सतर्क बने और ऐसी घटनाओं से आसपास के लोगों को, अपने परिवार को बचाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबके खाने पीने का ध्यान दें और घर में अगर लोग हैं, बुजुर्ग हैं या जवान हैं, सब लोग को अलर्ट कर दें कि भाई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अपनी जिंदगी को अपना बनाओ और सीधे तौर पे जो है खाने पीने का अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो ये रही आज की जानकारी और इस बात पे बिल्कुल डाउट ना करें कि आप लोग को बिल्कुल भी अपने बॉडी पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। बस अपनी रोज़मर्रा की जो आदतें उनको सुधारिए, स्ट्रेस कम लीजिए। देखिए, ज़िंदगी सबको एक ही बार मिली है, सब जी रहे हैं और आप भी जी रहे हैं।

ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। कल फिर मिलेंगे आपके साथ, यानी कि कल अगले मंगलवार को मिलेंगे और कुछ नई जानकारी के साथ। वैसे आपको कुछ नया जानना है तो मुझे चैट रूम में भी बता सकते हैं और मुझे इंस्टा पे भी अपना मतलब रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं कि मैम इस पे बात करनी चाहिए, तो हम बात करेंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड। अगर आप कुछ बेहतर सुन रहे थे तो डेफिनेटली आरजे बीना के साथ शो विज्ञान शाला सुन रहे थे।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404-4845-3954। अब सपने होंगे साकार।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9216 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

कदों आवेंगा, मतलब कि तुम कब आओगे। शाम हो गई, पक्षी घर को जा रहे, तुम कब आओगे। जी हाँ, तो आप आएंगे तभी तो शुरुआत होगी इस शाम की सुरीली। वैसे आज है ट्यूसडे, सुनेंगे लव स्टोरी एक बेहतरीन सी जो आपके दिल को पहुंचाएगी सुकून।

गुड इवनिंग अरविंद, और बाकी सभी को भी स्वागत है। कहाँ कहाँ से कौन कौन सुन रहा है, जल्दी से आ जाएं, लाइव करते हैं बहुत सारी बातें लगातार आप लोग के साथ, बिना रुके, बिना मतलब ब्रेक लिए। और आज की शाम की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना कि शाम की शुरुआत तब तक नहीं मानी जाती जब तक हम कुछ कह या सुना ना दें। तो सुनाने की बात तो वैसे अगर करें तो दिमाग में बहुत कुछ सुनाने को आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको सुना के हम कभी अफसोस करते हैं तो कभी मुस्कुराते हैं। कहते हैं खिड़की से बाहर ये मंजर बदल रहा है, खिड़की से बाहर ये मंजर बदल रहा है, चुपचाप चांद रातों में पिघल रहा है, तेरी सदा का जादू अभी तलक है, तेरी सदा का जादू अभी तलक है, एक लम्हा तेरी यादों से फिसल रहा है, एक लम्हा तेरी यादों से फिसल रहा है। कब तक इंतजार के दिन गिनते रहें, कब तक इंतजार के दिन गिनते रहें, एक एक लम्हा रेत की तरह फिसल रहा है, एक एक लम्हा जिंदगी का रेत की तरह फिसल रहा है। तो भाई जल्दी से उठ जाइए, जाग जाइए और अलर्ट हो जाइए आज की बातों को ध्यान से सुनने के लिए। वैसे शाम को तो मैं आज आप लोगों से विज्ञानशाला में भी मिल गई थी और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताई, और अब देखिए वो बातें बिल्कुल इग्नोरेबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उन बातों को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अलर्ट रहिए अपने हार्ट को लेके, दिल को लेके, धड़कनों को लेके। और आज देखते देखते सितंबर की तारीख 22 हो गई है और सितंबर भी टाटा बाय बाय कहने को है, और ये साल ऑलमोस्ट जाने को तैयार है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने और बचे इस साल के। तो आप बताइए कि इस बचे हुए 3 महीने में आप अपने इस साल को बेहतरीन बनाना चाहते हैं कि नहीं। बिल्कुल, तो अपने साल से जुड़ी चीज़ें, यानी कि सबसे पहले तो अपने वर्कआउट को लेके थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 150 मिनट एटलीस्ट आप ऐसा वर्कआउट करें जो आपके दिल की धड़कनों को मतलब बढ़ा सके, आपके हार्ट को कह सकते हैं बूस्ट कर सके, ठीक है। तो कहते हैं ना मशीन है, उसको यूज़ करना चाहिए। तो हार्ट तेज़ी से जब काम करेगा तो उसके अंदर की जो अलर्टनेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो रही आपके दिल से जुड़ी बात जो कि मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ। वैसे आप लोग बताइए आज का दिन आप लोग का कैसा रहा, पूरे दिन आप लोगों ने क्या क्या किया, कुछ नया कुछ पुराना। और आज का दिन यानी कि 22 सितंबर कई जगहों पे, ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड में एक दिन मनाते हैं, इसको करम पूजा बोलते हैं। इसमें मतलब ये लोग ट्राइब चाय कि जो मेन कम्युनिटीज़ हैं जो चाय उगाती वगैरह हैं, तो वो लोग करम पूजा करते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें वेस्ट बंगाल में तो पूरे दिन हॉलीडे होता है, बैंक भी बंद होते हैं और बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। रांची वगैरह में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। तो करम पूजा में बेसिकली जो बेसिकली उनकी बेसिक क्रॉप है उसको लेके पूजा पाठ होता है। हम लोग के यहाँ भी यूपी में क्या होता है, जब कोई नई फसल करती है तो नया होता है, नया को लेके बात करेंगे इस बृहस्पतिवार। आप लोग भी सुनिएगा क्या बताती हूँ मैं आपको नया के बारे में, इसको अलग अलग जगह यूपी बिहार में क्या कहते हैं, ठीक है। नई फसल जब कटती है, वैसे बैसाखी होती है ना, वैसे ही हमारे यहाँ यूपी बिहार में नया होता है। पूछना था कान खोल के सुन सकता हूँ आपकी बात को, हाँ बिल्कुल, कान के दरवाजे तो खुले ही होने चाहिए, अगर कान बंद होंगे तो बातें बाहर से ही वापस हो जाएंगी। वैसे दोनों कानों को खुले रखिए और बातों को एसिमिलेट करके दिल में छुपा लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल ये गाना सुन के तो आप सभी सोच रहे होंगे कि यार ये गाना सुनने को मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता,
तो चलिए कहानी भी लव स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके हैंड्स अप देखना चाहती हूँ। कौन कौन कहानी सुनना चाहते हैं ये बताइए। आप लोग को लव स्टोरी सुनना पसंद है, मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद है? जैसे हॉरर का नाम मत देना, अभी मैं आज हॉरर स्टोरी सुनाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद वैसा इफेक्ट डालना पड़ता है ना जब आप लोग को डर लगे। वैसे मैंने ऐसी स्टोरीज कई बार सुनाई हैं कि कुछ लोग तो शाम को ही पानी लेने अंधेरे में जाने में डरते हैं। तो फिलहाल के लिए ये गाना सुनिए और आप बताइए दीवानियत का टाइटल ट्रैक कैसा है आप सभी के लिए।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।

भाई मौसम बदला हो या ना हो, लेकिन जब किसी दीवाने की दीवानियत की बात की जाती है तो प्यार की जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस हो जाती हैं। इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, कुछ भी कह गुजरने को तैयार होता है। लव वाली सुनाओ जिसमें ब्रेकअप ना हुआ हो। ये बात सही है भाई, ऐसी स्टोरी सुनने में मज़ा आता है ना जिसकी हैप्पी एंडिंग हो। गुड इवनिंग महेंद्र, कैसे हैं? मैम हुक राजा जी सॉन्ग बजा दो। ये कौन सा गाना है भाई? हाय हुक हाय हुक हाय हाय, एक लड़की मेरे सामने दिल मेरा ले जाए, ऐसा करके गाना था। फिलहाल आज मतलब फरमाइशी वाला टाइम नहीं है, आपको मेरी प्लेलिस्ट एंजॉय करनी पड़ेगी, ठीक है? आप अपनी पसंद नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि तू अगर मेरा मैं हूँ तेरा। तो फिलहाल के लिए देखिए, आज की शाम कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि आज बात होगी उस एहसास की जिसे आप लोग प्यार तो कहते ही हैं, और हर मंगलवार हम प्यार की बात करते हैं, और उसी प्यार की गहराई को दीवानियत भी कहते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं प्यार और दीवानियत में क्या अंतर है, आज उसी पे बात होगी। कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जिसके आने से हमारी जो डेली लाइफ है या हमारा जो रोज़ हम करते हैं उस पर बड़ा बदलाव दिखाई देता है, और कभी कभी नहीं भी दिखाई देता है। चाहे बाहर बदलाव हो या ना हो, लेकिन अंदर की दुनिया पूरी बदल जाती है, अंदर की सोच एक तरफा हो जाती है। वो इंसान जो पहले हर किसी को टेंशन देता था, वो किसी एक को टेंशन देने लगता है। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत कुछ ना कह के भी कुछ एहसास पूरी दास्तान लिख जाते हैं। प्यार कहता है तुम खुश रहो, दीवानियत कहती है तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन कुछ लोगों की दीवानियत कि तुम्हें पाना मुझे अपना बनाना मुझे, यही मेरी दीवानियत है। दीवानियत ये कभी नहीं होती। दीवानियत का मतलब है कि सामने वाले को देख के अपने आप को तसल्ली देना। कहते हैं कि प्यार वो नहीं जो हर पल साथ रहने की जिद करे, प्यार तो वो है जो दूर रहकर भी ख्याल रखे। और दीवानगी वो शायद तब होती है जब किसी की मुस्कान हमारी अपनी वजह बन जाती है। अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, लेकिन क्या सच में यही प्यार है? शायद नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार किसी को अपना बनाने से ज़्यादा उसकी आज़ादी और उसकी खुशी को समझना होता है। प्यार में अधिकार हो सकता है लेकिन कब्जा नहीं, प्यार में इंतज़ार हो सकता है लेकिन दबाव नहीं, प्यार में चाहत हो सकती है लेकिन सामने वाले की इच्छा और सीमाओं का सम्मान भी उतना ही ज़रूरी है। फिलहाल एक प्यार की कहानी मैं अभी हाल ही में मैंने न्यूज़ में पढ़ी थी, उसके बारे में बताती हूँ कि एक लड़की जो कि अपनी मासी

लगने के बाद लड़के को लगा कि अरे ये इतनी आसानी से कैसे मान गई, ऐसा तो नहीं इसका कहीं और कुछ मामला है। बस उसी समय दिमाग में सनक आ गई, हम पूछना क्यों नहीं जरूरी समझते? हमें किसी चीज को पूछना चाहिए, जानना चाहिए, पर हम अंजाम तक अपना डिसीजन ले लेते हैं बिना जाने समझे, बिना सामने वाले की बात सुने। और अंजाम ये हुआ कि वो लड़की यहीं आपके पास की है, न्यूज़ में आपने सुना भी होगा, शायद कहानी आपने नहीं जानी होगी। लड़की का नाम तो मैं अभी नहीं यहाँ डिस्क्लोज करूँगी ऑन एयर। वो लड़की अपने मतलब उससे बात करता है लड़का कि मैं तुमसे एक बार आखिरी मिलना चाहता हूँ, मुझसे मिल लो। और वो अपने घर वालों से बोलती कि मैं आज मौसी के घर जा रही हूँ, अयोध्या उसकी मौसी रहती, गोंडा की वो लड़की है, वो ये कह के जाती कि मैं आज मौसी के घर अपने जा रही हूँ। ठीक है, घर वाले बोलते ठीक है तुम बस से चली जाओ, 24 साल की बच्ची है तो भरोसा तो इतना माँ बाप करते ही होंगे, भेज दिया। पर वो बच्ची जब शाम को 8 बजे तक घर नहीं पहुँची तो घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने कंप्लेन कर दी, FIR दर्ज करा दी। ढूंढा तो 2 दिन बाद अयोध्या की सरयू नदी में उसकी तैरती हुई लाश मिली। अब वहां उसने मिलने के लिए बुलाया था तो जरूर उसने ही कुछ किया होगा। उस इंसान की दरिंदगी देखिए, तुमने शादी करने से मना किया वो मान गई तो प्रॉब्लम, ना मानती तो प्रॉब्लम, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? मैं एक लड़के या लड़की दोनों की बात कर रही हूँ, इसे दीवानियत कहते हैं लोग। उसने उस लड़की को बुलाया, कहा कि चलो तुम्हें घाट घुमा देता हूँ। घाट घुमाने के बहाने एक जंगली इलाके में ले गया, वहां जाके उसने उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद अपने कपड़े जिनमें खून सना था वहीं फेंक दिया और उस लड़की को नदी में फेंक दिया। वो नदी जहाँ लोग अपने पाप धोने जाते हैं, वहाँ लोग अपने पाप बहाने भी जाते हैं। जी हाँ, ये अभी 14 सितंबर की बात है। 14 को अपने घर वालों से बताती है, 15 को वो घर से निकलती है सुबह, शाम को घर नहीं पहुँचती है तो घर वाले परेशान होते हैं 15 को, 16 को FIR होता है, 17-18 में लाश मिल जाती है। अब बताइए ये दीवानियत है क्या? ये रियल लव स्टोरी है, ये रियल लव स्टोरी है, मतलब आपके गोंडा शहर से। मतलब मुझे समझ नहीं आया स्टोरी इसकी कि उसने जब मना किया लड़के ने कि मैं शादी तुमसे नहीं कर पाऊंगा तो लड़की मान गई। वो मान गई, इसमें उसको डाउट है कि वो क्यों इतनी जल्दी मान गई। साइकोलॉजी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, पर ये सच है। ये अभी 5 दिन पहले की बात है, सोचिए। इसलिए मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, दीवानियत की बात। यू नो दीवानियत क्या है? तुम मिले तो लगा जैसा कोई अधूरी कहानी पूरी हुई। तुम मिले तो लगा जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी हुई। तुम दूर हुए तो जाना कि मोहब्बत सिर्फ पास होने का नाम नहीं। कुछ रिश्ते दूरी में सांस लेते हैं, कुछ नाम खामोशी में भी साथ चलते हैं, और कुछ लोग जिंदगी में होकर भी दिल में उम्र भर रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप सोच रहे होंगे ना कि आरजे बिना आपको स्टोरी कैसे पता चली? उस लड़के को पकड़ लिया ना, मतलब उसका मोबाइल लोकेशन, लड़की ने लास्ट टाइम उसी को कॉल किया था इसीलिए वो पकड़ा गया, और फिर उसने अपनी पूरी बात बताई कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने उसको मार दिया। मतलब कितना आसान हो गया नहीं, पूरी ज़िंदगी अब जेल में रहना पड़ेगा, वो सही है। क्यों हम अंजाम से नहीं डरते? क्यों हम ऐसी गलतियां करते हैं जिसका पछतावा शायद अपनी सांसें देकर भी हम नहीं कर सकते? लेट इट बी, एक और कहानी इंतज़ार कर रही है। तो मेरे दिमाग में आ गई, रियल वाली थी, लव वाली थी और दीवानियत वाली थी, तो मैंने सुना दी। चलिए सुनते हैं प्यारा सा गाना आप लोग के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये गाना सुन के बताइए कैसा है।

बिल्कुल नहीं, बात करना उसके बारे में कुछ नहीं। हमारा आधा लाइफ निकल गया उसका पीछा करते करते। बर्फी नहीं होता ना तो हम आज पुलिस से एसपी बन के रिटायर करता। अभी हम होम्योपैथी की पूड़ी बेचता है। होम्योपैथी

0: जगह बहुत प्यार बढ़ता था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। तभी तो उसके इतने चाहने वाले थे।
1: बचपन का यार था मेरा, मुंह का पेट लड़ाया करते थे हम। वो गूंगा बहरा था लेकिन बहुत आकरू था। उसका साथ एक प्रॉब्लम था, वो सोचते लोग उसके छोड़ के चले जाएंगे, इसीलिए हमेशा दोस्ती का परीक्षा लेता था।

0: बाप ने उसका नाम मर्फी रखा था। कोई पूछे तो बोलता
1: क्या आपके घर भी मर्फी का रेडियो आया है कभी?

क्योंकि रेडियो पे आप देखेंगे कहाँ से। फिलहाल ये गाना आप लोग सुन के दिल को मज़ा आ गया होगा, क्योंकि ये गाना नहीं था। यू नो, पुराने गानों का नया वर्जन हमेशा से बिंदास होता है। और आज जी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करने, एक तो रियल स्टोरी मैंने आपको गोंडा शहर की सुना दी, और अब दूसरी कहानी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है उसकी बारी है। और धर्मेंद्र गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जुगल गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सभी का। तो वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में झांक रही है बाहर और कहने के लिए आई है आपसे कुछ, तो चलिए सुनाती हूँ इनकी कहानी। कहानी सुनने वाले ज़रा हाथ उठा दें फटाफट से, किसको किसको सुननी है, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं तो शुरू नहीं करूँगी कहानी मैं। फिलहाल आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ एक ऐसे युगल जोड़ेगी जो अपने प्रेम त्रिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। कहानी है कावास मानिकशा नानावटी, KM नानावटी की, जिन्होंने किससे प्यार किया? साल्विया से, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली थी। कावास की बात करें तो ये भारतीय नौसेना में काम करते थे। पूरी कहानी बड़ी दिलकश है, सुन के दिल को अलग से ही आपको थॉट्स जनरेट होंगे। कावास भारतीय नौसेना में कमांडर थे। 1925 में एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ और उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। कावास शुरू से ही बड़े, मतलब कहते हैं ना, एम्बिशियस टाइप के थे। तो कावास के बारे में पहले तो मैं बता दूं आप लोग को उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। लोग उन्हें KM नानावटी के नाम से जानते थे और काफ़ी फेमस हुए वो अपनी वजह से, मतलब अपनी इनकी कहानी की वजह से। कहानी बड़ी अच्छी सी है और थोड़ी डरावनी सी भी है।

महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और कुछ लोगों ने कहा कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिन्होंने एक ऐसी कहानी को लोगों को दे दिया जिसके बारे में आप सोच के भी दिल आपका मतलब कहना कि सहर जाएगा ठहर जाएगा। उन्हें प्यार हो गया किससे? साल्विया से। साल्विया से प्यार हुआ और उन्होंने शादी भी कर ली है साल्विया से। 1956 में वो अपने परिवार के साथ बॉम्बे आ गए। नानावटी की मुलाकात उनके एक दोस्त से होती है और लंबे समय तक वो ड्यूटी के लिए चले जाया करते थे अपने मतलब समुद्री जो उनकी नेवी में थे तो उनको समुद्री यात्रा उन्हें लंबे समय तक करनी पड़ती थी और इनका जो दोस्त था आहूजा वो अक्सर इनके घर जाया करता था और इनकी एब्सेंस में साल्विया ने अपने जो कहते हैं ना प्रेम को एक्सचेंज कर दिया। 27 अप्रैल 1960 को नानावटी ड्यूटी से लौटे उन्होंने साल्विया को बदला और बहुत दूर पाया। उन्होंने साल्विया से पूछा कि मैं तो तुमसे मतलब साल्विया जो कि ब्रिटेन से सीधे मतलब मुंबई आ गई थी उनके प्यार में आज वो उनको देख के खुश नहीं थी। इतने दिनों बाद मतलब इतने सालों बाद वो घर आ रहे थे और जब नानावटी ने पूछा कि क्या बात है तो साल्विया ने तुरंत ये बात एक्सेप्ट कर ली कि वो किसी और से प्यार करती है यानी कि आहूजा से। फिर उन्होंने बताया कि आहूजा ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया है। मतलब एक लड़की जिसकी ऑलरेडी शादी हुई है वो किसी और से प्यार करती है लेकिन वो जिससे प्यार करती है वो उससे शादी नहीं करना चाहता। मतलब पहला प्यार फिर दूसरा प्यार। नानावटी अपनी पत्नी यानी कि साल्विया को और बच्चों को लेके फिल्म दिखाने के लिए ले गए। फिर वो नौसेना बेस में पहुंचे। झूठे बहाने से उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर ली और उसमें 6 गोलियां भर ली। इसके बाद वे आहूजा के अपार्टमेंट पहुंचे। उन्होंने बेडरूम में जाकर आहूजा से पूछा क्या तुम साल्विया से शादी करोगे और बच्चों की जिम्मेदारी उठाओगे। बताया जाता है कि आहूजा ने जवाब दिया कि क्या मैं उस औरत से शादी करूं जिसके साथ मैं सोता हूं। इसके तुरंत बाद नानावटी ने उस पर 3 गोलियां चला दी। आहूजा की बाथरूम में मौत हो गई। नानावटी वहां से सीधे बाहर निकले और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह मुकदमा भारतीय इतिहास का सबसे सनसनीखेज केस बन गया। नानावटी हर दिन अपनी नौसेना वर्दी और मेडल पहनकर अदालत पहुंचते थे। मुंबई के टेबलाइट ब्लिट्स ने उन्हें धोखा खाए नायक के रूप में पेश किया। फैसले वाले दिन अदालत ने देखा कि वहां 5,000 से ज्यादा लोग जमे हुए थे। जूरी ने 8-1 से फैसला किया लेकिन सेशन जज ने इस फैसले को गलत बताते हुए मामला बॉम्बे कोर्ट में भेज दिया। उन्होंने कहा ये दोषी नहीं है। हाई कोर्ट ने नानावटी को हत्या का दोषी ठहराया। 1961 में सुप्रीम कोर्ट में भी सजा बरकरार रखी। उन्हें उम्र कैद दी। कहा जाता है इस केस में मीडिया ने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लोगों तक पहुंचाई। 1964 में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नानावटी को माफ कर दिया। इसके बाद वे साल्विया के साथ कनाडा चले गए। 2003 में अपनी मृत्यु तक दोनों साथ रहे। कहते हैं कि प्यार अगर साथ देने पे उतर आए तो वो आपके लिए किसी और की हत्या कर सकता है। अभी 2 कहानियां मैंने सुनाई। एक वो जिसमें एक लड़का जिससे प्यार करने का वो दावा करता है जो कि आपके गोंडा शहर की कहानी है वो अपनी ही प्रेमिका को मार देता है इसलिए क्योंकि उसने उसकी बात को आसानी से मान लिया था।
यहाँ नानावटी नौसेना में थे, वो चाहते तो साल्विया को मतलब इस खुन्नस में मार देते कि वो इसकी एब्सेंस में किसी और से प्यार कर ली, मतलब कर लिया उसने। हो सकता है साल्विया को दोबारा उससे मतलब नानावटी से इतना प्यार हो गया जिसे वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई। आपको पता है इस पर एक मूवी भी बनी हुई है अक्षय कुमार की। तो ये रियल लव स्टोरी है भाई, कितना कोई त्याग कर सकता है, कोई लड़का इतना पेशेंट कैसे हो सकता है, ये नानावटी ही हो सकते हैं। अपने प्यार को वापस पा लिया उन्होंने। थैंक्स ऐसी कहानियां समझाने के लिए मीडिया को, और हमारे इतिहास में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं जो हमें हमारे रिश्ते को बरकरार रखने के लिए एक मोटिवेशन देते हैं। आप बताइए आपको ये नानावटी की कहानी कैसी लगी। मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी, और मुझे साल्विया के ऊपर शुरू में तो गुस्सा आया, लेकिन मुझे ये देखा कि उसने वापस से उससे इतना प्यार किया जितना उसने पहली बार नहीं किया। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गाना, और हैट्स ऑफ टू देयर लव।

जी हाँ, ये गाना है फिल्म रुस्तम का, और रुस्तम बिल्कुल इसी कहानी पर बनी है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे जो आज लव स्टोरी डिस्कस हुई है वो आपने शायद फिल्म रुस्तम में देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार और इलियाना द क्रूज ने अपनी जो कहते हैं ना स्टोरी को बहुत खूबसूरती से दिखाया। अक्षय को देख के कोई भी इंसान कह सकता है कि इतना प्यार करने वाला इंसान दुनिया में बहुत कम ही होता है। बहुत होगा तो इंसान सीधे सीधे जाने देगा, लेकिन आपकी पत्नी किसी को प्यार करती है, सामने वाले ने आपकी पत्नी को धोखा दे दिया और आपने उस सामने वाले से बदला ले लिया अपनी पत्नी के लिए, दैट्स अ स्पिरिट, स्पिरिट हर किसी के अंदर नहीं होती। तो भाई कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, जल्दी से उठ उठ के आ जाओ। आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि दीवानियत का मतलब क्या है। मेरे हिसाब से तो दीवानियत का मतलब यह है कि सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना, सामने वाले के लिए अपने जो कहते हैं ना सर्वस्व को लुटाने के लिए तैयार रहना, यही है सच्चा प्यार। ना कि किसी से भी बदला ले लेना। जैसे कि आप दो कहानियाँ सुनी, दोनों के एकदम ऑपोजिट एंड्स थे और दोनों ऑपोजिट एंड्स एकदम इस बात को चीख चीख के कह रहे थे, यार प्यार का मतलब क्या है। वैसे आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है? प्यार साथ रहने का नाम है, प्यार इंतज़ार का नाम है, प्यार विश्वास का नाम है, या बिना कहे सब कुछ समझ लेना प्यार का नाम है? आप सोच के बताइए, मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं। कहते हैं मोहब्बत में शोर कैसा, ये तो खामोशी में भी समझा जा सकता है। जिसे दिल में सच में तुमने अपना बनाया है, उसे खुशी में भी अपनी खुशी में अपना बनाया जा सकता है। तो सोच के बताइए आप लोग कि आपका प्यार क्या हो सकता है, आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है। मैं सबकी परिभाषाएं जानना चाहती हूँ, मतलब ऑनेस्ट वाली होनी चाहिए, नहीं कि उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया कहीं से। आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है, मेरे लिए क्या है, वो तो मैंने आपको कहानी से बता दी। मैं

तो एक और गाना मेरी प्लेलिस्ट से आप सुन के बताइए कितना अच्छा है। वही पहला आंसर आया है, महेंद्र जी लिखते हैं कि विश्वास का नाम प्यार है। बिल्कुल, अगर आपके अंदर भरोसा है, ट्रस्ट है, तो वो भी प्यार है। वो आपके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी को नहीं आने देगा।

तो चलिए और देखते हैं परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। फिलहाल तो एक ही परिभाषा आई, बाकियों की परिभाषा कहीं गायब गायब से दिख रही है। महेंद्र जी ने लिखा है लेकिन धर्मेंद्र जी ने कुछ नहीं लिखा है। दोनों का नाम देख के दोनों एकदम जैसे लगता है कि आस पास से ही हैं। कहते हैं कि

तो कुछ प्यार ऐसा भी होता है जहाँ पे हर दिन परीक्षा ली जाती है। कुछ लोगों के लिए प्यार एग्जामिनेशन है जिसमें आप हर दिन एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं, और वो प्यार थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना कि वो कसौटी वाला प्यार हो जाता है, जिसमें हर दिन एक कसौटी है जिसको आपको जीतना है और सामने वाले को प्रूफ करना है कि आप सच में उससे प्यार करते हो। पर ये प्यार मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, आप बताइए। महेंद्र लिखते हैं, दूसरे की खुशी में मेरी खुशी देखता हूँ मैं। ओह क्या बात है, ये सही है।

से कौन नहीं डरता, वो जो आपसे प्यार नहीं करता। दूर जाने से वो नहीं डरता जो जानता है कि आप उसे बार बार बुलाओगे, वो जानता है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए वो आपसे दूर जाने से नहीं डरता है। पर क्या इतना कह देने मात्र से प्यार के मायने खत्म हो जाते हैं? क्या प्यार का मतलब यही है? आप 100 बार कहते हैं कि हमसे बात मत करो। कई बार कुछ ऐसे फ्रिक्शन वाले रिश्ते होते हैं जिनमें इंसान बहुत टसल के साथ कहता है, तुमसे मुझे बात नहीं करनी। और फिर भी आप बात करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है

आप हमसे न बोलिए। फिर क्या, फिर वही जो आपने सोचा, वही कि ये हो गया है आपका तकिया कलाम क्या, ये हो गया है क्या तकिया कलाम क्या, 100 बार कह चुके हैं आप हमसे ना बोलिए, ये हो गया है क्या तकिया कलाम क्या। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि तकिया कलाम क्या होता है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, जैसे कहते हैं कि यार झूठ ना बोलो, यार झूठ ना बोलो, वो बार बार बोलते एक शब्द, तो सामने वाला भी कह रहा है हमसे बात ना करिए, हमसे बात ना करिए। तो ऐसा तो नहीं कि आपका ये तकिया कलाम शब्द है और इसको हम नॉर्मल शब्द समझे जा रहे हैं। तो बस प्यार में थोड़ा सा धैर्य बनाएं, कुछ शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे सामने वाले के दिल को ठेस पहुँचे। तो चलिए एक ऐसा गाना जो ऐसे लोगों की भी बात कर देता है जो बहुत खुदगर्ज टाइप के होते हैं, जो अपनी धुन में रहते हैं और सामने वाले को बस रुलाते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है, किसी को रुलाओगे तो आप भी तो रोओगे। तो चलिए ये वाला गाना सुनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है विशाल की आवाज़ में, मुझे बहुत पसंद है।

0: प्यार की बात हो रही है तो हर सिचुएशन को लेके साथ चलेंगे।
1: ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरेबी है, सब झूठ बताता है।

भाई धोखेबाजों में रह के कोई धोखेबाज हो सकता है, ये तो आज सुन के पता चला। फिलहाल कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो सुनने को मिल ही जाती हैं, पर यार क्या कहें, दुनिया में सारी चीज़ें होना ना होना बात एक ही है। दीपक मिश्रा कैसे हैं, बड़े दिन बाद दिख रहे हैं, बड़े दिन हो गए आपकी कविताएं नहीं पढ़ी, कहीं खोए खोए से रहते हैं मालूम पड़ता है। फिलहाल गुड इवनिंग सभी को, स्वागत है वापस से आपकी वाली शाम में। आज तो बहुत सारी बातें हो गई प्यार से जुड़ी हुई। भाई ट्यूसडे इज़ ऑलवेज द लव डे, एंड लव शार ना हो तो कैसे बात बनेगी। और आज तो कविताएं भी एक दो हो गई, और हमी से हमारे हमारी गवाही न लेना, हम अपने सनम को बचाते बहुत हैं। हमी से हमारी गवाही न लेना, हम अपने सनम को बचाते बहुत हैं। क्या कहें कब कहें, वो हमें सताते बहुत हैं। एली में गुड इवनिंग, आशु जी भी आ गई हैं, भाई सारे लखनऊ वाले लोग एक साथ मुझे दिख रहे हैं, पर मुझे ये दिख रहा है कि बाकी सारे जो तेलंगाना शिमला ये सारे लोग एकदम से गायब हो गए, कहाँ चले गए, किस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। तो जहाँ भी हों, जिस दुनिया में भी हों, जल्दी से उठिए और कॉल लगाइए और बात करिए अपनी आरजे बीना से अपने वाले मंडे को, जिससे कि आपकी आवाज़ में हम भी सुन सकें कुछ नया, कुछ पुराना और कुछ अपना वाला।

कहते हैं पीछे छूटा शहर हो तो सिर्फ शहर नहीं छूटता, पीछे छूटते शहर से मैंने अपना सारा सामान साथ नहीं लिया, पीछे छूटते लोगों से मैंने कहा कि मैंने उनसे समय नहीं मांगा, मैंने बिछड़े हुए प्रेम से अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मेरी नज़र में पीछे कुछ तो छूटा रह जाना चाहिए दोबारा फिर कहीं लौट आने के लिए। तुम भी लौटना यहीं रुक जाने के लिए। इसीलिए आरजबीना कहती है कि जब भी यहाँ चैटरूम से आप जाएं तो कुछ छोड़ के ज़रूर जाएं, चाहे वो आपकी पंक्तियाँ हों, चाहे वो एक कप चाय हो, चाहे वो आपकी इमोजी हो स्माइली वाली, कुछ भी। कहते हैं दीपक कि उससे हर बार मिलना पहली बार सा लगता है, उससे हर बार मिलना पहली बार सा लगता है, वो मेरी थकी हुई ज़िंदगी में इतवार सा लगता है, उसके जाने का जाता है सोमवार का खालीपन, उसके जाने से जाता है सोमवार का खालीपन, उसका लौटना त्योहार सा लगता है। मैंने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा अपने लिए, मैंने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा अपने लिए, पर उसका मिलना मुझे आशीर्वाद सा लगता है, पर उसका मिलना मुझे आशीर्वाद सा लगता है। क्या लिखते हैं, मतलब दीपक आप लिखते नहीं हैं, आप मतलब फीलिंग्स जनरेट करते हैं शब्दों में, सुपर मज़ा आ गया पढ़ के। तो भाई अब देखते देखते टाइम भी मुझे टिक टिक करके इशारा कर रहा है कि भाई तेरा तो हो गया, तेरा तो हो गया, तो मेरा तो हो गया, इसीलिए अब मेरे जाने का समय है। लेकिन कल फिर मिलूँगी अंताक्षरी के साथ, और एक और कविता आ गई लगे हाथ, पढ़ के जाने का मन कर रहा है। अपनी नज़रों से उतारा है हमें, अपनी नज़रों से उतारा है हमें, उसी पे मरते हैं जिसने मारा है हमें। आय हाय क्या कहने, अपनी नज़रों से उतारा है हमें, उसी पे मरते हैं जिसने मारा है हमें, तमाम दिए हैं मुझे उसी ने गम, तमाम दिए हैं मुझे उसी ने गम, फिर भी जाना फिर भी जीना उस बिन ना गवारा है हमें, मेरे वो पास नहीं है माना मगर उसकी यादों का ही सहारा है हमें, उसका साथ है जैसे कश्ती कोई, उसका साथ ही अब किनारा है हमें, वो समझता नहीं इस बात को क्यों, वो समझता नहीं इस बात को क्यों, इस जहां में वो सबसे प्यारा है हमें, मैं जानता हूँ वो मिल नहीं सकता, मैं जानता हूँ वो मिल नहीं सकता, मोहब्बत उसी से मगर दोबारा है हमें, मोहब्बत उसी से मगर दोबारा है हमें। लिखूं तो प्यार हो तुम, सोचूं तो इश्क हो तुम, और चाहूं तो मोहब्बत हो तुम, अब चाहे लिखूं सोचूं या चाहूं, मेरे हर कदम पर हम सफ़र हो तुम। वाह क्या शायरी लिख रहे हैं, मतलब अब जाने का टाइम है तो सबकी बातें निकल रही है। ओहो तो चलिए आप लोग के नाम एक गाना पंजाबी वाला डेडिकेट कर रही हूँ, लेकिन फीलिंग्स यही वाली हैं जो आप लोग लिख रहे हैं, तो आप लोग की फीलिंग्स को डेडिकेटेड ये प्यारा सा गाना। और अब आरजे बीना को है जाना, कल फिर मिलेंगे अंताक्षरी के साथ, बदलेंगे ज़माना कोई कहीं नहीं जाएगा, स्टे ट्यून्ड रहिएगा 89.6 एफएम पर, कल सीधे 6 बजे आप लोग के साथ मिलते हैं और देखते हैं कौन क्या सुनाता है। मेरी एक दोस्त जो गोंडा की थी उसको समर्पित है। क्या बात है भाई, गोंडा की कौन सी दोस्त है बताइएगा कभी फुर्सत में। फिलहाल के लिए आपकी कविता पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, लग रहा है बड़ी करीबी दोस्त थी आपकी। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं और करेंगे बहुत सारी बातें। दीपक जी इंतज़ार रहेगा आपकी इन पंक्तियों का, बिना इन पंक्तियों के शाम अधूरी लगती है, जैसे आपका इतवार अधूरा रहता है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बजाते रहो अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, ये प्यारा सा गाना आप लोगों के लिए, आपकी शाम बनाने के लिए।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: अरे सुना?
5: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
5: आपके हर दिन की

नमस्कार आदाब एंड सशेगाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर मायशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली मंगलवार की तरह कर दीजिए सब कुछ मंगल मंगल हमारी आज की फरमाइशी की महफिल में। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, सोनिया तिवारी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, मोहित मालवीय नगर गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, राजू सीतापुर से, निधि सीतापुर से, अंबुज पांडे, राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, उषा कश्यप गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, रौनक तिवारी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बल जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो फरमाइशी में। सो दोस्तों, क्या आप सभी तैयार हैं अपनी फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? सो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की पहली फरमाइशी गीत की तरफ, जो कि है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। उनको सुनना है गाना जब चली ठंडी हवा। सो एंजॉय करेंगे दो बदन पिक्चर का आशा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हमारी बहुत ही खूबसूरत सी आशु जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। दालक शर्मा ब्राह्मण का

आशा जी की आवाज में दो बदन पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले इस गाने को सुनने के बाद में मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस अपने आप को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं है। सो अब इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से आपका स्वागत है। हमारे जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना मुद्दत पिक्चर का प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां, और मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की तू मेरा शाहे जहां। सो एंजॉय करेंगे मोहम्मद अजीज और आशा जी की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई लव दिस सॉन्ग जग्गू दादा। थैंक यू।

वाओ, मोहम्मद अजीज और आशा जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है मुद्दत पिक्चर का ये गाना हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है एमपी से। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच जग्गू दादा जी। इस गाने को मैंने बहुत दिनों बाद सुना और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं कहती हूँ ना कि अच्छे गाने इतने लंबे क्यों होते हैं, क्योंकि मेरा पूरा गाना सुनने का मन होता है और ये गाना इतना अच्छा था, एक स्टैंजा फिर भी हमने मिस कर दिया है। सो दोस्तों एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकर जी, आपका स्वागत है। इनका कहना है कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तेरा सुख दुख तेरा ही रहेगा, लोग तो बिन मतलब के बात करेंगे, बुरा समय भी आना जीवन में बहुत जरूरी है, ये फालतू के रिश्ते अलविदा हो जाते हैं। ये तो आपने सही कहा है, ये मतलब जो फालतू के रिश्ते होते हैं ना, वो जितना ही जल्दी जितना ही समय रहते ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए अलविदा हो जाए उतना ही बढ़िया होता है ना। नहीं तो फिर आप बॉन्ड और अच्छा बनाते जाओगे और अच्छा बनाते जाओगे। वो एक कहावत है ना कि अगर आप किसी गलत गाड़ी में बैठ गए हो तो जो सबसे नज़दीकी स्टेशन हो वहीं उतर जाना चाहिए, लास्ट स्टेशन पर उतरेंगे तो मंजिल उतनी ही दूर रहेगी ना। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से। धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है खटोला 2। ओ माय गॉड, हम एंजॉय करेंगे मासूम शर्मा का ये बहुत ही मासूम सा हरियाणवी सॉन्ग, सुपर डुपर डुपर हिट सॉन्ग हमारे सुपर डुपर हिट धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। ओ माय गॉड, आपने तो दिल जीत लिया, मुझे मासूम पता नहीं क्यों बहुत मासूम लगते हैं। स्टे ट्यून्ड।

और हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा नहरियाणवी गाना हमारे धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। और इनका कहना है कि मेरी फरमाइश का गाना बजा कर दिल जीत लिया, आय हाय आपने इस फरमाइश को बजवा कर मेरा दिल जीत लिया। सो इनका कहना है कि मेरी इस फरमाइश का गाना बजा कर दिल जीत लिया। सिंपल मैम ने अपनी आवाज से हर पल संवार दिया, आवाज के जादू ने दिल को फिर से प्यार दिया, शुक्रिया मैम आपने मेरी फरमाइश को यादगार बना दिया। ओ थैंक यू सो मच। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना कुछ कुछ होता है। आय हाय कुछ कुछ होता है, और आप लोग के गाने को सुन के ओ माय गॉड मुझे भी बहुत कुछ होता है। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा सदा बहार गाना, हर दिल पे छा जाने वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वाओ आज की प्लेलिस्ट अच्छी है, हर एक गाने बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा लग रहा है कि चुन चुन के प्लेलिस्ट बनाई गई है। थैंक यू सो मच, इट मींस रियली अ लॉट।

क्या करूं, हाय कुछ कुछ होता है, हमने एंजॉय किया है कुछ कुछ होता है पिक्चर का ये टाइटल ट्रैक हमारी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए? लेकिन उसके पहले सोनिया तिवारी का कहना है कि इस प्यारी सी धुन ने दिल को फिर से मुस्कुराना सिखा दिया, हर सुर में मोहब्बत का एहसास जगा दिया। इतना खूबसूरत गीत सुनाने के लिए आरजे सिंपल जी, दिल से आपका शुक्रिया, और आपका भी दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश है मोहित की मालवे नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना तू मेरा जानू है तू मेरा दिलबर, से इंजॉय करेंगे मनहार जी की और अनुराधा जी की आवाज में हीरो पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मोहित की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है, हमने एंजॉय किया है हीरो पिक्चर का ये गाना मोहित की फरमाइश पर जो कि है मालवीय नगर गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ आप सभी के साथ में, लेकिन दोस्तों सच में नो बटरिंग, कोई मक्खन पॉलिश नहीं, बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि आज आप लोगों की प्लेलिस्ट सच में मंगलवार के हिसाब से एकदम मंगल मंगल है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे गाने बज रहे हैं कि अगर हम चाहें भी, अगर मैं चाहूंगी कि एक मिनट के लिए मैं हेडफोन अपने कान से निकाल दूं, वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके गाने इतने अच्छे हैं कि मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मैं हेडफोन को कान से उतारूं भी। तो अगली फरमाइश भी ऐसे ही गाने की है। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है अनुराधा जी की उदित नारायण की आवाज में गाना हम प्यार करने वाले। ओ माय गॉड, कहाँ से बनाई है आज आप लोगों ने इतनी तगड़ी प्लेलिस्ट, मुझे तो नहीं समझ में आ रही। फिलहाल मैं कुछ कहना चाहूंगी कि अहमद फराज जी का कहना है कि दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, इस शहर में हम खुद को अकेला पाए हुए हैं। सो अब इंजॉय कर लेते हैं धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन।

दीपक को जलाएंगे और प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। हमने एंजॉय किया है दिल पिक्चर का अनुराधा जी की उदित नारायण जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा, धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास गोंडा से। इस गाने को सुनने के बाद में मुझे सिर्फ एक लाइन याद आ रही है कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। धर्मेंद्र मोहन जी, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सो अब एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। विजयपाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से आपका स्वागत है और जेके शाह स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन इसके पहले विजयपाल जी का कहना है कि सिंपल बहन जी सादर नमस्ते और गीत बहुत ही मस्त सुनवा रही हैं। अरे बस आप ही लोग के रहमो करम हैं, आपके फरमाइशी गीते आते हैं और आपकी आरजे सिंपल इसको बहुत ही आनंद के साथ में प्ले करती है और हम सभी मिलके इस महफिल में आपकी फरमाइशी गीतों का आनंद लेते हैं। इंजॉय करेंगे अगली फरमाइश। अगली फरमाइश भी है ओ माई गॉड वाले गाने की। जी हाँ दोस्तों, राजू को सीतापुर से सुनना है गाना, कहता है मेरा जिया बाहू में भर लो पिया। सो एंजॉय करेंगे राजा भैया का ये गाना उदित नारायण की आवाज में सिर्फ और सिर्फ राजू की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से आपका स्वागत है। नाचो सारे

प्यार का ये रोग दिया, क्या कर दिया, ओ माय गॉड, बहुत गलत कर दिया। लेकिन प्रेम का रोग बहुत सुंदर रोग होता है, सबको लगना चाहिए एक बार, क्यों, सही कहा ना मैंने। सामने एंजॉय के ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा राजू की फरमाइश पे बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि की सीतापुर से, और निधि को सीतापुर से सुनना है गाना मैं 16 बरस की तू 18 बरस का। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा सा नगमा सिर्फ और सिर्फ निधि की फरमाइश पर। कर्ज पिक्चर का स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

क्योंकि तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, हमने एंजॉय किया ही बहुत ही खूबसूरत सनंगमा निधि की फरमाइश पर जो की है सीतापुर से। चलिए चलते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है अंबुज पांडे की, और अंबुज पांडे को सुनना है गाना दलेर मेहंदी की आवाज में। सो क्या आप सभी तैयार हैं डांस फ्लोर पे आने के लिए? अपनी कुर्सी की पेटी को खोल लीजिए। कुर्सी की पेटी को खोलने के बाद में कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको आना है डांस फ्लोर पे, और जैसे ही आप डांस फ्लोर पे आएंगे तुरंत आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आपकी इस बहुत ही खूबसूरत से गाने को दलेर मेहंदी की आवाज में आप सभी के सामने पेश करेगी, और आप सबको बस दो चार ठुमके लगाने हैं इस पंजाबी बीट पे। सो क्या आप सभी तैयार हैं? एंजॉय करते हैं अंबुज की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। हाय हाय, देखा कह रही थी ना कि आज की प्लेलिस्ट एकदम कमाल धमाल बेमिसाल।

नलिन मेहंदी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सब पंजाबी बीट्स के साथ में सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा हमारे अंबुज की फरमाइश पर, अंबुज पांडे की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है हमारे पास में। अगली फरमाइश है राजेश कुमार जी की सिंचाई विभाग गोंडा से, और राजेश कुमार जी को सिंचाई विभाग गोंडा से सुनना है दोस्तों गाना टुकुर टुकुर देखते हो क्या, सो एंजॉय करेंगे मासूम पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कुमार सानू पूर्णिमा जी की आवाज में सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

देखते हो क्या। कुमार सानू पूर्णिमा जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा राजेश कुमार जी की फरमाइश पर जो की है सिंचाई विभाग गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर है महेंद्र जी जो की है राजस्थान से, उनका कुछ कहना है। इनका कहना है कि खामोशियों में भी दर्द छुपा रहता है। अच्छा, खामोशियों में भी दर्द छुपा रहता है, दिल टूटे तो चेहरा भी चुपचाप रहता है, जिसे चाहा था उम्र भर साथ निभाने को। अच्छा, जिसे चाहा था उम्र भर साथ निभाने को, वही अक्सर सबसे दूर चला जाता है। इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो दादा यादव जी बजाज चीनी मिल गोंडा से आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों उषा कश्यप जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना अमीरी गरीबी पिक्चर का भूल भुलैया तेरी अखियां सैया। सो एंजॉय करते हैं ये नंबर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

भूल भुलैया तेरी अखियां, सैया अलका याग्निक जी की आवाज में अमीरी गरीबी पिक्चर का ये नगमा हमने एंजॉय किया है दोस्तों। उषा कश्यप जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर ने महेंद्र की शायरी पे कुछ जवाब दिया है। इनका कहना है कि अक्सर प्यार करने वाले दूर चले जाते हैं, खामोशियों के सहारे ही जिंदगी बसर हो जाती है। कितना भी समझा लो प्यार को अपनी तरफ से, एक दिन दिल से बेदर हो ही जाते हैं। सही कहा आपने। वो कहते हैं ना कि ज्यादा प्यार एक दिन टॉक्सिक हो ही जाता है, ज्यादा प्यार एक दिन जहर बन ही जाता है। इसलिए बेइंतहा मोहब्बत भी किसी से नहीं करनी चाहिए। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है कार्तिक कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है गाना हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। सो इंजॉय करते हैं जुदाई पिक्चर का ये गाना सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमें प्यार हुआ, प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। हमने एंजॉय किया है ये नगमा कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर जो की है। गोंडा से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ बिना किसी देरी के, लेकिन उसके पहले जरूरी सूचना देना चाहूंगी मैं आप लोगों को। दोस्तों इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार जी लुधियाना से आपका स्वागत है। इसी के साथ में जेके शाह का कहना है कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। अच्छा, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए आए हाय वारी जावा। सो एंजॉय करते हैं रौनक तिवारी की फरमाइश, उनको सुनना है गाना तुम तो दिल में तार छेड़कर। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुनहरा सा नगमा रौनक तिवारी की फरमाइश पे। मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि 9 बजे जब आना ना फरमाइशी की महफिल में पेट पूजा करके आना, क्योंकि मेरी मम्मी का मानना है कि अगर पेट भरा हो ना तो दिल ऑटोमेटिक खुश रहता है, और दिल को खुश रखने का तो हमें बहाना चाहिए ना दोस्तों। स्टे ट्यून्ड।

0: भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकतानगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। 2 दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
5: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
6: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जैम पोर्टल जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
7: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
5: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हमने इंजॉय किया है अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ उदालक शर्मा की फरमाइश पर, जो कि है मनकापुर से। और एक बार फिर से इस्तकबाल और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। दोस्तों, जैसे कि अब बाहर गज़ल का वक्त सामने आ रहा है, तो शेर व शायरी मुझे अपने आप याद आएगी। निदा फाजली का कहना है कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हैं हम, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हैं हम, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हैं हम। सो अब एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है जेके शाह की, और जेके शाह को सुनना है गाना पत्ता पत्ता बूटा बूटा। तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ जेके शाह की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल की बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हूँ। लता जी की और मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक नजर पिक्चर का ये नगमा हमने एंजॉय किया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जेके शाह जी की फरमाइश पर। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन जेके शाह जी आपसे कहना चाहूंगी कि हजारों उलझने राहों में हैं और कोशिश बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है महेंद्र की राजस्थान से, और महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना, जा जा के कहां मिन्नते फरियाद करोगे, लो मैंने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। हमारे क्लिसनर का कहना है कि यूं बेवजह हवाओं को दोष मत दो, पत्ते तभी गिरते हैं जब डाली सा

जा जा के कहा मिन्नते फरियाद करोगे, लो मैंने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। अलका यागनिक कुमार सानू की आवाज में हमने एंजॉय किया है महेंद्र की फरमाइश पर ये गाना, और महेंद्र है राजस्थान से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि मेरे सभी लिस्नर सो रहे हैं शायराना। ओ माई गॉड, आप लोग को देख के तो मैं हो रही हूँ कुछ और ज्यादा शायराना। जेकी शाह का कहना है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, क्या सही कहा मैंने। सो एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी आपसे जेके शाह जी कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। मिर्जा गालिब जी की लाइन है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या। सो एंजॉय करते हैं दादा यादव की फरमाइश पर जो कि है बजाज मिल गोंडा से, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे लेकिन जहां होंगे वहां फरियाद करेंगे तुझे याद करेंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो दोस्तों बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। ये तो फरमाइश थी दादा यादव की बजाज मिल गोंडा से। बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले दादा यादव जी मैं कहना चाहूंगी आपसे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की और निब्बर जी की, इन दोनों को सुनना है गाना मेरे महबूब कयामत होगी। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में मेरा फेवरेट वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ मुमताज अंसारी जी की और निब्बर जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया मुमताज अंसारी जी की और निबर जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मेरे दिल के करीब रहने वाला नगमा किशोर कुमार जी की आवाज में। बढ़ेंगे दोस्तों हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा स्टेट्यून एंड अरविंद आपका भी स्वागत है, मुस्तफा जी सऊदी से वेलकम इन योर शो। सो जाते जाते इंजॉय करेंगे हम लोग नागेश्वर धाकड़ और उनके भाई इट्स कुमार की फरमाइश ले गई, और इसी के साथ चलती हूँ दोस्तों, लेना चाहूंगी अलविदा आप सभी से, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही। मुनीर नियाजी जी की ये लाइंस थी और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम कुंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर से कल, एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ और इट्स कुमार की फरमाइश, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9281 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आरएस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। और अब तो ये हम और आप, इन दोनों की धड़कन बन चुकी है। जी हाँ, और कार्यक्रम है बहारे गजल। मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं न्यू केट की, अर्थात तो वो लोग जिन्होंने गजलें लिखी, शायरी लिखी, शेर लिखे, किताब लिखे, और उनको गायक कलाकारों ने गाया, पर्दे पर अभिनय किया गया, और वो नगमे, वो गजलें, वो गीत हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन जिसने लिखा, उनके नाम से बावस्ता हम हों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन साहित्यकारों को, उन दानिश्वरों को, उन कलमकारों को भी समझें। कहा गया था कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है और होती ही है। आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, उनका नाम है अहमद फराज। एक ऐसा नाम जो गजलों की दुनिया का एक बावकार नाम है।

उसको जुदा हुए भी जमाना बहुत हुआ, अब क्या कहें ये किस्सा पुराना बहुत हुआ। ढलती न थी किसी भी जतन से शबे फिराक, फिराक मतलब होता है दूरी या जुदाई का समय। ढलती न थी किसी भी जतन से शबे फिराक, ऐ मर गए ना तेरा यहाँ आना बहुत हुआ। मर गए ना मतलब मृत्यु हो जाना। हम खुल्द से निकल गए हैं, खुल्द का मतलब जन्नत स्वर्ग। हम खुल्द से निकल तो गए हैं पर ए खुदा, इतने से वाकिए का फसाना बहुत हुआ। अब हम हैं और सारे जमाने की दुश्मनी, अब हम हैं और सारे जमाने की दुश्मनी। उससे ज़रा सा रब्त मतलब बातचीत, उससे ज़रा सा रब्त बढ़ाना बहुत हुआ। अब क्यों ना जिंदगी पे मोहब्बत को वार दें, अब क्यों ना जिंदगी पे मोहब्बत को वार दें। इस आशिकी में जान से जाना बहुत हुआ, अब तक तो दिल का दिल से ताज़ुफ न हो सका मतलब मुलाकात बातचीत। अब तक तो दिल का दिल से ताल्लुक न हो सका, माना कि उससे मिलना मिलाना बहुत हुआ। क्या क्या न हम खराब हुए हैं मगर ए दिल, क्या क्या न हम खराब हुए हैं मगर ए दिल। ए यादे यार तेरा ठिकाना बहुत हुआ। लो फिर तेरे लबों पे उसी बेवफा का जिक्र, लो फिर तेरे लबों पे उसी बेवफा का जिक्र। अहमद फराज तुझसे कहा था बहुत हुआ। जी हाँ, हम जिसको भूलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी यादों में न रहे वो वही हमारी यादों में होता है। ये कुछ इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति है। और हमारे साथ भाई बहुत सारे प्यारे प्यारे श्रोता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इट्स कुमार जी, भाई बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ आपको। और जे के शाह जी हमारे साथ, जी हाँ खैर मकदम करते हैं आपका, आपने हमारा खैर मकदम किया भाई, आपका भी स्वागत है। और बस लगा दो, आगे क्या होगा देखा जाएगा भाई, ये क्या है। और इसके पश्चात पहले ऐड लगना चाहिए था, जी हाँ इसके पश्चात। और भाई ये अंबुज पांडे जी हैं, गुड इवनिंग मनोज सर जी, शुभ संध्या अंबुज जी आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आइए अब ले चलते हैं आपको गज़लों की दुनिया में। और आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल के साथ, जैसे लो फिर तेरे लबों पे उसी बेवफा का जिक्र। इंसान कभी कभी उनका नाम भी नहीं ले सकता जिसकी वजह से वो दुखी है। आइए कुछ ऐसे ही मिलते जुलते ख्यालात को छूती हुई ये प्यारी सी गज़ल आपके दिल को छुएगी, ये हमको बहुत ही उम्मीद है। आइए इस प्यारी सी उम्मीद के साथ आपको सुनाते हैं ये प्यारी सी गज़ल। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप

मुलाकात, और वो भी अधूरी, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे। भूपेंद्र सिंह के साथ ये प्यारी सी आवाज आपने पहचान ली होगी, महेंद्र कपूर, फिल्म दहलीज। कभी कभी जिंदगी का सच शायर की लेखनी में आपको देखने को मिलता है, और कभी कभी हम उससे रिलेट भी कर पाते हैं अपने आप को। अहमद फराज साहब की बात कर रहे हैं आज, उन्होंने कहा कि तड़प उठूं तो जालिम, तड़प उठूं भी तो जालिम तेरी दुहाई न दूं, तड़प उठूं भी तो जालिम तेरी दुहाई न दूं, मैं जख्म जख्म हूं फिर भी तुझे दिखाई न दूं, तड़प उठूं भी तो जालिम तेरी दुहाई न दूं। मतलब हम छटपटा के मर जाएंगे लेकिन आपको नहीं पुकारेंगे। मैं जख्म जख्म हूं, बहुत सारे दर्द हैं लेकिन आपकी दुहाई नहीं देंगे। तेरे बदन में धड़कने लगा हूं दिल की तरह, तेरे बदन में धड़कने लगा हूं दिल की तरह, ये और बात की अब भी तुझे सुनाई न दूं, खुद अपने आप को परखा तो ये नदामत है। मतलब नदामत बोलते हैं शर्मिंदगी को। खुद अपने आप को परखा तो ये नदामत है कि अब कभी उसे इल्जामे बेवफाई न दूं। जो अपने आप को परखा तो मुझे लगा कि उसे बेवफा कहना अनुचित होगा, गलत होगा। रात इंदौरी साहब भी यही कहते थे कि है गलत उसको बेवफा कहना, हम कहाँ के धुले धुलाए थे। तो वही बात यहां भी आती है कि अगर हमने जब अपने आप को परखा तो ये समझा, तो ये जाना कि हम स्वयं में ही पाक साफ नहीं है, उसको हम शर्मिंदा कैसे करें, उसे बेवफाई का इल्जाम कैसे दें। मेरी बका ही मेरी ख्वाहिश गुनाह में है, बका मतलब बोलते हैं रक्षा, मेरी बका ही मेरी ख्वाहिश गुनाह में है, मैं जिंदगी को कभी जहर पारसाई न दूं। मतलब जिंदगी को कभी जहर देने की नौबत आ जाए तो कभी नहीं देंगे। मुझे भी ढूंढ कभी महबे आईना दारी, मतलब जो लोग आईने बनाने में तल्लीन है उनसे मेरी गुजारिश है, मैं तेरा अक्ष हूं लेकिन तुझे दिखाई न दूं। यह हौसला भी बड़ी बात है शिकस्त के बाद, शिकस्त मतलब हार, यह हौसला भी बड़ी बात है शिकस्त के बाद कि दूसरों को इल्जाम रसाई न दूं। देखिए हम जब बात करते हैं तो अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो वो हमारे कारण हुआ, और अगर कुछ बुरा हो गया तो हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। इस दुनिया की एक ही चीज है जो हमारी कभी नहीं होती, और वो है गलती। कभी महसूस कीजिए, आप घर में भी बाहर भी छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, शायद आप इसको समझ पाएंगे। मतलब घर में अगर कहीं पानी का ग्लास रखा हुआ है और घर में जो बड़ा है वो रास्ते से निकले और उनके पैर से गिलास लग गया, उनका पैर जाकर गिलास में लगा, पानी नीचे आ गया, तो प्रतिक्रिया क्या होती है? ये ग्लास रखने की जगह है, लगता है कोई आने वाला है। सेम सिचुएशन, सेम एक गिलास पानी रखा हुआ है और हम चल पड़े, नहीं ध्यान दिया, गिर गया। उत्तर क्या मिलता है?
दिमाग कहाँ है, देख के नहीं चलते हो, मन तो रहता नहीं है। मतलब वही चीज अगर एक इंसान करे तो वो गलती दूसरे की है, और वही चीज अगर हम करें तो फिर आप कभी महसूस करके देखिएगा। हमने अक्सर देखा कि हमने कहीं पढ़ा था कि अगर किचन में प्याली फूटने की आवाज आए और उसके बाद कोई आवाज ना आए तो समझ लीजिएगा कि किचन में मम्मी है, अगर कोई और होगा तो आवाज आ जाएगी, फोड़ डालो, जितना कप है सब फोड़ डालो, लापरवाही की चरम सीमा है जी। तो अगर हमसे हो गई तो वो सामने वाले के कारण गलती हुई। ये दुनिया की इकलौती चीज है जिसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता कि हमसे गलत हो गया, हम गलती पर हैं। हमको लगता है नहीं सामने वाला ही गलती पर है। जेके शाहजी लिखते हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आफिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। जी हाँ बिल्कुल, ये अहमद फराज साहब की पंक्ति है। और आइए अब चलते हैं भाई, आपको गज़लों की दुनिया में लेकर चलते हैं। आपको हमने गुलाम अली साहब की आवाज़ सुनाई, भूपेंद्र सिंह की आवाज़ सुनाई, और अब आपको चलते हैं कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब की तरफ, और एक प्यारी सी गज़ल सुनाते हैं आपको रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 एफएम। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। फ़िलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जब दीप जले आना, यशोदास और हेमलता की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल आप तक पहुंची। वास्तव में चित्तचोर फिल्म की ये गज़ल कहीं ना कहीं चित्त को चुरा ही लेती है। हमारे साथ जेके शाह जी हैं, लिखते हैं, तुम तकल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बिल्कुल सही बात है। लेकिन और हमारे साथ क्या बात है भाई, श्रीमती सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगी। और जेके शाह जी लिखते हैं, दिल खुश कर दिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज़रा नवाजिश का, बहुत बहुत मेहरबानी भाई। अगर आपको गज़लें पसंद आ जाएँ हमारी तो फिर क्या बात। और बात कर रहे हैं अहमद फराज साहब की, जहाँ पर आपने ये लिखा कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो निदा फाजली साहब ने भी लिखा था कि बात कम की जाए जहानत को छुपाते रहिए, बात कम की जाए जहानत को छुपाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। और इसी बात का जवाब किसी और शायर ने दिया कि बसीर बद्र साहब ने दिया कि उन्होंने कहा कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला, गर दिल नहीं मिलता है तो हाथ भी न मिला। तो कभी कभी होता है कि अगर दिल मिलता है तभी हाथ मिलाइए, कभी होता है नहीं नहीं हाथ मिलाते रहिए। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि आपने एहसास किया होगा जेके शाह साहब कि जिस इंसान के आपके प्रति एहसास अच्छे होते हैं, जब आप उनसे हाथ मिलाते हैं तो आपको वाइब्स बहुत अच्छी आती होंगी। मतलब कोई आपको स्पर्श करता है, छूता है, तो महसूस कीजिए तो लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा लगता है उसके स्पर्श। और जिनकी वाइब्स आपके साथ नहीं मिलती, विचारधारा नहीं मिलती, उनका स्पर्श करना ज़रा हमको नहीं अच्छा लगता। मतलब ये मैंने अपने व्यक्तिगत तजुर्बात से, अपने व्यक्तिगत अनुभव से सीखा, हो सकता है हम सही या गलत हों, लेकिन होता है, स्पर्श बताता है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। लिखते हैं अहमद फराज साहब कि जब तेरी याद के जुगनू चमके, जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आंख में आंसू चमके, जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आंख में आंसू चमके, सख्त तारीख है दिल की दुनिया। तारीख मतलब अंधेरा, तीरगी। सख्त तारीख है दिल की दुनिया, ऐसे आलम में अगर तू चमके। हमने देखा सरे बाजार वफा, हमने देखा सरे बाजार वफा, कभी मोती कभी आंसू चमके, आंख मजबूरे तमाशा है फराज, आंख मजबूरे तमाशा है फराज, एक सूरत है कि हर सू चमके। सू मतलब चारों तरफ, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सू। एक किसी गीत में भी सू शब्द आया है, तो तेरा मेरा प्यार उम्र में एक शब्द आया है सू, मतलब हर तरफ। तो जिधर भी नज़र डालते हैं उस तरफ आप नज़र आते हैं। तो ये मोहब्बत की अपनी एक खास बात होती है। अब के हम बिछले तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बिल्कुल सही बात है। अब चलिए भाई, आपको हमने रफ़ी साहब की गज़ल सुनाई, यशोदास और हेमलता की आवाज़ सुनाई, हमने आपको गुलाम अली साहब को सुनाया। और इन गज़लों की फहरिस्त में एक नाम ऐसा है जिन्होंने गज़लें बहुत कम गाईं लेकिन गाईं तो दिल को छू गईं। जी हाँ, एक नाम है गायकी का मुकेश कुमार। मुकेश कुमार की गाई हुई एक प्यारी सी गज़ल आपको सुनाते हैं और मिलते हैं इस संगीत में इंतजार के उस पार। फिलहाल मुकेश कुमार की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी।

जी हाँ, सोचने की बात है कि जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ, मतलब इंसान गम में भी हंस सकता है। जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ, क्या बात है। मुकेश कुमार के द्वारा गाई हुई ये गजल वास्तव में भाई मेरे दिल को बहुत छूती है। आप अपनी जाने, लेकिन मुझको ये खबर है कि ये बहुत ही प्यारी गजल है। और अब भाई घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल है बुधवार, कल है कालीन शो, अपने खजाने के साथ आप रहिएगा तैयार। आसमान वाली ने चाहा तो ठीक 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी आपके ही प्यारे से कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वही छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी मंजिल। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। रैना खिड़की के पास बैठी गुलाब के फूल से टपकती बारिश की बूंदों को देख रही थी। कितनी सुंदर लगती है ना पारदर्शी पानी की बूंदें सुर्ख लाल गुलाब के ऊपर, पर उनका ये साथ पल भर का भी नहीं होता। दोनों के रास्ते अलग होते हैं और दोनों के अंजाम अलग। ना जाने कितने समय की उथल पुथल के बाद आज आखिरकार रैना ने नीलेश को सब कुछ साफ साफ लिख ही दिया। रैना ने लिखा था, तुम्हारे इस लौटने को मैं किस रूप में लूं? समझ नहीं पा रही हूं। जो तुम्हारे रूप में मेरे 3 साल का नहीं नहीं शायद उससे भी कहीं ज्यादा समय का इंतजार लौट कर आया है, उसे मैं समय की किस धारा के साथ जोड़ूं? तुम तो कहकर गए थे कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे काबिल बनकर लौटूंगा और ले जाऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर। अगर मैं 3 साल तक नहीं आया तो भूल जाना इस बंधन को जो नीलेश ने रैना के साथ बांधा था। हाँ रैना, भूल जाना मुझे और माँ बाप जहां कहें शादी के लिए हाँ कर देना। यही कहा था ना तुमने नीलेश? जानते हो बहुत दिक्कत हुई थी तब मुझे, बेहद रंज भी हुआ था, फिर भी मन को जोड़ा, तन को समेटा और अपने वजूद में ये एहसास जुटाने की कोशिश में लग गई कि तुम अगर मुझसे दूर जा रहे हो तो सिर्फ मेरी खातिर जा रहे हो और जब तुम सफल होकर लौटोगे तब भी सिर्फ मेरी ही खातिर लौटोगे। आज तक मेरे जहन में तुम्हारी सारी यादें सुरक्षित हैं। अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारे जाने के 2-4 दिन पहले की वो मुलाकात और वो आखिरी खत जिसमें तुमने लिखा था, रैना तुम्हारी जिंदगी के पहले का जो भी अतीत था उसे भूल जाना, मैं भी अपनी जिंदगी का पिछला दौर जो गुजर चुका है तेरे आने से पहले का उसे भूल जाऊंगा। जब लौट कर वापस आऊंगा तो फिर वैसे किसी दौर की चर्चा सुनना और करना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए मेरे जाने के बाद फिर ऐसे किसी लम्हे को अपनी जिंदगी में मत आने देना जो तुम्हें बेवफा होने पर मजबूर कर दे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। हाँ मेरा इंतजार करना,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मंजिल। अब तक आपने सुना, आज रैना उस दिन को याद कर रही थी जब आज से लगभग 3 साल से ज्यादा समय पहले नीलेश उसको छोड़कर चला गया था, ये कहकर कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए सफल होने जा रहा हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा। नीलेश ने उसको एक चिट्ठी में ये सब कुछ लिख के दिया था। अब आगे नीलेश ने लिखा था, मेरा इंतजार करना कम से कम 3 साल तक। अगर मैं नहीं लौटा तब अपने आप को आजाद समझना, समझना कि मैं असफल हो गया अपनी मंजिल पाने में। आज रैना अपनी चिट्ठी में लिख रही थी, पत्र को खत्म करने से पहले तुमने एक बात और लिखी थी, इस बीच में लोगों को दिखाने के लिए तुम्हें भूलने का नाटक करूंगा, लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं, ताकि अगर कल असफल हो जाऊं तो कोई तुम्हारा नाम मुझ जैसे असफल आदमी के साथ जोड़कर हंसी ना बनाए, मुस्कुराए नहीं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए होगा, ये सिर्फ मैं और तुम ही जान रहे होंगे। तुम हमेशा की तरह हर पल मेरे दिल में ही रहोगी, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। तुमने तो चिट्ठी डालने तक से मना कर दिया था नीलेश, ताकि तुम्हारी एकाग्रता में व्यवधान ना पड़े, बस केवल इतना कहकर चले गए थे, मैं अपनी रैना के लिए सफल होकर लौटूंगा उस दिन जब हासिल कर चुका होऊंगा अपनी पहचान। और तुम चले गए थे नीलेश, दूर, कोसों दूर, जहां से लौट कर कब आओगे ये तक नहीं पता था। मुझे तो बस इंतजार करने के लिए छोड़ गए थे, 3 साल की समय अवधि में बांधकर। मैं इंतजार कर भी रही थी और घुट घुट कर पी रही थी जिंदगी, जो मेरे शरीर को गलाते जा रहे थे अंदर ही अंदर। फिर भी हर तरफ से आंखें मूंद कर सिर्फ तुम्हारे लौटने की राह पर पलके बिछाए बैठी रहती थी। यकीन जानो, उसी तरह पलके बिछाए रहती 3 साल तो क्या, जन्म जन्मांतर तक, तब तक जब तक तुम नहीं लौटते। पर ये जो मन है ना नीलेश, बड़ा अजीब है। पल में तोला पल में माशा वाली कहावत चरितार्थ होती है इस पर। धीरे धीरे लोगों ने मेरे कान भरने शुरू कर दिए, नीलेश ने तुम्हें धोखा दिया है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी भी नहीं। सभी को मुस्कुराकर सुनती रहती और रात में एकांत क्षणों में तुम्हारे पत्रों को निकालकर उसमें तुम्हारी बेवफाई ढूंढती, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आती। तब मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता कि तुम जरूर आओगे। तुम्हारे जाने से मेरी सारी खुशियां चली गई थीं, रह गए थे मेरे पास तो सिर्फ आंसू, जिन्हें एकांत में बहाने का मौका ढूंढती रहती थी। इसी बीच पड़ोस की भाभी से जान पहचान हुई, बहुत अच्छी लगी मुझे वो स्वभाव की, उनसे खूब बातें होती। और उन्हीं पलों में मुझे मुझसे बिछड़ी हुई खुशियों की परछाइयों का

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मंजिल। अब तक आपने सुना नीलेश रैना को ये कहकर दूर चला गया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सफल इंसान बनने जा रहा हूँ, कम से कम 3 साल तक मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौटूंगा। आज 3 साल से ज्यादा के इंतजार के बाद रैना उसे पत्र में अपने दिल का हाल बयां कर रही थी। अब आगे रैना ने आगे लिखा था, समय यूं ही धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दुगने उत्साह और आवेश के साथ तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों से मुझे एहसास होने लगा था कि मैं जब भी भाभी जी के यहाँ जाती हूँ, दो नजरें अपलक मुझे घूरती रहती हैं, दूर से ही। लेकिन मैंने जानबूझकर उधर ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन अचानक उन निगाहों में अनुनय के साथ हाथ में एक कागज का टुकड़ा लिए एक हजरत मेरे सामने आ खड़े हुए। भाभी जी ने ही बताया था इस बीच कि वो हजरत उनके भांजे हैं, अनीश, अक्सर यहाँ आते जाते हैं। खैर, मैंने उनके अनुनय को मद्देनजर रखते हुए कागज ले लिया। पत्र खोलकर जो कुछ भी पढ़ने को मिला उसे पढ़कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नजरों से पहले ही बहुत कुछ बयां हो चुका था। मुझे उनकी नजरों से कुछ लेना देना नहीं था, सो मैंने उन्हें साफ साफ लफ्जों में कह दिया, जिस सपने की तामीर वो मुझ में ढूंढ रहे हैं वो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं किसी और का इंतजार कर रही हूँ। जानते हो तब अनीश ने क्या कहा? उसने बिना किसी लाग लपेट के सपाट लफ्जों में जवाब दिया, ठीक है रैना जी, आप जिस किसी का भी इंतजार कर रही हैं कीजिए, मैं अपने प्यार को आपके प्यार में रुकावट नहीं बनने दूंगा, लेकिन मैं भी उसी शिद्दत से आपका इंतजार करता रहूंगा जितनी शिद्दत से आप कर रही हैं। मैं पवित्र मन से आपके प्यार के लिए दुआ भी करूंगा, लेकिन अगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ तो प्लीज आप लौट आइएगा, मुझे हर पल आपका इंतजार रहेगा। इसके बाद उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि क्या उस समय तक हम दोनों एक सच्चे दोस्त के रूप में नहीं रह सकते? मैं अपने हालातों और दुनिया की बातों से इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि मुझे एक संबल की तरह लगी अनीश की दोस्ती, और मैंने भी पाक मन से उसे दोस्त मान लिया। इस बीच तुम्हारी कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिल रही थी और समय भी गुजरता जा रहा था। 3 साल की वो बंधी बंधाई अवधि भी गुजरने को थी। मेरा मन अब बुरी तरह डरने लगा था। एक दिन बातों ही बातों में अनीश से पता चला कि तुम और अनीश एक अच्छे दोस्त हो। जब अनीश को इस बात की जानकारी हुई कि मैं जिसका इंतजार कर रही हूँ वो नीलेश ही है, तो वो बहुत खुशी के साथ बोला, मैं जाऊंगा नीलेश के पास और उसे आपके पास लेकर आऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुपचाप उसे देखती रही और सुनती रही।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मंजिल। अब तक आपने सुना नीलेश रैना को छोड़कर चला गया था, ये कहकर कि वो उसे हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए एक सफल इंसान बनने जा रहा है, वो उसका इंतजार करे। रैना उसका इंतजार कर रही थी। इसी बीच उसकी मुलाकात अनीश से हुई। अनीश ने उससे अपने प्यार का इजहार किया और रैना के सच बताने पर उसका दोस्त बन गया और बोला मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर एक दिन पता चला कि अनीश और नीलेश दोस्त हैं, तो अनीश ने रैना से कहा कि वो नीलेश को उसके लिए वापस लेकर आएगा। अब आगे रैना नीलेश को अपने पत्र में बता रही थी कि बाद में घर जाकर अकेले में मैं बहुत रोई उसके निश्चल और मासूम प्यार पर, अपनी बदकिस्मती पर जो उसके जीवन में छा गई थी, और तुम्हारे लौटकर आने के वादों पर जो पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे थे। एक दिन अनीश ने मुझे तुम्हारा वहां का पता दिया, मैं खुशी से फूली नहीं समाई और फौरन तुम्हें पत्र भेज दिया। जवाब का इंतजार करती रही पर तुम्हारी तरह वो भी नहीं आया। इस बीच अनीश 2-4 दिनों के लिए बाहर गया। वापस लौट कर जब आया तो बेहद उदास था। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने झिझकते हुए बताया कि वो तुम्हारे पास गया था, उससे आपके बारे में बातें हुई, बातों से लगा कि वो भूल गया है सब कुछ। साथ ही ये भी बताया कि मेरे भेजे पत्र उसके भैया के हाथों में चले गए थे, पढ़कर उन्होंने तुम्हारे ऊपर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। इतना सुनने के बाद अब मुझ में और कोई भी शक्ति नहीं रह गई थी जो अपने को बिखरने से रोक सकती। मेरा सब कुछ टूटकर बिखर गया था और सारी कीलें मेरे ही दामन में चुभ गईं। कभी अपने दामन को देखती जो तार तार हो गए थे, तो कभी अपने लहूलुहान हाथों को देखती जो अपनों के ही कारण घायल हो गए थे। फूट फूट कर रो पड़ी थी अनीश के सामने ही। मुझे कभी भी अनीश की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जितनी तड़प मैंने अपने अंदर कैद कर रखी थी, उतनी ही तड़प आंसुओं के सैलाब के साथ अनीश के पास भी देखी। वो मेरे दुख में भी अपने आंसुओं को यूं बहा रहा था जैसे ये मेरा नहीं उसका दुख है। आज तुम किस आधार पर कहते हो नीलेश कि मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? मैंने तो 4 साल इंतजार किया और भी करती, लेकिन जो विश्वास तुमने खंडित कर दिया उसे कहां से लाती? कैसे यकीन दिलाती इस दिल को कि तुम नहीं बदले हो? कम से कम एक बार तो एहसास कराते अपने खामोश हो चुके वजूद का, कोई खबर तो भेजते। अपने रिश्तेदार की शादी में तुम एक बार यहाँ आए भी थे नीलेश, उस समय खबर भिजवाते मैं दौड़ी चली आती, लेकिन तुम उस समय भी वैसे ही खामोश चले गए। तुम इस तरह चुपचाप आकर चले गए, ये तक भी नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तुम्हारे जाने का तो मैं कैसे समेटूंगी अपने आप को। फिर तुम ही कहो नीलेश कि मैं कैसे यकीन दिलाती दिल को कि तुम मुझे भूले नहीं हो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मंजिल। अब तक आपने सुना, रैना नीलेश का इंतजार करती रही 4 साल तक, लेकिन वो नहीं आया। इसी बीच उसकी मुलाकात अनीश से हुई। अनीश ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन सच्चाई जानने पर इंतजार का वादा किया और उसके दुख में ऐसे दुखी हुआ जैसे वो उसका खुद का हो। अनीश ने हर संभव कोशिश की रैना को उसका प्यार वापस दिलाने की, लेकिन वो असफल रहा। अब आगे खत में रैना नीलेश को बता रही थी अपने दुखों के साथ अकेले जीने का हौसला जमा करने लग गई थी, लेकिन अनीश के आंसुओं और शब्दों ने मुझे फिर से जीने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें भूल कर भी भूल नहीं पा रही थी। मन के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं तुम जरूर छिपे होते थे। तन अनीश के साथ होता था, उसकी बातों में खोया होता था, पर मन हमेशा तुम्हारे पास होता था। तुम्हें बेवफा कहते हुए भी ये तुमसे दूर नहीं हो पाता था, पर अब मुझ में और ताकत नहीं रह गई थी अनीश की सब्र शक्ति की परीक्षा लेने की। बहुत समय तक लगातार मैंने उसे अपने साथ घुटते हुए देखा है। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी मेरी तरह इंतजार की अग्नि में जले। मैंने जलकर महसूस किया है नीलेश, बेहद तकलीफ होती है। भले ही बाहर से ये जलन दिखाई ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब कुछ राख कर देती है। इसीलिए मैंने निश्चय किया सब कुछ भूल जाने का। तुम तो दूर थे, तुम्हारी तड़प को मैंने नहीं देखा, जबकि अनीश को अपने ही साथ पल पल तड़पते हुए देखा है। क्या ऐसे में तुम्हारे पास लौट आना न्याय संगत होता? और फिर प्यार तो त्याग का ही दूसरा नाम है ना। अपने प्यार को अनीश के लिए त्याग कर दो, समझो इसमें हमारे प्यार की महानता है। क्यों देना चाहते हो उसके मासूम इंतजार को अपने प्यार की पीड़ा? तुम तो रह सकते हो ना नीलेश मेरे बिना, तुम्हें तो आदत पड़ गई होगी। लेकिन इन 4 सालों में मैंने देखा है अनीश को जिंदगी की आखिरी कगार पर खड़े हुए, जहां से अगर मैंने अपने कदम खींचे तो वो गहरी खाई में गिर पड़ेगा। तुम ही कहो, क्या मैं आंखें मूंद कर तुम्हारे पास चली आऊं? क्या ऐसे में कोई भी खुश रह सकेगा? बेहद मुश्किल होगा भूल पाना, लेकिन हो सके तो भूल जाओ मुझे। मैं अब और आंखें बंद नहीं रख सकती। अब इसे मेरी मजबूरी कहो या फिर बेवफाई, ये तुम पर छोड़ रखा है। वैसे ही जैसे तुम कभी छोड़ गए थे अपनी मंजिल बनाने की चाह में। 2 बूंदें गिर गई नैना की आंखों से, शायद ये नीलेश का और उसका प्यार था। जब मिले थे तो बस एक अजनबी थे तुम, कहां पता था कि इतने जरूरी बन जाओगे, शामिल होगे मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से कि तुम आखिर मेरी जिंदगी ही बन जाओगे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी मंजिल। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग। चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग, संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए, थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का सब आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: हाँ जी
1: कोई
0: दोस्तों,
1: बात
0: जब
1: नहीं।
0: हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिमझिम रिमझिम। संगीत सम्राट आरडी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबा पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिमझिम रिमझिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेंद्र ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं